0: वंदे मातरम।
1: वंदे मातरम सुजला।

FM बैंड 103.2 MHz पर यह आकाशवाणी केंद्र झालावाड़ का चंद्रभागा चैनल है। आज शनिवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 23वीं तिथि, तदनुसार दिनांक 13 जून सन 2026 है। स्टूडियो घड़ी में सवेरे के 5:59 होने को हैं। हमारी आज की प्रसारण सभा अब आरंभ है।

FM बैंड 103.2 MHz पर यह आकाशवाणी केंद्र झालावाड़ का चंद्रभागा चैनल है। आज शनिवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 23वीं तिथि, तदनुसार दिनांक 13 जून सन 2026 है। स्टूडियो घड़ी में सवेरे के 5:59 होने को हैं। हमारी आज की प्रसारण सभा अब आरंभ है।

0: इंद्र प्रधान ने कहा है कि इस कार्यक्रम में पिछले 12 वर्षों के दौरान स्टार्टअप के क्षेत्र में भारत की महत्वपूर्ण यात्रा दिखाई जाएगी।
1: भारत सरकार के शिक्षा विभाग ने प्रधानमंत्री जी की इस विजनरी सजेशंस को एक एक्शन में परिवर्तित किया है। एक बहुत क्रिटिकल स्क्रूटिनी के माध्यम से हजारों प्रपोजल के अंदर से 120 स्टार्टअप्स को सिलेक्ट किया गया है। 13 प्रायोरिटी सेक्टर में 120 स्टार्टअप्स को इकट्ठा किया गया है और उसमें लगभग 20 से ज्यादा भारत की प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस की पार्टनरशिप रहा है।
0: प्रधानमंत्री मोदी कल स्लोवाक गणराज्य की 3 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। प्रधानमंत्री मोदी ब्रातिस्लावा में स्लोवाक गणराज्य के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फित्सो से वार्ता के दौरान आपसी सहयोग बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। श्री मोदी स्लोवाक गणराज्य के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से भी भेंट करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज उत्तराखंड के देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी में पासिंग आउट परेड का निरीक्षण करेंगी। इस वर्ष के ऐतिहासिक पासिंग आउट परेड में पहली बार लड़कों के साथ लड़कियां भी शामिल होंगी। इस भव्य समारोह

FM बैंड 103.2 MHz पर यह आकाशवाणी केंद्र झालावाड़ का चंद्रभागा चैनल है। आज शनिवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 23वीं तिथि, तदनुसार दिनांक 13 जून सन 2026 है। स्टूडियो घड़ी में सवेरे के 5:59 होने को हैं। हमारी आज की प्रसारण सभा अब आरंभ है।

0: भारत की पीवी सिंधु आज सिडनी में ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल सेमीफाइनल में जापान की अकाने यामागुची से खेलेंगी। सिंधु ने क्वार्टर फाइनल में चेन सू यू को हराया था। यामागुची ने भारत की तन्वी शर्मा को हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी केंद्र झालावाड़ की चंद्रभागा चैनल से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा से अनुप्रसारित कार्यक्रमों की श्रृंखला में आगाज चिंतन वंदनवार कार्यक्रम से। श्रोताओं विविध भारती के कार्यक्रम सवेरे 7 बजे तक सुनेंगे।

बस अच्छे कर्म करते रहें, वही आपका परिचय देगा। ये था आज का चिंतन। आइए अब सुने भक्ति रचनाएं।

लीजिए सुनिए आज का चिंतन। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था, दीपक कभी बोलता नहीं, उसका प्रकाश ही परिचय देता है। ठीक उसी प्रकार आप अपने बारे में कुछ न बोलें,

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन झरोखा के अंतर्गत। सुनिए आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। हमारा अगला कार्यक्रम 6:35 से श्री रामचरितमानस गान। 6:45 पर संगीत सरिता कार्यक्रम में होगी श्रृंखला गजतत वाद्य। कलाकार हैं डॉक्टर प्रकाश महाडिक, प्रस्तुति चारूबाला खरे की। पुराने फिल्मी गीत सुनिएगा भूले बिसरे गीत कार्यक्रम में सुबह 7 बजे से। हमें राही प्यार के ये कार्यक्रम आपको सुनवाएंगे सुबह 7:30 से। त्रिवेणी कार्यक्रम का प्रसारण होगा सुबह 8:15 पर और दिन में 2 बजे। 8:30 पर चित्रलोक कार्यक्रम का प्रसारण होगा। सुबह 9:30 पर आज के फनकार कार्यक्रम केंद्रित होगा संगीतकार वसंत देसाई पर। 10 बजे पिटारा के अंतर्गत गीतों भरी कहानी अंजलि, लेखक अरगवान अभी और संपादन सहायक काजल भदरगे, प्रस्तुति जुबैर खान की।

11 बजे आप सुन सकते हैं मैटिनी शो, 12 बजे समाचार, 12:05 पर कार्यक्रम यादों की महफिल, सुरीला सफर ये कार्यक्रम आप सुनेंगे दिन में 1 बजे। इसमें हम शामिल करते हैं श्रोताओं की टिप्पणियां। त्रिवेणी कार्यक्रम 2 बजे से, 2:30 पर कार्यक्रम सदाबहार नगमें।

श्रोताओं के पसंदीदा फिल्मी गीतों का कार्यक्रम मन चाहे गीत का प्रसारण होगा दिन में 3 बजे से। दिन में 3 बजे नाट्य तरंग कार्यक्रम में सुनिएगा नाटक अभिशप्त गांधार, लेखक डॉक्टर शंकर शेष, निर्देशक सुदर्शन कुमार। शाम 4 बजे पिटारा के अंतर्गत बॉम्बे टॉकीज में आपको सुनवाएंगे कोरियोग्राफर टेरेंस लुइस से अमरकांत दुबे की बातचीत। छाया गीत कार्यक्रम का पुनर्प्रसारण होगा शाम 5 बजे से। तराने नए पुराने ये कार्यक्रम सुनिएगा शाम 5:30 पर। संध्या रंजन ये कार्यक्रम शाम 6:35 पर। शाम 6:45 पर संगीत सरिता कार्यक्रम में होगी श्रृंखला गजतत्व वाद्य कलाकार डॉक्टर प्रकाश महाडिक, प्रस्तुति चारूबाला खरे की। फिल्मकार, लेखिका, नाटककार सई पराजपे द्वारा प्रस्तुत विशेष जयमाला कार्यक्रम का प्रसारण होगा शाम 7 बजे। प्रस्तुति तेजश्री कामले की। शाम 7:45 पर इंद्रधनुष के अंतर्गत सुनिएगा प्रोग्राम जिज्ञासा। रात 8 बजे हवा महल कार्यक्रम में सुनो कहानी होगी स्वामिनी का भाग 2। मुंशी प्रेमचंद की ये कहानी है, वाचन स्वर ममता सिंह का, प्रस्तुति हर्षवर्धन गवई की। चित्रलोक कार्यक्रम आप सुन सकते हैं रात 8:15 से। आपके लिए ये कार्यक्रम

रात 9:30 पर आज के फनकार कार्यक्रम केंद्रित होगा संगीतकार वसंत देसाई पर। छाया गीत कार्यक्रम का प्रसारण समय आपको याद दिला दें, रात 10:00। ढलती जाए रात, ये कार्यक्रम सुनिएगा रात 10:30 पर। जरोखा में ये थी रूपरेखा आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुने श्री रामचरितमानस गान भाग 218। प्रसंग है अयोध्या कांड।

भरत के आचरण तथा विचारों से मुनि वशिष्ठ अत्यंत प्रभावित थे। उनकी अंतरात्मा को भरत बहुत भले लगे थे। अतः चित्रकूट की सभा में एक बार फिर वशिष्ठ जी ने श्री राम से भरत की विनती सुन लेने और उसके बाद साधुमत, लोकमत, राजनीति तथा शास्त्रों की व्यवस्था के अनुसार कार्य करने का परामर्श दिया। भरत धर्म धुरंधर तथा तन मन और कर्म से राम को समर्पित थे। श्री राम को ये ज्ञान था, इसलिए उन्होंने मुनि की सौगंध तथा मृत पिता के चरणों की दुहाई देते हुए कहा, विश्व में भरत के समान भाई कोई हुआ ही नहीं। छोटे भाई के मुंह पर उसकी बड़ाई करते राम को संकोच होता है, किंतु उन्होंने स्वीकार किया कि भरत जो कहें वही करने में भलाई है। तब वशिष्ठ जी ने भरत को संकोच त्याग कर अपने हृदय की बात कहने का आदेश दिया, किंतु गुरुजन को अपने अनुकूल पाकर भी भरत जी सहसा कुछ न कह सके और सोच में पड़ गए। बचपन से उन्होंने श्रीराम के प्रेम की रीति देखी है, उनसे उन्हें इतना दुलार मिला जो कदाचित विधाता को सहन नहीं हुआ और उसने माता को माध्यम बनाकर स्वामी और सेवक के बीच अंतर डाल दिया।

0: गजतत्वाद्य प्रस्तुत है गजवाद्यों पर आधारित इस श्रृंखला की अगली कड़ी। कलाकार हैं डॉक्टर प्रकाश महाडिक।
1: श्रोताओं, कल हमने वायलिन के इतिहास पर चर्चा की थी और भारत में इसके प्रचलन पर विचार किया था। आज हम वायलिन की रचना और उसकी वादन तकनीक पर चर्चा करेंगे। वायलिन की रचना विभिन्न भागों को जोड़कर की जाती है, इस कारण इसके अलग अलग भाग पर चिंतन कर उसमें सुधार का प्रयत्न हर समय किया जाता रहा है। बैक, बेली और रिब्स मिलाकर इसको विशेष आकार दिया जाता है। इसके अंदर निश्चित स्थान पर बेस बार और साउंड पोस्ट लगाए जाते हैं। नेक के ऊपर फिंगर बोर्ड लगाया जाता है। तार लगाने के लिए टेलपीस में लगे एडजस्टर और पेक बॉक्स का उपयोग करते हैं। ब्रिज और नट पर तार रखते हैं। ब्रिज साउंड होल्स के मध्य एक निश्चित स्थान पर रखते हैं। इस प्रकार वायलिन का ढांचा तैयार होता है। इसके अतिरिक्त इसके अवयवों के नाम इस प्रकार हैं: परफ्लिंग, लाइन स्ट्रिप, स्क्रोल, चिन रेस्ट आदि। वायलिन के गज अर्थात बो को मुख्य पांच भागों में विभाजित किया जाता है: स्टिक, हेयर, पॉइंट, फ्रॉग और बो स्क्रू। गज का आकार किस प्रकार का होना चाहिए, इसका गहनता से अध्ययन श्री टॉर्ट द्वारा किया जा चुका है। उनके द्वारा निर्मित बो के मानक आज भी सर्वोत्तम माने जाते हैं। सामान्यतः इसमें चार तार प्रयुक्त होते हैं, किंतु पांच तार युक्त वायलिन का प्रयोग भी प्रचार में आ गया है। प्रोफेसर शिशिर कणाधर चौधरी, प्रोफेसर वीसी रानड़े आदि कलाकार पांच तार युक्त वायलिन ही प्रयोग करते हैं। वायलिन में तरबे लगाने का प्रयोग भी अनेक कलाकारों द्वारा किया गया है। पंडित वीजी जोग पांच तार युक्त तरबदार वायलिन से ही अपना कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं। पाश्चात्य देशों में वायलिन खड़ा रहकर अथवा कुर्सी पर बैठकर बजाया जाता है, किंतु हम भारतीय सामान्यतः इसे नीचे बैठकर बजाते हैं। इस प्रकार नीचे बैठने से हमें सूत, घसीट, गमक आदि को उत्कृष्ट ढंग से बजाने में सुविधा होती है। इसका मनोवैज्ञानिक कारण यह भी है कि भारतीय परंपरानुसार गायन वादन बैठकर ही किया जाता है। दाहिने हाथ से विशेष प्रकार से गज पकड़कर गज का संचालन आवश्यकता अनुसार तारों पर किया जाता है। बाएं हाथ की तर्जनी, मध्यमा, अनामिका और कनिष्ठा

वायलिन मिलाने की तीसरी पद्धति है प सा प सा, अर्थात इसके तार मंद्र पंचम, मध्य षड्ज, मध्य पंचम और तार षड्ज के स्वर में मिलाए जाते हैं। इस पद्धति से मिलाकर बजाने वाले प्रमुख कलाकार पंडित वीजी जोग हैं। इसी पद्धति में मंद्र पंचम को मंद्र मध्यम में मिलाकर चौथी विधि बनाई गई है, अर्थात इसके तार म सा प सा में मिलाकर बजाते हैं। स्वर्गीय केशवराव सुरुंगे इसी पद्धति से मिलाकर वायलिन वादन किया करते थे। पसा पसा पद्धति से बजाया गया राग श्याम कल्याण अब हम सुनते हैं। कलाकार है पंडित वी जी जोग।

थे जयंत श्रीवास्तव और प्रस्तुतकर्ता चारुबाला खरे। संगीत सरिता के लिए इस श्रृंखला की रिकॉर्डिंग हमें प्राप्त हुई आकाशवाणी भोपाल की सौजन्य से। अब आज का संगीत सरिता कार्यक्रम संपन्न होता है।

शुद्धों कार्यक्रम में आइए बात करते हैं मुख्यमंत्री युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना के बारे में। सरकार के द्वारा चलाई जा रही यह योजना युवाओं को उद्यमिता हेतु प्रोत्साहित करने और उन्हें वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए चलाई जा रही है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है हमारे जो युवा वर्ग के लोग हैं, छोटे लघु और मध्यम उद्यम के क्षेत्र में अगर अपना खुद का बिजनेस करना चाहते हैं तो उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए यह योजना चलाई जा रही है। उद्यमियों को व्यवसाय शुरू करने और विकसित करने में वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करना ही इस योजना का प्रमुख लक्ष्य निर्धारित किया गया है। ऋण स्वीकृति के बाद उद्यमियों को उद्यमिता विकास प्रशिक्षण यानी आप यूं समझ सकते हैं इसके लिए एक विशेष ट्रेनिंग प्रदान की जाती है जिससे वो अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। पात्रता के लिए प्रदेश के सभी युवा उद्यमी जिनकी उम्र 18 से 35 वर्ष के मध्य हैं वो इसमें भाग ले सकते हैं। साथ ही पात्रता की जो विशेष शर्तें हैं जैसे कि आयु सीमा, शैक्षिक योग्यता आदि संबंधित विभाग और पोर्टल पर विस्तार से दी गई है। योजना के तहत चयनित उद्यमियों को व्यवसाय शुरू करने के लिए ऋण और वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। साथ ही ऋण प्रक्रिया और स्वीकृति के बाद प्रशिक्षण और मार्गदर्शन दिया जाता है। योजना का संचालन डिपार्टमेंट ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस और अन्य माध्यमों से किया जाता है। योजना में ऋण स्वीकृति के पश्चात उद्यमियों को व्यापार को बढ़ाने के लिए, उसको मैनेज करने के लिए, विपणन के लिए, वित्तीय योजनाओं के लिए और साथ ही साथ अन्य उद्यमिता कौशलों पर प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण के लिए शासन विशेष कार्यक्रम आयोजित करता है जिससे उद्यमी टीम और व्यवसाय संचालन में दक्षता प्राप्त कर सकते हैं। और आवेदन ऑनलाइन MSME पोर्टल पर लॉगिन करके किया जा सकता है या अपने नज़दीकी लोक सेवा केंद्र से संपर्क कर आवश्यक दस्तावेज और आवेदन प्रक्रियाएं पूरी की जा सकती है। इस योजना के माध्यम से सरकार युवाओं को आत्मनिर्भर बनने और करियर के रूप में उद्यमिता के क्षेत्र में कदम रखने के लिए सशक्त प्रोत्साहन करने के लिए आगे बढ़ा रही है।

श्रोताओं कार्यक्रम में आइए बात करते हैं आधुनिक बीमारियां और योग के बारे में। श्रोताओं, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज की हमारी जो आधुनिक जीवन शैली है उससे विभिन्न प्रकार की बीमारियां उत्पन्न हो रही है और उसके लिए योग ही एक ऐसा प्रभावी उपाय है जो विशेष रूप से कार्य करता है और हमारी शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य को संतुलित रहने में मदद करता है। बात करें आधुनिक बीमारियों की, तो आधुनिक जीवन शैली में भोजन की असंतुलित आदतें, तनाव, शारीरिक सक्रियता की कमी और प्रदूषण के कारण अनेक स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ रही है। इसमें प्रमुख रूप से अगर हम बात करें तो हृदय रोग और उच्च रक्तचाप, फास्ट फूड का सेवन, तनाव और शारीरिक गतिविधियों की कमी के कारण हृदय संबंधी बीमारियां मुख्य रूप से हो रही है और साथ ही साथ टेंशन के कारण हाई बीपी की समस्या भी आजकल आम है। आधुनिक भोजन और आलस्य के कारण इंसुलिन का असंतुलित स्तर और रक्त शर्कराओं की समस्या भी आम रूप से देखी जा रही है और जिसके लिए हम आजकल देखते हैं मधुमेह यानी डायबिटीज रोग घर घर फैल रहा है। असंतुलित भोजन के कारण, अनियमित भोजन के कारण, जंक फूड और कम शारीरिक गतिविधियों के कारण मोटापा भी धीरे धीरे अपने पैर पसार रहा है। मानसिक तनाव और मानसिक रोगों में काम के बढ़ते दबाव के कारण, समय की कमी के कारण और बात करें सामाजिक दबावों से टेंशन, चिंता, अवसाद और अनिद्रा जैसी समस्याएं बढ़ रही है और लंबे समय तक बैठे रहने और शारीरिक निष्क्रियता से पीठ दर्द और जोड़ों में समस्या भी हो रही है। इसीलिए श्रोताओं, हमें चाहिए कि हम योग को अपने जीवन का एक अंग बनाएं और नियमित रूप से योग का अभ्यास करें, क्योंकि योग एक प्राचीन भारतीय अभ्यास है जो शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य को संतुलित करता है। आधुनिक बीमारियों में योग के लाभ कई प्रकार से देखे जा रहे हैं। बात करें शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार की, तो आसन हृदय, फेफड़े और पाचन तंत्र को मजबूत करता है जिससे मोटापा और ब्लड प्रेशर से संबंधित रोग दूर होते हैं। मानसिक तनाव के प्रबंधन में ध्यान, प्राणायाम आदि से मानसिक शांति बढ़ती है और हमारी चिंताएँ कम होती है। नियमित रोग अभ्यास से मधुमेह यानी डायबिटीज और हार्मोन असंतुलन को नियंत्रित करने में भी मदद करता है। योग करने से स्ट्रेचिंग और फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है हमारे शरीर में और आसन करने से जोड़ों के दर्द और स्नायु तंत्र की जो कमजोरियां हैं उनको दूर करने में मदद मिलती है। साथ ही साथ योग शरीर में संतुलन और प्राकृतिक ऊर्जा प्रवाह को बनाए रखता है जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। इसलिए निष्कर्ष के रूप में अगर श्रोताओं हम बात करें योग के बारे में, तो आधुनिक जीवन शैली से उत्पन्न बीमारियों से निपटने के लिए योग एक सुरक्षित और परिणामदायक उपाय है। नियमित योग और सकारात्मक जीवन शैली से, यानी अगर हम बात करें सकारात्मक जीवन शैली की, तो संतुलित भोजन कीजिए, पर्याप्त नींद लीजिए और अपने तनाव को कम करने के लिए जो भी आवश्यक प्रबंध आप कर सकते हैं अपने अनुसार कीजिए और इन सभी को अपनाकर शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाया जा सकता है और हमारे शरीर के अंदर उत्पन्न होने वाले रोगों की रोकथाम भी की जा सकती है।

सुबह 8 बजे दिल्ली केंद्र से समाचार प्रभात का अनुप्रसारण किया जाएगा। 8:15 पर हम हाजिर होंगे कार्यक्रम आकाशवाणी @90 लेकर। और श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे रेडियो श्रोता अजय शर्मा से महेश चौरसिया की बातचीत। 8:30 पर कार्यक्रम होगा महिला जगत। किसानवाणी कार्यक्रम होगा शाम 7:45 पर। 9 बजे आप सुनेंगे हर रोज की तरह कार्यक्रम सबरस। और 9:30 पर हम लेंगे हमारी आज की प्रसारण सभा से विदा।

सुबह 8 बजे दिल्ली केंद्र से समाचार प्रभात का अनुप्रसारण किया जाएगा। 8:15 पर हम हाजिर होंगे कार्यक्रम आकाशवाणी @90 लेकर। और श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे रेडियो श्रोता अजय शर्मा से महेश चौरसिया की बातचीत। 8:30 पर कार्यक्रम होगा महिला जगत।

0: जलवायु परिवर्तन हम क्या कर सकते हैं, यह एक संदेश है यूनेस्को की तरफ से। जलवायु परिवर्तन लोगों के जीवन के लिए एक बड़ा खतरा है और इससे बचने के लिए तुरंत एक्शन लेना जरूरी है। सरकारों को उत्सर्जन घटाने और जलवायु के प्रभाव से निपटने के लिए कदम उठाने चाहिए। आम लोगों से लेकर इंडस्ट्रीज तक सबकी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका है। कोयला, तेल और गैस का कम इस्तेमाल बहुत जरूरी है। कई देश अब भी इन पुराने ईंधनों पर निर्भर है, लेकिन वे साफ ऊर्जा अपनाने की पहल कर सकते हैं। निजी क्षेत्र, खासकर ऊर्जा, फैक्ट्री और खेती से जुड़े व्यवसायों की बड़ी जिम्मेदारी है कि वे धरती को बचाने में मदद करें। क्या आप जानते हैं 191 देश पेरिस समझौते का हिस्सा हैं, ताकि ग्लोबल वार्मिंग को 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखा जा सके। यह संदेश यूनेस्को और आकाशवाणी के सहयोग से प्रस्तुत किया गया है।
1: श्रोताओं, कार्यक्रम में अब चलते चलते आइए जानते हैं आज की स्थानीय सूचनाओं के बारे में। स्वास्थ्य शासन विभाग ने 30 जून तक बकाया यूटी टैक्स जमा करने पर 10% विशेष छूट की घोषणा की है। महिलाओं वाली स्वामित्व वाली संपत्तियों को चालू वर्ष के कर के

अतिरिक्त 10% की छूट मिलेगी। आरपीएससी ने राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला में वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी के 3 पदों पर भर्ती हेतु आवेदन 10 जुलाई तक मांगे हैं। और आज का अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। साथ ही अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से लगातार नमी आने से वातावरण में आर्द्रता बढ़ी है। इसी वजह से तापमान सामान्य रहने के बावजूद गर्मी अधिक महसूस हो रही है। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से अगले 2 दिनों में जिले के कुछ हिस्सों में हल्की बूंदाबांदी की संभावना बनी हुई है। श्रोताओं, इसी के साथ ही आज का हमारा ये नमस्कार झालावाड़ कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। तो दीजिए आपके रेडियो दोस्त को आज के इस कार्यक्रम से इजाज़त।

श्रोताओं, अभी आप दैनिक सूचनात्मक कार्यक्रम नमस्कार झालावाड़ सुन रहे थे। हम चंद्रभागा चैनल से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर। आप हमारे केंद्र से प्रसारित कार्यक्रम ऑनलाइन भी सुन सकते हैं न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप के माध्यम से। प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं फिल्म का नाम हर दिल जो प्यार करेगा, युगल गायकी उदित नारायण और अलका याग्निक की है।

समीर का लिखा हुआ ये गीत अनु मलिक ने संगीत निर्देशित किया है। उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज़ों में फिल्म हर दिल जो प्यार करेगा का ये गीत श्रोताओं अभी आपने सुना है। लीजिए कार्यक्रम में आपको सुनवाते हैं अगला गीत।

श्रोता हूँ, ये गीत है फिल्म 1942 ए लव स्टोरी फिल्म से। लता मंगेशकर ने इस गीत को गाया है, बोल लिखी हैं जावेद अख्तर ने और आर डी बर्मन का संगीत निर्देशन।

निशा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।

0: संगीत निर्देशन मिथुन का है और बोल लिखे हैं अमिताभ वर्मा ने। सुनील कामठ के द्वारा गाया गया ये गीत शुदाऊ अभी आपने सुना है फिल्म भाग जोनी से।
1: पापा, कॉलेज की फीस ज्यादा है।
2: बेटा,
3: याद है बोनस के कुछ पैसे हमने दूसरे खाते में रखे थे?
2: दो साल से खाते में कोई लेन देन नहीं हुआ है, शायद इनऑपरेटिव हो गया होगा।
4: तो अब बैंक जाके या वीडियो केवाईसी से केवाईसी अपडेट कराओ, खाता होगा एक्टिव एकदम फ्री।
2: चलो,
1: कहाँ
2: एडमिशन कराने?
4: खाता हुआ एक्टिव,
5: आरबीआई कहता है
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
7: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
8: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: श्रुतम गीत है फिल्म हाँ मैंने भी प्यार किया से उदित नारायण और अलका याग्निक की युगल गायकी को आप सुन रहे हैं। बोल लिखे हैं समीर ने और संगीत निर्देशन नदीम श्रवण ने किया है। श्रुतम आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत आकाशवाणी के चंद्रभागा चैनल से।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
2: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीर कर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
1: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

श्रोतों, ये गीत है फिल्म कन्यादान से और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ को आपने सुना है। तर्ज बनाई है नीरज ने और शंकर जयकिशन ने संगीत निर्देशन किया है। और इसी गीत के साथ ही आज का हमारा फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम भी यहीं संपन्न होता है। कुछ ही देर में आप केंद्र से अनुप्रसारित समाचार प्रभात सुनेंगे।

0: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
1: पक्का। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिवसीय यात्रा पर होंगे रवाना। डीआरडीओ ने बहुस्तरीय बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा क्षमता का प्रदर्शन करते हुए लगातार 3 सफल परीक्षण किए। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने तेल टैंकर पर हमले के विरोध में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से कड़ा विरोध जताया। हमले में मारे गए थे 3 भारतीय नाविक। भारत और बांग्लादेश ने सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखने की प्रतिबद्धता दोहराई। अमरीका प्रस्तावित शांति समझौते के तहत ईरान के नागरिक परमाणु कार्यक्रम पर हुआ सहमत। ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन के महिला सिंगल सेमीफाइनल में आज भारत की पीवी सिंधु और जापान की अकाने यामागुची होंगी आमने सामने। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में पराग्वे के साथ मुकाबले में अमरीका 3-0 से आगे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी आज शाम फ्रांस के नीस शहर पहुंचेंगे। वर्ष 2014 के बाद प्रधानमंत्री की ये फ्रांस की 7वीं आधिकारिक यात्रा है। प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों इस वर्ष के आरंभ में भारत फ्रांस संबंधों को विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी का दर्जा दिए जाने के बाद पहली द्विपक्षीय शिखर बैठक करेंगे। प्रधानमंत्री एवियन में G7 शिखर

0: सम्मेलन में भी भाग लेंगे।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम फ्रांस के नीस शहर पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री मोदी आज दक्षिण फ्रांस में रहने वाले भारतीय समुदाय के लोगों से मिलेंगे। वे कल राष्ट्रपति मैक्रों के साथ भारत इनोवेटिव्स का उद्घाटन

0: भारत और फ्रांस के बीच 25 वर्षों से अधिक पुरानी रणनीतिक साझेदारी है जो रक्षा अंतरिक्ष और आर्थिक सहयोग के क्षेत्र में लगातार मजबूत हुई है। वर्ष 2025-26 में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार लगभग 16 अरब अमरीकी डॉलर हो चुका है। नीस में अपने कार्यक्रम
1: पर चर्चा करेंगे। यात्रा के दौरान श्री मोदी स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से भी भेंट करेंगे। यह राजकीय यात्रा ऐसे समय हो रही है जब भारत और स्लोवाकिया के बीच व्यापारिक संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार वर्ष 2024 में 1 अरब डॉलर से अधिक हो गया था। पिछले वर्ष ये बढ़कर 1 अरब 80 करोड़ डॉलर तक पहुंच गया। प्रधानमंत्री की यात्रा भारत और स्लोवाकिया के संबंधों को नई मजबूती देगी, साथ ही यूरोपीय संघ के सदस्य देशों के साथ भारत का सहयोग और बढ़ने की संभावना है। ब्रातिस्लावा से स्मृति एम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
2: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO को लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल रोधी और मध्यम दूरी की पोत रोधी क्षमता का प्रदर्शन करने वाले लगातार 3 सफल परीक्षणों के लिए बधाई दी है। रक्षा मंत्री ने कहा कि इन परीक्षणों ने भारत को अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल हमले रोकने में सक्षम विशिष्ट देशों के समूह में शामिल कर दिया है। श्री सिंह ने कहा कि DRDO ने विभिन्न प्रकार के खतरों के खिलाफ राष्ट्र की रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने वाली कई महत्वपूर्ण तकनीकों का सफल प्रदर्शन किया है।
3: आजादी के बाद कुछ ऐसे प्रिंसली स्टेट्स थे जिनके शासक भारत में आने से मना कर रहे। शुरुआत में सरदार पटेल ने बातचीत के माध्यम से उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन जब बातचीत से हल नहीं निकला तो उन्होंने बलपूर्वक उन प्रिंसली स्टेट्स का भारत में विलय कराया। हमारी सरकार भी इसी नीति पर चल रही है। ऑपरेशन सिंदूर से हमने दुनिया को बता दिया, शांति और सद्भावना की भाषा नहीं समझने वाले लोगों को हम उसी की भाषा में जवाब देना जानते हैं जो उनकी आदत है।
2: देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के अंतर्गत पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव हुए हैं। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्ष में प्रमुख क्षेत्र में सरकार के प्रयासों पर विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज हम देश की सांस्कृतिक विरासत को मजबूत करने की दिशा में किए गए प्रयासों की चर्चा करेंगे।
4: पिछले 12 वर्षों में भारत की सांस्कृतिक यात्रा ने नई ऊंचाइयां हासिल की हैं। देश की संस्कृति अपनी परंपराओं से जुड़ी हुई है और साथ ही पूरी दुनिया के लिए खुली भी है। सरकार ने देश और विदेश में कई ऐसे कदम उठाए हैं जिससे लोगों में सांस्कृतिक विरासत के प्रति गर्व की भावना और अधिक मजबूत हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, महाकाल लोक परियोजना, माँ कामाख्या मंदिर का पुनर्विकास, जूना सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण और अयोध्या में राम मंदिर की स्थापना जैसे ऐतिहासिक कार्य किए गए हैं। आध्यात्मिक पर्यटन सर्किट और आधुनिक तीर्थयात्री सुविधाओं के माध्यम से भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पहचान को फिर से सशक्त बनाया जा रहा है। इस बदलाव में संग्रहालय अनुदान योजना और सांस्कृतिक कार्यक्रम तथा उत्पादन अनुदान योजना की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इन योजनाओं ने भारत की सांस्कृतिक धरोहर को सुरक्षित रखने के साथ साथ सांस्कृतिक रचनात्मकता और स्थानीय स्तर पर लोगों की भागीदारी को भी बढ़ावा दिया है। संग्रहालय अनुदान योजना के तहत देश भर में 21 नए संग्रहालय स्थापित किए गए हैं और 23 पुराने संग्रहालयों का आधुनिकीकरण किया गया है। यह योजना नागालैंड जैसे राज्यों में भी काफी लाभकारी साबित हुई है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में नागालैंड के कला और संस्कृति विभाग के गाइड लेक्चरर तालित मिजेन ने इस योजना के लाभों पर बात की। सांस्कृतिक कार्यक्रम और उत्पादन अनुदान योजना भी देश भर में सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देने का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनकर उभरी है। मणिपुर की सबसे पुरानी रंगमंच संस्था मणिपुर ड्रामेटिक यूनियन को हाल ही में वित्तीय सहायता मिली है, जिसके बाद वह नए नाट्य प्रस्तुतियों की तैयारी कर रही है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में संस्था के सचिव खबैम शरदचंद ने क्षेत्र कला और संस्कृति को मजबूत समर्थन देने के लिए सरकार का आभार व्यक्त किया है।
1: इस संगठन की स्थापना के बाद से हमें संस्कृति मंत्रालय से विभिन्न प्रकार के अनुदान प्राप्त हुए हैं। सांस्कृतिक अनुदान के अंतर्गत हमें इस वर्ष 25,00,000 रुपए प्राप्त हुए हैं। हमें स्वीकृत राशि का 75% प्राप्त हुआ है। मैं भारत सरकार और संस्कृति मंत्रालय का आभार व्यक्त करता हूं।
4: भारत ने अपनी संस्कृति को संरक्षित और दुनिया तक पहुंचाने के लिए बड़े कदम उठाए हैं। प्राचीन मंदिरों का जीर्णोद्धार किया है, तीर्थ स्थलों का विकास हुआ है और पुरानी परंपराओं को नया जीवन मिला है। साथ ही

0: एम जयशंकर ने अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से बातचीत में खाड़ी में अमेरिकी नौसेना के हमलों पर कड़ा विरोध जताया है। इन हमलों में 3 भारतीय नाविक मारे गए थे। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि वाणिज्यिक जहाजों पर इस तरह की घातक कार्रवाई उचित नहीं है।
1: ओमान तट पर टैंकर एम्प्टी स्टेटेबेलो पर अमेरिकी हमले में 3 भारतीय चालक दल के सदस्यों की मौत की।
0: कुछ परमाणु ऊर्जा क्षेत्र को समाप्त करना नहीं बल्कि ईरान को बम बनाने की क्षमता बनाए रखने से रोकना है। भारत और बांग्लादेश ने सीमा पर शांति, स्थिरता और सद्भाव बनाए रखने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। सीमा सुरक्षा बल और बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड के बीच 57वां महानिदेशक स्तरीय सीमा समन्वय सम्मेलन 8 से 11 जून तक नई दिल्ली में आयोजित किया गया। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के भारतीय सैन्य अकादमी में आज पासिंग आउट परेड आयोजित की गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस अवसर पर परेड का निरीक्षण किया। इस वर्ष की ऐतिहासिक पासिंग आउट परेड में पहली बार महिला कैडेट्स भी शामिल हुई। कैबिनेट सचिव टीवी सोमनाथन ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के महानिदेशक अभिषेक सिंह के साथ बैठक में नीट पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की है। उन्होंने पुनर्परीक्षा के सुचारू, पारदर्शी और सुरक्षित आयोजन के लिए सभी संबंधित पक्षों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने पर बल दिया। लॉस एंजल्स में फीफा फुटबॉल विश्व कप में पराग्वे के साथ मैच में ताजा समाचार मिलने तक अमेरिका 3-1 से आगे चल रहा था। इससे पहले कनाडा और बोस्निया हर्जेगोविना का मैच 1-1 की बराबरी पर समाप्त हुआ। भारत की पीवी सिंधु आज सिडनी में ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल सेमीफाइनल में जापान की अकाने यामागुची से खेलेंगी। सिंधु ने क्वार्टर फाइनल में चेन सू यू को हराया था। और अब बात मौसम की। से खेलेंगी सिंधु ने क्वार्टर फाइनल में चेन सू यू को हराया था। और अब बात मौसम की।

0: परमाणु ऊर्जा क्षेत्र को समाप्त करना नहीं बल्कि ईरान को बम बनाने की क्षमता बनाए रखने से रोकना है। भारत और बांग्लादेश ने सीमा पर शांति, स्थिरता और सद्भाव बनाए रखने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। सीमा सुरक्षा बल और बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड के बीच 57वां महानिदेशक स्तरीय सीमा समन्वय सम्मेलन 8 से 11 जून तक नई दिल्ली में आयोजित किया गया। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के भारतीय सैन्य अकादमी में आज पासिंग आउट परेड आयोजित की गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस अवसर पर परेड का निरीक्षण किया। इस वर्ष की ऐतिहासिक पासिंग आउट परेड में पहली बार महिला कैडेट्स भी शामिल हुईं। कैबिनेट सचिव टीवी सोमनाथन ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के महानिदेशक अभिषेक सिंह के साथ बैठक में नीट पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की है। उन्होंने पुनर्परीक्षा के सुचारू, पारदर्शी और सुरक्षित आयोजन के लिए सभी संबंधित पक्षों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने पर बल दिया। लॉस एंजल्स में फीफा फुटबॉल विश्व कप में पराग्वे के साथ मैच में ताजा समाचार मिलने तक अमरीका 3-1 से आगे चल रहा था। इससे पहले कनाडा और बोस्निया हर्जेगोविना का मैच 1-1 की बराबरी पर समाप्त हुआ। भारत की पीवी सिंधु आज सिडनी में ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल सेमीफाइनल में जापान की अकाने यामागुची से खेलेंगी। सिंधु ने क्वार्टर फाइनल में चेन सू यू को हराया था। और अब बात मौसम की।
1: अपने कंधों पर उठाया, गाँव से लेकर महानगरों तक, किसानों से लेकर आम नागरिकों तक, हर वर्ग को आकाशवाणी ने अपनी आवाज दी। आज इसी आकाशवाणी के 90 वर्ष के सफर को साझा करने के लिए हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं हमारे एक नए अतिथि जो झालावाड़ और झालरापाटन का प्रतिष्ठित और जाना पहचाना चेहरा है, जिसकी आवाज़ और प्रदर्शन के सभी दीवाने हैं। आप सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में जन जागृति फैलाने का कार्य करते हैं और युवाओं को प्रोत्साहित करते हैं। आप एक मंचीय संचालक हैं जिनका नाम है अजय शर्मा। आज हम उनसे मुलाकात करते हैं और उनका जानते हैं आकाशवाणी के 90 वर्ष के साथ उनका सफर। तो अजय जी, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है, नमस्कार
2: जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपको मुझे एक ऐसे प्रतिष्ठित मंच पर आमंत्रित करने के लिए जो कि अपने 90 वर्ष पूरे कर रहा है, तो धन्यवाद इस प्रतिष्ठित मंच को और आपको।
1: जी अजय जी, कि आकाशवाणी के सफर को साझा करते हैं और जानते हैं आपसे कि आप कब से आकाशवाणी सुन रहे हैं।
2: जी, आकाशवाणी की बात करें तो मैं आकाशवाणी के कार्यक्रम उस वक्त से सुन रहा हूँ जिस वक्त हमारे घरों में टीवी भी नहीं हुआ करते थे। मैं बचपन से, जैसे मैं समझने लगा हूँ तभी से मैं आकाशवाणी के कार्यक्रम सुन रहा हूँ। और आकाशवाणी के कार्यक्रमों को हम लोग आज भी पसंद करते हैं, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आ गया हो, प्रिंट मीडिया आया हो, सोशल मीडिया आया हो, लेकिन आकाशवाणी की जो महत्वता है मेरे लिए कभी कम नहीं हो सकती। कहते हैं ना कि वो पहला प्यार कभी भुलाया नहीं जा सकता, तो वही आकाशवाणी मेरे लिए मनोरंजन का पहला साधन था, तो इसे मैं कभी नहीं भूल सकता।
1: जी बिल्कुल, आकाशवाणी सबका पहला प्यार रहा है। आकाशवाणी का कौन सा कार्यक्रम जो है आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया और पसंद करते हैं?
2: आकाशवाणी का अगर कोई पसंदीदा कार्यक्रम मेरा है, वो है जो श्रोताओं की फरमाइश को लेकर के अपने पसंदीदा गाने सुनाया करता है। और इस कार्यक्रम को लेकर इसलिए भी मैं जुड़ा हुआ हूँ क्योंकि इसमें जो श्रोता अपनी पसंदीदा कार्यक्रम को, गाने को सुनने के लिए फ़ोन करते हैं, तो वहाँ कई बार ऐसा फन भी निकल के आता है और उनसे बातचीत करते हुए, उनकी आपसी बातचीत को देखते हुए कई बार अपनापन भी लगता है कि भाई मैं झालावाड़ से हूँ, कोई रायपुर से है, कोई अकलेरा से फ़ोन कर रहा है, तो कहीं ना कहीं अपनापन लगता है। तो मेरा पसंदीदा कार्यक्रम श्रोताओं की फरमाइश है।
1: जी जी हाँ जी, हेलो आकाशवाणी जो ऐसा कार्यक्रम है जो स्थानीय रूप से और बिल्कुल देश विदेश के कोने कोने से हमारे पास फ़ोन आते हैं और वो हमसे जुड़ते हैं और अपनी बातें साझा करते हैं और उनको बहुत अच्छा अनुभव होता है। तो क्या आप आज भी समाचार सुनने के लिए आकाशवाणी पर भरोसा करते हैं? क्या आपको अनुभव होता है समाचारों को लेकर के इसमें?
2: जी बिल्कुल, आज भी आकाशवाणी विश्वसनीय और विविधता से भरा हुआ है। और जब भी हम समाचार की बात करते हैं, न्यूज़ की बात करते हैं, तो आज आप देखेंगे तो काफ़ी न्यूज़ चैनल है और इनकी जो टीआरपी को लेकर के होड़ बनी हुई है और न्यूज़ को सबसे पहले दिखाने की होड़, तो कहीं ना कहीं ये बिना सोचे समझे कई बार ऐसी न्यूज़ आ जाती हैं जिन्हें बाद में इन्हें खुद ही खेद प्रकट करना पड़ता है
1: और बनावटी रूप से प्रस्तुत कर देते हैं उसको।
2: जी बिल्कुल, और आकाशवाणी बिल्कुल तथ्यों के साथ, प्रामाणिकता के साथ न्यूज़ को प्रसारित करता है क्योंकि एक सरकारी माध्यम है, तो विश्वसनीयता पे शक की कोई गुंजाइश नहीं है। तो आकाशवाणी पे

0: आज भी कई समाचार ऐसे हैं जहां मुझे डाउट होता है, तो मैं आकाशवाणी पर ही सुनना पसंद करता हूं।
1: अच्छा अजय जी, जैसा आप बता रहे हैं कि आकाशवाणी सबको जोड़ने का कार्य करता है, तो क्या आपको लगता है कि आकाशवाणी लोगों को आपस में जोड़ने का काम करती है, और कैसे?
0: जी बिल्कुल, आकाशवाणी जोड़ने का काम करती है। इसमें अलग अलग क्षेत्र से संबंधित कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाते हैं, क्षेत्रीय भाषाओं में कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाते हैं। इसके अलावा जो प्रतिभाओं को मंच प्रदान करता है आकाशवाणी, तो कहीं ना कहीं एक दूसरे को कनेक्टिविटी का बहुत बढ़िया माध्यम है। हम लोग अक्सर कार्यक्रम देखते हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम, कई क्षेत्रीय भाषाओं के कार्यक्रम देखते हैं जिन भाषाओं को हम नहीं समझ पाते हैं, लेकिन कई जब भी हम लोग उनको ध्यान से सुनते हैं तो उनसे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है, आपसी जुड़ाव सा महसूस होता है। तो मैं समझता हूँ कि आकाशवाणी सभी को जोड़ने का अच्छा सा काम भी करता है।
1: तो आज का जो युग है, वो मोबाइल और इंटरनेट के दौर में आप आकाशवाणी सुनते हैं, और क्यों सुनते हैं?
0: मैंने जैसा पहले भी बताया था आपको, आज चाहे प्रिंट मीडिया के बाद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया हो, सोशल मीडिया आया हो, लेकिन इसकी जो विश्वसनीयता है
1: जी
0: आज भी कहीं ना कहीं विश्वसनीयता पे शक बना हुआ रहता है। कई भ्रामक खबरें हमें सोशल मीडिया पे दिखाई पड़ती है, सुनाई पड़ती हैं, तो मेरा जो भरोसा है वो आज भी आकाशवाणी पर ही है। और मैं खुद सुनता हूँ, साथ ही जो हमारे यहाँ के झालावाड़ जिले की प्रतिभाओं को मंच प्रदान किया जाता है, उनके साक्षात्कार लिए जाते हैं, तो मैं अपनी फैमिली को भी और साथ ही जो बच्चे हैं उनको भी मैं वो साक्षात्कार सुनाता हूँ। कई ऐसे सांस्कृतिक कार्यक्रम जो आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या टीवी पे या मोबाइल पे आपको देखने को नहीं मिलेंगे, वो आपको आकाशवाणी में आज भी सुनने को मिल जाते हैं। तो कई बार हम परिवार के साथ सामाजिक कार्यक्रम, हमारे क्षेत्रीय भाषाओं के
1: जी
0: लोकगीत, या फिर कुछ ऐसे कार्यक्रम जो हमें टीवी या कहीं और पे मोबाइल पे देखने को नहीं मिलते हैं, वो हम जरूर सुनते हैं।
1: जैसा कि आपने बताया कि हेलो आकाशवाणी आपको बहुत पसंद है और आप सुनते हैं, तो आकाशवाणी में की कोई ऐसी याद जो आपको आज भी याद हो?
0: आकाशवाणी की एक जो मेरी बेहतरीन याद है उसको सोच के कई बार मुझे हंसी भी आती
1: जी
0: है।
1: जी
0: कार्यक्रम यही था, श्रोताओं की फरमाइश,
1: हाँ
0: और मुझे एक गाना सुनना था
1: जी
0: 1942 ए लव स्टोरी का,
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: कुछ ना कहो कुछ भी ना कहो, क्या कहना है क्या सुनना है। लेकिन जब
1: हाँ
0: जैसे ही मेरा
1: हाँ
0: फोन लगा
1: जी
0: आकाशवाणी
1: जी
0: में और मैं इतना उत्साहित हो गया,
1: हाँ
0: जब आकाशवाणी से मुझसे पूछा गया कि आपकी फरमाइश कौन सी है, आप कौन सा गाना सुनना चाहते हैं,
1: हाँ
0: तो मैं उस उत्साह में भूल गया कि मुझे गाना कौन सा सुनना है। फिर उधर से उद्घोषक की आवाज़ आई,
1: जी
0: भाई क्या कहना है आपको,
1: हाँ
0: क्या सुनना है, भाई आप बोलें तो हम
1: जी
0: आपकी फरमाइश पूरी कर सकते हैं। जैसे
1: क्या
0: ही उन्होंने कहा क्या सुनना
1: करना है
0: है क्या कहना
1: जी,
0: है, मुझे एकदम से
1: गाना
0: मेरे
1: गाना
0: दिमाग में
1: है।
0: क्लिक कर गया कि मेरा गाना वही है 1942 लव स्टोरी का, क्या कहना है क्या सुनना है। तो ये आज भी जब भी मुझे याद आता है तो चेहरे पे हल्की सी मुस्कान आई जाती है।
1: बहुत बढ़िया याद है आपकी। जैसे युवाओं से आप जुड़े हुए हैं, आप सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, और युवाओं को कई तरह से आप नशा मुक्ति से भी दूर रखने का कार्य करते हैं, तो युवा पीढ़ी को आकाशवाणी से क्यों जुड़ना चाहिए? ऐसा क्या है जो युवाओं को उससे लाभ मिलता है?
0: देखिए आकाशवाणी का मैं जैसा पहले भी कहता आ रहा हूँ,

0: कुछ इस तरह के कार्यक्रम दिखाई देंगे जिसमें काफी अश्लीलता है। कई कार्यक्रम ऐसे जिनका मैं नाम लेना नहीं चाहूंगा, वो युवाओं को भ्रमित कर रहा है। आप सोशल मीडिया पे एड देखते हैं, कई पान मसाला के जो अच्छे अच्छे सेलिब्रिटीज है वो एड कर रहे हैं, लेकिन इस दौर में भी आकाशवाणी की विश्वसनीयता बनी हुई है। विविधताओं से भरे कार्यक्रम आज भी आप पूरे विश्वास के साथ सुन सकते हैं, चाहे वो शिक्षा से जुड़े हुए हों, चाहे विज्ञान से जुड़े हुए हों, चाहे सामाजिक मुद्दों को लेकर आकाशवाणी पे विशेषज्ञों की बातचीत हो या उस मुद्दे पर बहस हो, तो वो चीज़ों से आपको काफ़ी सीखने को मिल सकता है। आज हम लोग देखते हैं टेलीविज़न पे चार प्रवक्ताओं को बुला के एक मारामारी वाला जो देखते हैं, हम
1: जी
0: लोग
1: जी
0: आपस में लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, लेकिन आज भी हम आकाशवाणी पे देखते हैं सामाजिक मुद्दों पे या किसी भी विषय पे बहस होती है या उस मुद्दों पे चर्चा होती है। तो इस तरह का कोई टीआरपी को लेकर के कोई होड़ नहीं है कि इसे बहुत इस तरीके से कार्यक्रम को दिखाना है कि हमारी टीआरपी बढ़े। आकाशवाणी आज भी वही सहजता और शालीनता शिष्टाचार के साथ अपने कार्यक्रमों को प्रस्तुत करता है। तो मैं युवाओं से यही कहूंगा कि आप आज भी आकाशवाणी पर उसी तरह से भरोसा कर सकते हैं जो आप अपने घर के एक 90 साल के बुजुर्ग पे भरोसा करते हैं। जो अनुभव आकाशवाणी के पास है वो आज के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पास नहीं है।
1: बिल्कुल, आकाशवाणी वो माध्यम है जो कई वर्षों से अपने प्रिंट मीडिया या संचार का माध्यम बनी हुई है, और उसके माध्यम से वो एक ऐसी पीढ़ी को रूबरू कर रही है कि वो प्राचीन जो जानकारियां हैं, जो विश्वसनीय जानकारियां हैं, वो आकाशवाणी को देती रही है। तो मैं आपसे पूछूंगा, जो आकाशवाणी है उसको आपके परिवार के सदस्य भी सुनते हैं, या आप कब से वो लोग सुन रहे हैं और किस माध्यम से सुन रहे हैं?
0: जी, जैसा मैंने बताया है कि श्रोताओं की फरमाइश, आज हम लोग जैसा भी कभी भी जाते हैं ट्रैवल पे, हम अपनी कार लेकर के जा रहे हैं, हम जब लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं या ट्रैवल कर रहे हैं अपनी कार से, तो हम उसमें अपनी पसंदीदा गाने लगाने के बजाय पेन ड्राइव या ब्लूटूथ से कनेक्ट करने के बजाय आज भी हम आकाशवाणी को ही सुनते हैं।
1: जी
0: दूसरी बात, इसमें कई बार हमारे झालावाड़ की जानी पहचानी प्रतिभाओं का साक्षात्कार होता है, तो हम लोग उन्हें भी बड़े ध्यान से सुनते हैं और हमारे परिवार के सदस्यों को या बच्चों को भी सुनाते हैं, ताकि जो प्रतिभाएं आकाशवाणी पर साक्षात्कार दे रही हैं, अपने अनुभव आकाशवाणी के साथ साझा कर रही हैं, तो उन अनुभवों से, उन बातचीत के माध्यम से हमारे बच्चे भी शिक्षा ग्रहण करें और हमारे परिवार के सदस्य भी हमारे झालावाड़ की प्रतिभाओं को पहचानें। तो इस वजह से मैं आकाशवाणी को अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ सुनना पसंद करता हूँ। और कई बार ऐसा भी होता है कि हम लोग जा रहे हैं कि नहीं, मेरी पसंद का गाना लगेगा, मेरी पसंद का लगेगा, तो सबसे बढ़िया माध्यम है आकाशवाणी। रैंडमली सॉन्ग सुनाता है और हमें पसंद भी आते हैं, क्योंकि जो आकाशवाणी के सॉन्ग होते हैं कई बार ओल्ड इज गोल्ड सॉन्ग होते
1: बिल्कुल
0: हैं,
1: बिल्कुल
0: तो वो हमेशा सुनना हमें भी पसंद आता है, हमारे बच्चों की भी पसंद है, और ख़ास हमारे जो घर के बड़े मम्मी पापा हैं
1: जी
0: उनकी भी पसंद होती है। तो कहीं कोई गुंजाइश नहीं होती किसी की पसंद
1: जी
0: नापसंद की।
1: सही है, इसीलिए कहा गया है देश की सुरीली धड़कन जो है आकाशवाणी है, और सबको पसंद आते हैं। उनके जो पुराने सदाबहार गीत होते हैं उनके माध्यम से वो अपनी फीलिंग्स को जोड़े रखते हैं। तो कार्यक्रम के अंत में चलते चलते मैं आपसे यही पूछना चाहूँगा कि आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने पर आप क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे श्रोताओं को?
0: जी, आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं, तो मैं जैसा भी थोड़ी देर पहले भी कहा था मैंने, आकाशवाणी 90 साल पूरे कर रहा है और 90 साल के कई हमारे परिवार में बुजुर्ग भी होंगे, तो जो अनुभव उनके पास है, जो शिष्टाचार है, जो संस्कार उनके पास है, वही शालीनता, वही विविधता, वही अनुभव आकाशवाणी के पास है। तो मैं युवाओं को सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि आप अपने बड़े बुजुर्गों से सीखते हैं, उनसे संस्कार लेते हैं, उनसे अनुभव प्राप्त करते हैं, वही अनुभव आप आकाशवाणी के साथ ले सकते हैं। कई कार्यक्रम, जैसा अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने बताया था, विविधताओं से भरे कार्यक्रम होते हैं, हमारी संस्कृति को आकाशवाणी प्रस्तुत करता है अलग अलग माध्यमों से। हमारे लोकगीतों के कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाते हैं, हमारे जो कई ऐसे कार्यक्रम हैं जो हमारे क्षेत्रीय भाषाओं में होते हैं, तो हमारी क्षेत्रीय भाषाओं को भी सीखने का हमें मौका मिलता है। तो मैं युवाओं से यही कहूँगा कि आप सोशल मीडिया को देखें, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को देखें, लेकिन आकाशवाणी बिल्कुल उसी बुजुर्ग के समान है, उसी अनुभवी इंसान के समान है जो हमें बहुत सारी चीज़ें सिखा सकता है। तो आकाशवाणी के साथ बिल्कुल जुड़े रहिएगा।
1: जी अजय जी, आपने बहुत अच्छा सफ़र अपना बताया, और जो हमें साझा की बातें वो युवा सुन रहे हैं, और युवा इससे कुछ ना कुछ सीखेंगे, लाभ प्राप्त करेंगे। आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

0: जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद मुझे आमंत्रित करने के लिए, और आकाशवाणी को 90 वर्ष पूरे होने पर ढेर सारी बधाई शुभकामनाएं। आकाशवाणी इसी तरह से निरंतरता के साथ युवाओं को प्रेरित करता रहेगा नए नए कार्यक्रमों के माध्यम से और अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से। थैंक यू सो मच।
1: थैंक यू सर।
2: श्रोताओं अभी आप सुन रही थी आकाशवाणी के 90 वर्षों के सफर में रेडियो श्रोता अजय शर्मा की महेश कुमार चौरसिया से बातचीत।
3: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
4: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: FM बैंड 103.2 MHz पर हम आकाशवाणी केंद्र झालावाड़ के चंद्रभागा चैनल से बोल रहे हैं। स्टूडियो घड़ी में सुबह के 8:30 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम महिला जगत।

इनके वंशानुक्रम के लिए माता पिता दोनों का होना आवश्यक है, भले ही वे स्वयं रंगहीनता से पीड़ित ना हो। सखियों, रंगहीनता के कारण बालों और त्वचा में पिगमेंटेशन या मेलानिन की कमी हो जाती है, जिससे व्यक्ति सूर्य की रोशनी और तेज प्रकाश के प्रति संवेदनशील हो जाता है, और इसके परिणाम स्वरूप रंगहीनता से पीड़ित लगभग सभी लोग दृष्टिबाधित होते हैं और उन्हें त्वचा कैंसर होने का खतरा रहता है। सखियों, रंगहीनता का मुख्य कारण है मेलानिन की कमी। त्वचा और आंखों में मेलानिन की कमी के कारण रंगहीनता से पीड़ित व्यक्तियों में अक्सर स्थायी दृष्टिहीनता होती है। 2026 की थीम इस बात पर ध्यान आकर्षित करती है कि रंग के आधार पर होने वाला भेदभाव किस प्रकार गरिमा, सुरक्षा और मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है। सखियों, इस दिवस को मनाने का उद्देश्य रंगहीनता से ग्रसित लोगों के प्रति सामाजिक जागरूकता फैलाना और उन्हें स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा के समान अवसर प्रदान करना है। सखियों, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 18 दिसंबर 2014 को एक प्रस्ताव पारित कर इस दिवस की स्थापना की थी और पहली बार 13 जून 2015 को ये दिन मनाया गया। सखियों, भारत सरकार के RPWD एक्ट 2016 के तहत रंगहीनता को विकलांगता की आधिकारिक सूची में शामिल किया गया है। ये दिन रंगहीनता से पीड़ित व्यक्तियों की उपलब्धियों को उजागर करने और उनके लिए समानता और समावेशी समाज के निर्माण पर जोर देता है। तो सखियों, ये तो थी चर्चा अंतर्राष्ट्रीय अल्बिनिज्म या जागरूकता दिवस पर। आइए अब आपको लिए चलते हैं मनोरंजन की ओर और सुनवाते हैं ये मधुर गीत।

0: प्रगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल
3: सखियों चेहरे और मुस्कान की असली सुंदरता स्वस्थ और चमकीले दांतों पर निर्भर करती है। दांतों की बनावट रंग और संरेखण न केवल आपके आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं बल्कि आपके चेहरे की संपूर्ण बनावट को भी संतुलित रखते हैं। सखियों दांतों और मसूड़ों को मजबूत बनाने और बीमारियों से बचाव के लिए दिन में 2 बार सुबह और रात को सोने से पहले फ्लोराइड युक्त टूथपेस्ट से कम 2 मिनट तक ब्रश अवश्य करें। कभी कभी दांतों के पीलेपन और मसूड़ों की सूजन को कम करने के लिए हल्दी नमक और सरसों के तेल के मिश्रण से मसाज भी कर सकते हैं। सखियों दांतों और मसूड़ों की बीमारियों से बचाव के लिए रोजाना ब्रश करना और फ्लॉसिंग करना बेहद जरूरी है। ये 2 महत्वपूर्ण कदम दांतों के बीच और मसूड़ों में जमा गंदगी और प्लाक को हटाने में मदद करते हैं। मसूड़ों और दांतों की बीमारियों से बचाव इस विषय से जुड़ी और अधिक जानकारी के लिए आइए सुन लेते हैं ये भेंट वार्ता। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे महिला जगत कार्यक्रम में। सबसे पहले हम चाहेंगे कि आप अपना परिचय स्वयं हमारी बहनों और सभी श्रोताओं को दें।
4: नमस्कार, मैं डॉक्टर दिव्य जैन, प्रोफेसर मेडिकल कॉलेज झालावाड़, दंत विभाग।
3: सर जैसा कि आज हमारी भेंट वार्ता का विषय है मसूड़ों और दांतों की बीमारियों से बचाव, तो सबसे पहले हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि दांत और मसूड़ों को मजबूत बनाने के लिए क्या करना चाहिए।
4: दांतों को मजबूत और मसूड़ों को मजबूत रखने के लिए हमें अपना आहार संतुलित आहार रखना चाहिए और ऐसी चीजों का सेवन हमें बंद कर देना चाहिए जिनसे इनको

0: नुकसान होता है, जैसे जर्दा, तंबाकू, सिगरेट और कोई भी ऐसी चीज जो अमूमन पूरे स्वास्थ्य को खराब करती है, जैसे ज्यादा शुगर, ज्यादा ऐसी चीज जो दांतों को घिसे, जो एसिडिटी करे, इन चीजों से हमें बचना चाहिए।
1: सर, मसूड़ों को मजबूत बनाए रखने के लिए सबसे अच्छा विटामिन कौन सा है और इसे किन किन खाद्य पदार्थों से प्राप्त किया जा सकता है?
0: मसूड़ों के लिए विटामिन सी का सेवन बहुत जरूरी है मसूड़ों के स्वास्थ्य अच्छा रखने के लिए। विटामिन सी के सोर्सेज जैसे हम जानते हैं कि खट्टी चीजों से हमें विटामिन सी मिलता है, और दांतों की सेहत अच्छी रखने के लिए विटामिन ए, विटामिन डी, ई और के हमें इनका सेवन करना चाहिए। हम जानते हैं विटामिन ए का सबसे अच्छा सोर्स है कैरेट, गाजर और हरी सब्जियां, और विटामिन डी हमें धूप में निकलना चाहिए जिससे कि हमारा जो बॉडी की कैल्शियम प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी बढ़ाता है, और विटामिन के हमें अगेन लीफी वेजिटेबल्स और कैल्शियम से हमें प्राप्त होता है। ये दांतों और मसूड़ों की सेहत के लिए बहुत जरूरी है।
1: सर, ऐसे कौन कौन से खाद्य पदार्थ हैं जिन्हें अपनी डाइट में शामिल करके दांतों और मसूड़ों को मजबूत बनाया जा सकता है?
0: जैसा मैंने बताया कि ये जो विटामिन जिन में रिच होता है, जिन सब्जियों में और जिन फ्रूट्स में, उनका सेवन करके अपने दांतों और मसूड़ों की सेहत को अच्छा रख सकते हैं। जिनमें हमें फलों का, जो सीजनल फल है उनका, सीजनल वेजिटेबल्स है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, पत्तेदार हरी पत्तेदार सब्जियां और खट्टी चीजें जैसे संतरा, मौसमी, नींबू, जो विटामिन सी का अच्छे सोर्स है, वो काम में लेना चाहिए। और खास तौर पर इन चीजों से दूर रहना चाहिए, जो गमी या स्टिकी चीजें हैं उन चीजों का सेवन हमें कम से कम करना चाहिए। हमें खुद को भी और बच्चों को भी इनसे दूर रखना चाहिए जिससे कि उनके भी दांतों का स्वास्थ्य ठीक रहे, अच्छा रहे।
1: सर, दांतों में अमूमन कौन कौन सी बीमारियां देखने को मिलती हैं?
0: मैडम, दांतों में हमें नॉर्मली जो पेशेंट हमारे पास कंप्लेन लेकर आते हैं, वो दांतों में दर्द की कंप्लेन, दर्द कई रीजन से होता है, या तो चोट लगे या फिर दांतों में कीड़ा लगा हुआ हो, जिसे हम कहते हैं कैविटी बनी हो, केरीज हुई हो उसके, तो ये मोस्ट कॉमन डिजीज है। दूसरे, मैं एक ऑर्थोडोंटिस्ट हूँ, तो पेशेंट मेरे पास दांत ऊपर नीचे होना या दांत आगे होना, ये समस्याएं सबसे ज्यादा कॉमन होती है। लुक्स को ठीक करने के लिए भी पेशेंट्स आते हैं हमारे पास, और अगेन अगर क्राउडिंग है, टेढ़े-मेढ़े दांत हैं, उनमें साफ सफाई की कमी हो जाती है क्योंकि ब्रश उन जगहों पर पहुंच नहीं पाता जहां पे उबड़ खाबड़ जो दांत होते हैं या क्राउडिंग होती है जिनमें, तो साफ सफाई की कमी की वजह से भी वहां पे कैविटी और कैलकुलस डिपॉजिट होता है, तो दांत खराब होने के चांसेस।
1: सर, क्या कोई ऐसे घरेलू उपाय भी हैं जिन्हें अपनाकर दांतों और मसूड़ों की परेशानियों से निजात पाई जा सकती है?
0: जी बिल्कुल, हमें रफेज वाली सब्जियां खानी चाहिए। मैं पहले देखता था हमारे दादाजी दादी के टाइम से नमक के कुल्ले करते थे, नमक गर्म पानी में नमक डाल के कुल्ले करते थे, बहुत ही अच्छी एंटीबायोटिक शक्तियां होती है उनमें। फिर उसके बाद हल्दी का जो सेवन होता था, वो उनसे कई जो जगह जहाँ पे कीड़े लगे होते हैं वो बीमारियां दूर होती थी, वो बीमारियां कम होती थी। तो साफ सफाई का ध्यान रखकर अपने दांतों और मसूड़ों की सेहत को

0: साफ सफाई रखें। जैसे हम शादी में जाते हैं तो मिठाइयाँ वगैरह जो होती हैं उसका हम बहुत अच्छे से यूज़ करते हैं,
1: जी
0: तो हमें ये देखना चाहिए कि हम उसके बाद अच्छे से कुल्ला करें। वैसे भी कई चीज़ें जो केमिकल युक्त हैं, जो आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड है, जैसे आजकल मैं देखता हूँ बच्चों के डाइट में मैगी, पास्ता और फास्ट फूड, फिर स्टिकी होते हैं जो फंस जाते हैं, और उसमें हम जानते हैं कि फैट की मात्रा भी बहुत ज़्यादा
1: हाँ
0: होती है, तो उससे मोटापा भी बढ़ने के चांसेस होते हैं। अगर उसकी आदत लग जाए, जैसे बच्चे अगर रोज खा रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, एसिडिक होता है उसका नेचर कोल्ड ड्रिंक का, तो वो दांत को घिसता है और इस तरह से दांतों को खराब करता है। और फिर अगर ये सब लेने के बाद अगर प्रॉपर ब्रशिंग नहीं है या प्रॉपर कुल्ला नहीं किया है खाने के बाद, वो जमा रह गया, तो वो आगे जाकर और बड़ी बीमारी कर देता है और अल्टीमेटली दांतों को नुकसान करके, और कई बार ऐसी नौबत आ जाती है मैं देखता हूँ अक्सर, अगर हमने अवॉइड किया उसको तो दांतों का कीड़ा इतना बढ़ जाता है, केरीज इतनी बढ़ जाती है कि अल्टीमेटली हमें दांत को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, निकालना पड़ता है। साफ सफाई का ध्यान रखिए और ये स्टिकी चीजें को अवॉइड करके, फास्ट फूड चीजें अवॉइड करके, कोल्ड ड्रिंक्स एंड ऑल, हम दांतों की सेहत को अच्छा रख सकते हैं, दांतों की बीमारियों से बच सकते हैं।
1: सर, अक्सर बहुत से जो बच्चे होते हैं वो अंगूठा चूसने की समस्या से पीड़ित रहते हैं, तो क्या आगे चलकर दांतों में इससे कोई विकार या कोई बुरा प्रभाव देखने को मिलता है?
0: जी बिल्कुल मैडम, जब बच्चा अंगूठा चूसता है तो उसके ऊपरी जबड़े पे, अपर जॉ पे, मैक्सिलरी जॉ जिसको बोलते हैं, उस पर इम्पैक्ट आता है और उस पर प्रेशर लगने की वजह से वो जॉ एक्सपेंशन होता है। एक तो आगे की तरफ आता है जबड़ा और दूसरा जबड़े की चौड़ाई बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, और आगे की तरफ आने की वजह से हम जैसा देखते हैं कि मैक्सिलरी प्रोट्रूजन, आगे आए हुए दांत होते हैं बच्चों के, या पूरा का पूरा जबड़ा ही आगे आया हुआ है, तो इस तरह की बीमारियां। दूसरे अक्सर बच्चों में देखा जाता है जीभ चूसने की या जीभ को आगे रखने की एक कसरत होती है। शुरुआत में ही अगर कंट्रोल हो जाए ये, तो हम लोग मैक्सिलरी प्रोट्रूजन से या बाइमैक्स दोनों ऊपर और नीचे के दांत आगे आने से हम रोक सकते हैं, और अगर नहीं रोक सके बाय गाइडिंग या बाय उनको समझाने पर भी, तो फिर कुछ अप्लायंसेस, कुछ ऐसे इस तरह के हम अप्लायंसेस बनाते हैं, हैबिट को कंट्रोल कर सकते, हैबिट ब्रेकिंग अप्लायंसेस बोलते हैं, उनको यूज करके हम निजात पा सकते।
1: सर, अंत में चलते चलते आप हमारी सभी बहनों और श्रोताओं को क्या सुझाव या सलाह देना चाहेंगे?
0: मैडम मैं यही बोलना चाहूंगा, मातृशक्ति का कार्यक्रम है, मातृशक्ति के लिए तो मेरे सुझाव यह है कि आप परिवार का ध्यान रखने के साथ आप अपना, अपनी सेहत का, खास तौर पे दांतों की सेहत का भी ध्यान रखें, क्योंकि माताएं बहनें भूल जाती हैं घर के कार्यों में कि खुद को भी स्वस्थ रहना इतना ही इम्पोर्टेंट है जितना आप सभी का स्वास्थ्य का ध्यान रखती है। साफ सफाई रखें दांतों और मसूड़ों की, और घर के सभी लोगों को प्रेरित करने का भी कार्य करें जिससे कि वो भी दांत की सफाई करें, स्पेशली नाइट ब्रशिंग, जैसा मैं अक्सर बोलता हूँ कि रात में ब्रश करना बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, रात में ब्रश करके सोएंगे तो मेरे ख्याल से 90% तक दांतों की समस्याएं नहीं होंगी।
1: सर, आपने हमारे साथ इतनी महत्वपूर्ण और लाभप्रद जानकारियां साझा की, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: बहुत बहुत धन्यवाद मैम।
1: सर, महिला जगत कार्यक्रम जानकारियों के साथ साथ मनोरंजन का भी माध्यम है, तो अंत में चलते चलते आप अपनी पसंद का कौन सा गीत हमारी सभी बहनों और श्रोताओं को सुनवाना चाहेंगे?
0: मैं आज सुबह से गुनगुना रहा था वो गाना, मैं वही बताता हूँ, एक गाना है ओ रब्बा कोई तो बताए।
1: जी, सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

सखियों, अभी हम सुन रहे थे डॉक्टर दिव्य जैन जी की पसंद का ये गीत। इसके लिए हम उनका हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। और अब कर लेते हैं कुछ जानकारी की बातें। सखियों, जानकारी की बातों में आज हम बात कर रहे हैं राजस्थान युवा नीति 2026 की। सखियों, इसकी शुरुआत मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा द्वारा युवाओं के सर्वांगीण विकास के लिए की गई है। इस नीति का मुख्य उद्देश्य युवाओं को कौशल विकास और रोजगार के अवसरों और तकनीकी क्षमता के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाना है, ताकि वे राज्य के आर्थिक और सामाजिक विकास में सक्रिय भूमिका अदा कर सकें। सखियों, इस योजना

के तहत मार्च 2029 तक 15 लाख नौकरियां सृजित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस नीति को जमीनी स्तर पर प्रभावी रूप से लागू करने के लिए त्रिस्तरीय ढांचे का उपयोग किया जाएगा। साथ ही सखियों, रोजगार और अवसरों की सटीक जानकारी के लिए राजस्थान रोजगार पोर्टल EEMS 2.0 का निर्माण किया गया है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोजगार की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए ई जॉब फेयर की सुविधा भी शामिल है। सखियों, इस योजना का लाभ लेने के लिए और अप्लाई करने के लिए युवा अपनी SSO ID के माध्यम से राजस्थान सरकार पोर्टल पर लॉगिन कर सकते हैं। सखियों, ये नीति मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के कुशल नेतृत्व में युवाओं को राजस्थान में ही एक उज्जवल भविष्य देने की मजबूत पहल है। तो सखियों, ये तो थी जानकारी राजस्थान युवा नीति 2026 पर। और अब चलते चलते बस यही कहेंगे कि पानी बचाया जा सकता है लेकिन बनाया नहीं जा सकता। दादाजी ने नदी में पानी देखा, पिताजी ने कुएं में, हमने नल में देखा और हमारे बच्चों ने बोतल में। अब उनके बच्चे कहाँ देखेंगे? विचार अवश्य करें और पानी को व्यर्थ ना बहाएं, क्योंकि जल है तो कल है। और सखियों, अब समय हो चुका है आपसे अनुमति लेने का। तो फिर मिलेंगे नई चर्चा, जानकारी, गीत संगीत और ढेर सारा मनोरंजन लेकर। तब तक स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और अपना बहुत ख्याल रखिए। अब दीजिए कार्यक्रम समाप्त करने की अनुमति आपकी रेडियो सखी अनीता शर्मा को। नमस्कार।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम महिला जगत। हम आकाशवाणी केंद्र झालावाड़ के चंद्रभागा चैनल से बोल रहे हैं। अब से कुछ ही देर में आप हमारे जयपुर केंद्र से अनुप्रसारित हिंदी में प्रादेशिक समाचार सुनेंगी। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रदेश में सेवा पखवाड़ा का तहत लगाए जा रहे शहरी सेवा शिविरों में पहले ही दिन लगभग 10,000 मामलों का निस्तारण किया गया। राज्य सरकार ने एमएसपी पर गेहूं खरीद की अवधि बढ़ाकर 19 जून तक की। रेलवे भर्ती बोर्ड की सभी विभागीय परीक्षाएं अब से कंप्यूटर आधारित होंगी और पश्चिमी विक्षोभ के असर से प्रदेश में कई स्थानों पर तेज हवा के साथ बरसात हुई। हनुमानगढ़ में कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि।

0: अधिक से अधिक लाभ लेने की अपील की।
1: अभी जैसे सरकार ने इस कैंप में बहुत सारी छूट दी है, पट्टे बनाने में भी कृषि भूमि के पट्टे बनाने 69A के पट्टे जो पट्टे हैं उनके बनाने में भी छूट दी है, 50% से ज्यादा छूट है अभी दी है। इससे क्या होगा कि पट्टों की राशि आधी लगेगी, इसलिए इसमें कैंपों में आवेदन करके आप ज्यादा से ज्यादा पट्टे भी बनाने की कार्रवाई करें। जैसे मकान की परमिशन में भी बहुत सारी छूट दी है।
0: राज्य सरकार ने प्रदेश के किसानों को बड़ी राहत देते हुए न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP पर गेहूं खरीद की अवधि बढ़ाकर 19 जून तक कर दी है। पहले ये खरीद 10 जून तक की जानी थी। खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग के अनुसार ऐसे सभी पंजीकृत किसान जिनका गेहूं अभी तक नहीं बिक पाया है, वे बढ़ी हुई तारीख तक अपनी उपज समर्थन मूल्य पर बेच सकते हैं। विभाग ने गेहूं खरीद का लक्ष्य भी 23,50,000 से बढ़ाकर 28,50,000 मीट्रिक टन कर दिया है। इसमें अब तक 3,00,000 से अधिक किसानों से 25,90,000 मीट्रिक टन गेहूं खरीदा जा चुका है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि राष्ट्र प्रथम की भावना और समाज के प्रति संवेदनशीलता ही एक सच्चे नागरिक की सबसे बड़ी पहचान होती है। श्री शर्मा ने जयपुर में फिल्म भारत भाग्य विधाता की विशेष स्क्रीनिंग के अवसर पर ये बात कही। उन्होंने कहा कि ये फिल्म देश के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करने वाले गुमनाम नायकों की प्रेरक गाथा है। इसमें 26/11 आतंकी हमले और कोविड महामारी के दौरान चिकित्सकों, नर्सों और सुरक्षा कर्मियों के त्याग, साहस और सेवा भाव को प्रमुखता से दिखाया गया है। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने राइजिंग राजस्थान के तहत हुए MOU को जल्दी से जल्दी धरातल पर उतारने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि सरकार का उद्देश्य राजस्थान को वैश्विक पर्यटन के मानचित्र पर शीर्ष स्थान दिलाना है। उप मुख्यमंत्री ने सचिवालय में पर्यटन, कला संस्कृति और पुरातत्व विभाग की 15 प्रमुख परियोजनाओं की समीक्षा बैठक में ये बात कही। उन्होंने पुष्कर विकास परियोजना, महाराणा प्रताप सर्किट, आमेर मास्टर प्लान, झुंझुनू वॉर म्यूजियम, अल्बर्ट हॉल के विकास और शिल्पग्राम पुनर्विकास जैसी परियोजनाओं को तय समय पर पूरा करने का जोर दिया। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, YouTube चैनल राजस्थान AIR न्यूज और Facebook AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। रेलवे बोर्ड की सभी विभागीय परीक्षाएं अब से पूरी तरह ऑनलाइन होंगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेलवे भर्ती बोर्ड RRB की चयन प्रक्रिया की एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में ये निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि भर्ती प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, सटीक और तेज बनाने के लिए कंप्यूटर आधारित परीक्षा CBT मोड में कराई जाएगी। इसके साथ ही भविष्य में टैबलेट आधारित परीक्षाओं का दायरा भी बढ़ाया जाएगा। रेल मंत्री ने चयन प्रक्रिया में तकनीक के अधिकतम उपयोग पर जोर दिया है। श्री वैष्णव ने बताया कि खाली पदों की जानकारी देने के लिए रेलवे द्वारा जारी किए गए वार्षिक भर्ती कैलेंडर को भी उम्मीदवारों की अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है। कैबिनेट सचिव डॉक्टर TV सोमनाथन ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के महानिदेशक के साथ नीट की पुनः परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की है। नीट की ये परीक्षा 21 जून को आयोजित की जाएगी। समीक्षा बैठक में कैबिनेट सचिव ने कहा कि परीक्षा में बाधा डालने या इसके साथ छेड़छाड़ करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि केंद्र और राज्य सरकार के साथ साथ जिला प्रशासन परीक्षा कराने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। इससे पहले श्री सोमनाथन ने 1 जून को केंद्र सरकार के सचिवों और 4 जून को राज्यों के मुख्य सचिवों के साथ भी बैठक की थी। इन बैठकों का उद्देश्य परीक्षा में समन्वय और विश्वसनीयता बनाए रखना है। इस बीच नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने इस बार नीट परीक्षा की अवधि में बदलाव किया है। अब इस परीक्षा की अवधि 3 घंटे से बढ़ाकर 3.25 घंटे कर दी गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO को लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल रोधी और मध्यम दूरी की पोत रोधी क्षमता का प्रदर्शन करने वाले लगातार 3 सफल परीक्षणों के लिए बधाई दी है। ये बात उन्होंने कल हैदराबाद में DRDO की रक्षा अनुसंधान और विकास

प्रयोगशाला में उन्नत हथियार प्रणाली परिसर के उद्घाटन के दौरान कही। श्री सिंह ने कहा कि इन परीक्षणों ने भारत को अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल हमले रोकने में सक्षम विशिष्ट देशों के समूह में शामिल कर दिया है। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान स्वदेशी प्रक्षेपात्र प्रणालियों का असाधारण प्रदर्शन भारत की रक्षा अनुसंधान और विकास व्यवस्था की

0: साथ ओले भी गिरे। तेज हवाओं के चलते कई जगहों पर बिजली के पोल उखड़ गए और विशाल काय पेड़ टूटकर सड़कों पर गिर गए। पेड़ गिरने के कारण कई प्रमुख मार्ग पूरी तरह अवरुद्ध हो गए। हालांकि इस मौसमी बदलाव और बारिश के कारण पिछले कई दिनों से पड़ रही भीषण गर्मी और झुलसाने वाली लू से आम जन को राहत मिली है। मैना देवी, आकाशवाणी समाचार, हनुमान।
1: मौसम विभाग ने आगामी दो दिनों के लिए प्रदेश के 16 शहरों में आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया है। हालांकि राज्य के कुछ पश्चिमी हिस्सों को गर्मी से अब भी निजात नहीं मिली है, वहां उमस भरी गर्मी जनजीवन को प्रभावित कर रही है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में सेवा पखवाड़ा के तहत लगाए जा रहे शहरी सेवा शिविरों में पहले ही दिन लगभग 10,000 मामलों का निस्तारण किया गया। राज्य सरकार ने एमएसपी पर गेहूं खरीद की अवधि बढ़ाकर 19 जून तक की। रेलवे भर्ती बोर्ड की सभी विभागीय परीक्षाएं अब से कंप्यूटर आधारित होंगी। और पश्चिमी विक्षोभ के असर से प्रदेश में कई स्थानों पर तेज हवा के साथ बरसात हुई। हनुमानगढ़ में कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।

ये आकाशवाणी केंद्र झालावाड़ का चंद्रभागा चैनल है। श्रोताओं लीजिए प्रस्तुत है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा से अनुप्रसारित कार्यक्रम।

0: हक फिल्म का गाना आप सुन रहे थे। आकाश ओझा की आवाज में कौशल किशोर के बोल थे, विशाल मिश्रा का संगीत था। और इससे पहले हमने जो गाना सुनवाया था वो था हेलीकॉप्टर लीला फिल्म का, पालोमी की आवाज थी, स्वानंद किरकिरे के बोल थे, अमित त्रिवेदी का संगीत था। विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है, रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं,
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से,
2: सदा रही है सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
3: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
4: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
3: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 14 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: धन जवान

0: हक फिल्म का गाना आप सुन रहे थे आकाश ओझा की आवाज में। कौशल किशोर के बोल थे, विशाल मिश्रा का संगीत था। और इससे पहले हमने जो गाना सुनवाया था वो था हेलीकॉप्टर लीला फिल्म का, पालोमी की आवाज थी, स्वानंद किरकिरे के बोल थे, अमित त्रिवेदी का संगीत था। विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है, रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं,
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से,
2: सदा रही है सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
3: अमर गीतों की रचयिता।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: कहानी के किसी सीन के रिहर्सल चल रही थी, मैं भी टाइम पास करने के इरादे से खड़ा हो गया।
0: जाने माने चरित्र अभिनेता जीवन, कैसे हुई थी अभिनय यात्रा की शुरुआत?
1: डायरेक्टर ने आओ देखा ना ताओ मुझसे मुखातिब होकर बोले, अजी आप भी कुछ बोल दीजिए बरखुरदार। तो बस सिर्फ दिल बहलाने गरज से मैं शुरू हो ही गया। बहुत कुछ कर लिया आराम मखमल के गदेलों में, सुलाऊंगा तुम्हें या पत्थरों में और ढेलों में। सरे दरबार खिदमत में हर एक बांधे कमर होगा, किसी के हाथ में बल्लम कोई करता चमर होगा। वाह वाह वाह वाह वाह वाह की आवाजें बुलंद हो गई। डायरेक्टर साहब ने मुझे गले से लगा लिया, कहने लगे बरखुरदार अरे तुम तो बॉर्न आर्टिस्ट हो, फिल्म में एक्टिंग करो मैं तुम्हारी लाइफ बना दूंगा, फोटोग्राफी को मारो गोली।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती आपका जीवन साथी।

पेश प्रोग्राम आज के फनकार। दोस्तों, आज का ये कार्यक्रम केंद्रित है अपने जमाने के सुप्रसिद्ध संगीतकार वसंत देसाई पर।

0: बंदे हम।
1: वसंत देसाई का जन्म महाराष्ट्र के जिला सावंतवाड़ी के गांव सोनावड़े में 1912 में हुआ। उनका बचपन सिंधुदुर्ग जिले के कस्बा कुडाल में बीता, जो कि महाराष्ट्र के कोंकण का जाना माना प्रदेश है। यहाँ वो अपने मामा के पास पढ़ाई लिखाई के हेतु भेजे गए थे। महाराष्ट्र के इस कोंकण प्रदेश में दशावतारी नाटकों का चलन प्राचीन काल से ही है। इसका प्रभाव वसंत देसाई के बाल मानस पर पड़ना लाजमी था। अनेक नाटकों में वे बतौर अभिनेता और गायक भाग लेने लगे थे। 1929 में अगली पढ़ाई के लिए वे कोल्हापुर पहुंचे। वहां पर इनका परिचय हुआ मराठी और हिंदी सिनेमा के वरिष्ठ फिल्मकार चित्रपति शांताराम राजाराम वनकुदुरे, जी हाँ वी शांताराम जी से, जो प्रभात फिल्म कंपनी के सह संस्थापक थे।

वसंत देसाई प्रभात फिल्म कंपनी में काम करने लगे थे। ये बात सन 1930 के आसपास की है, जब वसंत देसाई ने फिल्म खूनी खंजर में अदाकारी भी की थी। ये एक मूक फिल्म थी दोस्तों। वसंत देसाई प्रभात फिल्म कंपनी

अयोध्या का राजा नाम से बनी थी, जैसा कि वी शांताराम जी हमेशा किया करते थे। जो भी फिल्म मराठी में बनाते उसका हिंदी संस्करण भी हुआ करता। इस दौर के दिग्गज संगीतकार केशवराव भोले और मास्टर कृष्णराव फुलंब्रीकर, इनके भी वसंत देसाई सहायक रहे थे। वी शांताराम की बतौर निर्देशक जो पहली फिल्म थी उसका नाम था पड़ोसी, और मराठी में जो शेजारी नाम से बनी थी, इसके संगीतकार थे मास्टर कृष्णराव फुलंब्रीकर। आगे बढ़ते हैं गूंज उठी शहनाई फिल्म के इस प्यारे से गाने के साथ।

वसंत देसाई 1936 के आसपास मुंबई आ गए थे। यहाँ उन्होंने आंध्रयन जिशाड़ा, जो कि एसबी वर्तक लिखित नाटक था, इसका संगीत दिया था। एक और मराठी नाटक छाया को भी उन्होंने संगीत दिया था। वसंत देसाई को बतौर संगीतकार हिंदी फिल्मों में पहला ब्रेक मिला जेबीएच वाडिया की फिल्म शोभा में, साल था 1942। उन्हें सही मायनों में ख्याति प्राप्त हुई इसी साल यानी 1942 में आई फिल्म शकुंतला से। हुआ यूं कि वी शांताराम ने अक्टूबर 1942 में अपनी एक अलग फिल्म कंपनी बनाई, राज कमल स्टूडियोज। इसके बैनर तले बनने वाली पहली फिल्म थी शकुंतला। शकुंतला का मुख्य किरदार किया था वी शांताराम की पत्नी जयश्री ने। चंद्रमोहन थे दुष्यंत और स्वयं वी शांताराम जी ने प्रियम वध की भूमिका निभाई थी। कुल 13 गाने थे इस फिल्म में और एक गाना फिल्म के संगीतकार वसंत देसाई ने भी गाया था। फिल्म काफी चली और वसंत देसाई को भी ख्याति प्राप्त हुई। वसंत देसाई का संगीत शास्त्रीय रागों की गरिमा लिए होता था और सहज मधुरता का रसीलापन लिए होता था। दोस्तों, वसंत देसाई मर्मज्ञ संगीतकार थे। ये एक दुर्भाग्य की बात है कि कमर्शियल फिल्मों में उन्हें सफलता नहीं मिली। वो व्यावहारिक दुनिया से अनभिज्ञ थे, उनकी बारीकियों को वो नहीं समझते थे, इसलिए दुनियावी बातों की तरफ उनका ध्यान कम था। संगीत की बारीकियों की ओर उनका ध्यान मगर बहुत लगा हुआ होता था। उनकी नजर पैनी थी संगीत की तरफ। हीरे को जैसे जौहरी ही पहचानता है, वरिष्ठ संगीतकार अनिल विश्वास को इस हीरे की पहचान थी। विविध भारती के संगीत सरिता में जब वे पधारे थे तो आपको भी जरूर याद होगा, वसंत देसाई की सांगीतिक बुद्धि की सराहना करते हुए उन्होंने बताया था कि आशीर्वाद फिल्म का ये जो गाना है जो लता जी ने गाया था, कैसे उन्होंने शुद्ध निषाद पर समाप्त किया था। आइए सुनते हैं इसी गाने को।

दोस्तों, वसंत देसाई ने मराठी फिल्मों का भी संगीत निर्देशन किया है। कुल 20 फिल्में उन्होंने की हैं। हर फिल्म का संगीत सुमधुर बन पड़ा है।

उनकी कुछ बहुचर्चित मराठी फिल्में हैं श्यामची आई, मोलकरण, स्वयंवर झाले सीतेचे, लक्ष्मण रेखा, तूच माझी राणी, कांचन गंगा, छोटा जवान, और इसके अलावा संगीत नाटकों को भी उन्होंने संगीत दिया है। आंधळ्यांची शाळा, छाया,

उनकी कुछ बहुचर्चित मराठी फिल्में हैं श्यामची आई, मोलकरण, स्वयंवर झाले सीतेचे, लक्ष्मण रेखा, तूच माझी राणी, कांचन गंगा, छोटा जवान, और इसके अलावा संगीत नाटकों को भी उन्होंने संगीत दिया है। आंधळ्यांची शाळा, छाया और

0: वसंत देसाई अत्युच्च कोटि के संगीतकार थे। पौराणिक और पारंपरिक फिल्मों का उनका संगीत अमर है।
1: सनन, सनन, सनन।

लहरों से सबको मुग्ध कर रहा हो और अचानक सितार का तार टूट जाए या बिजली गुल हो जाए। ऐसा ही एक दिन अकस्मात वसंत देसाई के जीवन में आया और उनकी धड़कन का साज थम गया। दिन था 22 दिसंबर सन 1975। वसंत देसाई का संगीत अमर है, जिसके ध्वनि प्रकाश में जीवन के लंबे घने अंधेरे रास्ते भी उजाले से भरे हुए साफ दिखाई देंगे।

तो ये था आज का आज के फनकार कार्यक्रम, केंद्रित था अपने जमाने के जाने माने संगीतकार वसंत देसाई पर। शोध स्वर

0: लेकिन मेहंदी हसन साहब की खास ढंग था, तो हमने वो चीज ऐसे उठा के रख दिया कि लोगों को मालूम भी नहीं पड़ा और लोगों ने कहा क्यों है।
1: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
3: गीतों भरी कहानी इस श्रृंखला में आज सुनिए अरगवान रबही की लिखी कहानी अंजलि, वाचन स्वर नेहा शर्मा का। दोपहर की तेज धूप से बचने के लिए अरविंद विकास नगर की मेन रोड की जगह गलियों से होकर अपनी दुकान पहुंचता था। लखनऊ के नए इलाकों की चौड़ी सड़कों में जून की गर्मी और मुश्किल महसूस होती थी, फिर भी इन मोहल्लों में बने छोटे बड़े पार्क और पार्क के किनारे लगे इक्का दुक्का पेड़ भी किसी राहत की तरह हैं। अरविंद इन्हीं इक्का दुक्का पेड़ों की वजह से गलियों वाले रास्ते से अपनी परचून की दुकान पर पहुंचता था। सुबह से लेकर 2 बजे तक उसके भाई दुकान पर बैठते थे और उसके बाद वो शाम के 5 बजे तक दुकान संभालता, फिर भाई आकर दुकान संभालते। 2 बजे से ठीक पहले वो तेज धूप से बचता बचाता सेक्टर 4 की अपनी दुकान पर पहुंचता था और इसी रास्ते वो शाम होने से ठीक पहले पहुंचता था। दोपहर में उसे पूरी गली खाली मिलती, कहीं कोई इंसान नजर ही नहीं आता। लेकिन जब वो शाम होने से पहले लौटता तो गली में हल्की चहल पहल दिखने लगती। कोई अपनी कार बाहर निकाल रहा होता, कोई दूध का पैकेट लेकर घर की ओर जा रहा होता, तो कोई अपने दफ्तर से वापस आ रहा होता। लोग इक्का दुक्का ही दिखते थे। रोज एक घर के बाहर 60 साल का एक आदमी अपना बड़ा सा गेट खोलकर पानी की बौछार लगा रहा होता। बौछार लगाकर फ्री होता तो कई बार यूं ही पाइप छोड़ देता और पानी अपनी रफ्तार से बहता रहता। एक रोज अरविंद के भाई दुकान पर देर से आए और उसकी छुट्टी 6 बजे हुई। वो दुकान से जब घर की तरफ बढ़ा तो उसे उस गली में पहले से कहीं ज्यादा चहल पहल दिखी। पानी बहाने वाले अंकल तो अपना काम ईमानदारी से कर रहे थे, लेकिन उसकी नजर 60 साल के अंकल की जगह उनके घर के बगल वाले घर की बालकनी में खड़ी 2 लड़कियों पर पड़ी। लंबे बालों में स्लीवलेस सफेद टॉप और काले शॉर्ट्स पहने लड़की अपने दाएं पांव को रेलिंग पर रखकर एक लड़की से बात कर रही थी। मेहंदी रंग का सूट पहने दूसरी लड़की की सिर्फ पीठ ही नजर आ रही थी और हाँ, पीठ पर ठहरे उसके काले घने बाल भी। दूर से देखने पर टॉप और शॉर्ट पहनी हुई लड़की खूबसूरत लग रही थी। अरविंद ने एक नजर उस लड़की को देखा, लेकिन उसे दोबारा देखना ठीक नहीं लगा। हालांकि आज पहली बार गली कुछ ज्यादा अच्छी जरूर लगने लगी थी।

कि उसे बगल में खड़ी दूसरी लड़की दिखाई दी। ये वही लड़की थी जिसे उसने एक और दिन देखा था। आज उसने मैली सी लाल टी शर्ट और सफेद शॉर्ट्स पहन रखे थे। उसके बाल बिखरे से थे और चेहरा सोया हुआ सा लग रहा था। अरविंद को ध्यान आया कि उसे इस तरह बहुत देर ऑब्जर्व नहीं करना चाहिए और उसने नजर रास्ते की ओर कर ली, लेकिन अगले ही पल फिर नजर उसकी बालकनी की ओर उठ गई। लेकिन इस बार उसकी नजर पकड़ी गई। दोनों लड़कियों ने उसे देख लिया और अरविंद ने झेपते हुए नजर दूसरी ओर की। लड़कियां बालकनी से गायब हो गईं। उनकी तरह तेज

कुछ दिन बाद फिर अरविंद दुकान से लेट में छूटा और इस बार उसकी नजर दूसरी लड़की पर पड़ी। नीली पेंसिल जीन्स और छोटे छोटे फूलों के प्रिंट से सजा फ्लोरल टॉप पहने लंबे बालों वाली इस लड़की के गाल सुर्ख थे, आंखें बड़ी बड़ी, माथा चौड़ा और कद उस दूसरी लड़की के मुकाबले लंबा। अरविंद की नजर उस खूबसूरत नौजवान लड़की पर ठहरी गई थी।

पन्ने पर लिखा था अंजलि की डायरी। 20 साल की अंजलि जाने कितने सालों से डायरी लिखती रही है, और डायरी के कई पन्ने पलटते हुए अंजलि एक सादे पन्ने पर पहुंची और चश्मा लगाकर गुनगुनाती हुई डायरी पर कलम चलाने लगी।

कपड़े को एडजस्ट किया और कमरे का दरवाजा खोला। देखा तो दरवाजे के सामने ही घरेलू सहायिका नंदा दीदी उसे नाश्ते के लिए बुलाने खड़ी हैं। अंजलि पलटकर अपना चश्मा उठाते हुए साफ सुथरी मेज की ओर बढ़ी और वहां रखी डायरी लेकर कुर्सी पर बैठ गई। डायरी के पहले पन्ने पर लिखा था, अंजलि की डायरी। 20 साल की अंजलि जाने कितने सालों से डायरी लिखती रही है, और डायरी के कई पन्ने पलटते हुए अंजलि एक सादे पन्ने पर पहुंची और चश्मा लगाकर गुनगुनाती हुई डायरी पर कलम चलाने लगी।

0: अचानक डायरी छोड़कर अंजलि धड़धड़ाते हुए अपने कमरे से बाहर सीधे किचन की ओर बढ़ी और किचन में नाश्ता बना रही पल्लवी से लगभग बहस करने के अंदाज में कहा, बुआ मशीन अंदर नहीं रखवाई आपने? अरे हॉल में ठीक से रखी तो है, तुम्हारे कमरे में जगह भी कम है अंजलि।
1: बहुत जगह है मेरे कमरे में,
0: यही हॉल में सिल लो जो सिलना है। मैं हॉल में सिलाई नहीं कर सकती, आप प्लीज अंदर रखवा दो। वैसे तुम्हें क्या जरूरत है, जहाँ रखी है वहीं रहने दो, पल्लवी ने झुंझलाते हुए कहा।
1: मुझे मम्मा के लिए साड़ी तैयार करनी है, आपको बताया तो था मैंने।
0: कोई जरूरत नहीं है।
1: आप अंदर रखवाती हो या नहीं?
0: नहीं। आपको क्या परेशानी है मेरी माँ से? तकरीबन 40 बसंत पार कर चुकी पल्लवी बुआ ने अंजलि की ओर हताशा से देखा और अपनी बात बदलते हुए कहा,
1: तुम पहले नाश्ता करो।
0: नहीं।
1: अच्छा ऑफिस से आकर आज रखवा दूंगी, तुम नाश्ता तो करो।
0: पक्का ना?
1: हाँ पक्का।
0: अपनी बात मान लिए जाने से खुश अंजलि नाश्ता करने बैठी और बुआ अपने कमरे में जाकर ऑफिस के लिए तैयार होने लगी। बुआ जल्दी से कपड़े बदल कर चेहरे पर हल्का सा पाउडर और थोड़ा परफ्यूम लगाकर बैग लटकाए कमरे से बाहर आई तो डाइनिंग टेबल में अंजलि नहीं बल्कि उसकी जूठी प्लेट और कप रखे मिले। बुआ ने उन्हें किचन में रखा और ऑफिस के लिए निकल गई। अंजलि ने बुआ की स्कूटी की आवाज सुनकर एक बार खिड़की से बाहर झांका और गेट से निकलती स्कूटी से नजर हटाकर मेज पर सजी महिला की फोटो देखने लगी, फिर उस फोटो को उठाकर मोहब्बत से चूमकर वापस रख दिया। भरी दोपहरी फन रिपब्लिक मॉल के किनारे चाय के ठेले के पास अंजलि की बुआ पल्लवी ने अपनी स्कूटी खड़ी की। नीम के पेड़ के पत्तों से छनकर धूप जमीन पर बिखर रही है। धूप से जरा सा हटकर छांव में बहुत से कर्मचारी खड़े थे और कुछ किसी चीज से टिके बैठे गप्पे लगा रहे थे। वहीं पल्लवी भी चाय का गिलास पकड़े पैंट शर्ट पहने एक आदमी के बगल में खड़ी हो गई। दोनों बातें करने लगे।
1: तुम उसे बता क्यों नहीं देती?
0: क्या बताऊं? यही कि उसकी माँ उसे भुला चुकी है। चाय का एक और घूंट लेकर गिलास ठेले पर रखते हुए लगभग पल्लवी की ही उम्र का प्रेम बोला।
1: प्रेम कई बार बताने की कोशिश की है लेकिन वो ये बात सुनना ही नहीं चाहती।
0: पर बताना तो पड़ेगा ना?
1: पता नहीं।
0: उसके माथे पर आती लट को कान के पीछे करता हुआ प्रेम कहता है,
1: तुम परेशान मत हो पल्लू।
0: प्रेम। ठंडी आहें भरती हुई पल्लवी प्रेम के कंधे से सिर टिकाकर कहती है, फिर उसका हाथ थामते हुए अपना धड़कता दिल संभालते हुए रुककर अगले ही पल कहती है,
1: देखो वो छोड़ो, तुम किसी अच्छी लड़की से शादी कर लो।
0: मैं तुमसे प्यार करता हूँ तो शादी भी तुमसे ही करूंगा।
1: तुम जानते हो मेरी हालत।
0: तुम मेरी बात तो कराओ अंजलि से, मैं उसे मना लूंगा।
1: मुझे डर लगता है प्रेम।
0: क्या डर लगता है? तुम अपने पापा मम्मी से बात नहीं करवा रही थी लेकिन वो तो एक ही बार में मान गए।
1: हाँ पर अंजलि की बात और है, तुम मेरी बात तो करवाओ।
0: प्रेम मैं नहीं चाहती कि वो तुम्हें कुछ कह दे।
1: अरे कुछ नहीं कहेगी यार, मैं संभाल लूंगा।
0: तभी मोबाइल पर नजर पड़ते ही पल्लवी चौंकी। ओफो लंच टाइम खत्म हो गया, चलो काम कर लें, ये सब तो होता ही रहेगा। पल्लवी ने चाय वाले को पैसे दिए और दोनों मॉल की ओर बढ़ गए। एक बार पल्लवी की नजर पीछे देखती है और वो प्रेम के साथ कदम मिलाते हुए आगे बढ़ जाती है। हालांकि पल्लवी भी जानती है कि वो प्रेम के बिना नहीं रह सकती लेकिन अंजलि की सोच कर वो ये बात कहने में सकुचाती है।

का चेहरा न जाने क्यों खिल उठता है। नाइट बल्ब की हल्की रोशनी में अंजलि के साथ उसकी माँ की तस्वीर भी साफ नजर आ रही है। पल्लवी एक ठंडी आह भरती है और उसके मुंह से निकलता है, तुझे कैसे समझाऊं गुड़िया। सुबह 7 बजते ही धूप अंजलि के बिस्तर पर उसे जगाने पहुंच गई। माथे पर पड़ती हल्की धूप की गर्माहट से अंजलि की आंख खुली तो रोज की तरह सबसे पहले अपनी माँ की तस्वीर को ही देखा। अच्छी नींद का सुकून उसकी आंखों और उसके भरे भरे गालों वाले चेहरे पर दिख रहा था। अंगड़ाई लेते हुए जब कमरे में देखा तो बगल में सिलाई मशीन रखी दिखी। चेहरे पर एक मुस्कान खिल उठी। दिन की शुरुआत जो अच्छी हो गई। आज खुश होकर मन से अंजलि जल्दी से बिस्तर छोड़ नहाकर तैयार होकर अपने आप ही हॉल में रखी डाइनिंग टेबल पर आकर पल्लवी बुआ के साथ नाश्ता करने लगी। दूध खत्म हो गया है, जब बाहर निकलना तो ले आना। बुआ नाश्ता करते हुए अंजलि से बोली, क्यों दीदी नहीं आई? चाय का बड़ा कप हाथ में लेकर अंजलि ने सवाल किया। वो आज नहीं आई, फोन किया था, उसने बताया कि बीमार है। तो आपने अकेले सिलाई मशीन अंदर रखी है? हाँ, तो क्या हुआ? क्यों, मुझे उठा देती या मैं उठ जाती तब साथ में कर देते। तुम्हें और चाय चाहिए क्या? बुआ बात टालकर और चाय लेने किचन की ओर बढ़ गई। अंजलि चाय गर्म कर रही बुआ को एकटक देखती रही। 11 बजे अंजलि ने अलमारी से पैसे लिए और दूध लेने पास की दुकान पर पहुंच गई, लेकिन वहां दूध नहीं मिलने पर अलग अलग दुकानों में दूध पूछते पूछते अंजलि आखिर अरविंद की दुकान पहुंच गई। अंजलि तो उसे नहीं पहचान पाई, लेकिन अरविंद ने उसे जरूर पहचान लिया। फिर भी ऐसे बात करता रहा जैसे उसने उसे कभी पहले देखा ही ना हो। दूध है? अंजलि ने खुद में खोए हुए ही पूछा। हाँ, कितना चाहिए? 1 लीटर। फ्रिज से दूध के पैकेट निकालकर अरविंद ने थैली में डालकर दे दिया। 100 रुपए का नोट अंजलि ने भी जेब से निकालकर उसके हाथ में थमा दिया और बाकी पैसे और दूध का पैकेट उठाकर अपने घर की ओर बढ़ने लगी। लेकिन अरविंद की नजरों से उसे कुछ तो संदेह हुआ। अरविंद भी उसे जाते हुए देख ही रहा था कि गली में मुड़ने से पहले अंजलि ने पलट कर देखा और अरविंद की नजर से नजर मिलते ही झट से गली में मुड़ गई। उसका दिल जोरों का धड़क रहा था।

अगली शाम सफेद शॉर्ट्स और काला टॉप पहने अंजलि रोज की तरह अपनी बालकनी की रेलिंग पर पैर टिकाकर खड़ी थी कि गली के मोड़ से अरविंद आता दिखाई दिया। उसके घर के पास ही एक पेड़ के नीचे रुककर अरविंद अपने मोबाइल में कुछ देखने लगा और अंजलि की नजरें भी गहनता से उसकी ओर ठहर गईं। अरे, ये तो वो दुकान वाला लड़का है, वो मन ही मन कह उठती है और बीते दिन की बात सोचकर उसके चेहरे पर एक लाली छाने लगी। वहां अरविंद ने मोबाइल पर अपना गाना बदलकर एयरफोन लगाने के बाद जैसे ही नजरें उठाई कि सामने के घर की बालकनी पर खड़ी लड़की दिखी। अरविंद का ध्यान गाने से हटकर उस ओर हो गया। दोनों की नजरें मिली, अरविंद झिझका, लेकिन अंजलि ने एक मीठी सी मुस्कान दी। अरविंद ने भी अंजलि की मुस्कान का जवाब मुस्कुराकर दिया। दोनों में कोई बात नहीं हुई। अरविंद आगे बढ़ गया और अंजलि उसे जाते हुए देखती रही। अरविंद भी बार बार मुड़कर उसकी ओर देखता रहा। अरविंद के गली पार करने के साथ ही मानो अंजलि के दिल का एक हिस्सा भी उसके साथ गली के पार ही चला गया और उसकी नजरों के बारे में सोचकर ही अंजलि की धड़कन बढ़ गई और मन में एक अनोखी हलचल होने लगी। वो बालकनी से हटकर जल्दी से अपने कमरे में पहुंची और आईने के सामने बैठकर खुद को देखने लगी। अपने बालों को, होंठों को, आंखों को, अपने आप को देखते हुए उसके होंठों पर मुस्कान आ गई और जैसे उसके चेहरे से चिपक ही गई। इससे पहले शायद कभी खुद को इतने गौर से उसने देखा ही नहीं था। अब एक सिलसिला सा बन गया। अंजलि रोज इंतजार करती और अरविंद जब आता तो हाय हेलो का एक सिलसिला शुरू हो चुका था, लेकिन बात इससे आगे नहीं बढ़ी।

अब एक सिलसिला सा बन गया। अंजलि रोज इंतजार करती और अरविंद जब आता तो हाय हेलो का एक सिलसिला शुरू हो चुका था, लेकिन बात इससे आगे नहीं बढ़ी। एक रोज अरविंद जब दुकान से वापस आने लगा तो बालकनी पर प्लास्टिक की कुर्सी तो दिखी, लेकिन अंजलि कहीं नहीं दिख रही थी। मासूम अरविंद पेड़ के पास तक पहुंचा ही था कि पेड़ के बगल के पार्क से अंजलि बाहर आई और उसके बिल्कुल सामने खड़ी हो गई। अरविंद की धड़कन तेज हो गई। अंजलि उसे ध्यान से देख रही थी। अंजलि ने ही हिम्मत करके बात की। हेलो, हाय, मेरा नाम अंजलि है, मैं अरविंद। फिर कुछ पल दोनों खामोश रहे। आखिर क्या कहें, मैं आपको देखती हूँ, अंजलि ने अचानक चुप्पी तोड़ते हुए यूं ही कहा। जी, अरविंद ने लगभग चौंकते हुए जवाब दिया। मेरा मतलब है आप मुझे देखते हैं। सॉरी, मेरा मतलब, अरविंद के जो मुंह में आया वो कहने लगा। नहीं नहीं, सॉरी की बात नहीं, मुझे अच्छा लगता है। अरविंद को सुकून आया। अंजलि उसे देखकर मुस्कुराई। दोनों कुछ और पल वहीं खड़े रहे, फिर यकायक जैसे अरविंद को होश आया। अब मैं जाता हूँ। तभी अंजलि ने हिम्मत करके अपना दायां हाथ बढ़ाया और अरविंद ने लगभग कांपते हुए हाथ

0: बुआ ने ज्यादा जोर न देना ही उचित समझा, लेकिन अंजलि ने बुआ का मुंह देखा और बोली, गड़बड़ कर दी ना बुआ। अच्छा ठीक है, आप ही कर दो, आती हूँ चाय रखकर। पल्लवी बुआ अंजलि का मेकअप करते करते उससे सवाल भी करती जा रही थी, किसी लड़के से तो मिलने नहीं जा रही हो ना?
1: नहीं।
0: देखो अगर जा भी रही हो तो ध्यान रखना।
1: नहीं जा रही।
0: शाम से पहले घर आ जाना और देर हो तो मुझे बुला लेना।
1: बुआ मैं आ जाऊंगी।
0: पल्लवी बुआ ने अंजलि को अच्छे से तैयार कर दिया और जब अंजलि चिकन का जालीदार काले बूटों वाला सूट क्रीम सफेद दुपट्टे के साथ पहने सामने आई तो उसके खुले लहराते बालों को देख बुआ कह उठी,
1: बाल तो बांध लो बेटा।
0: बुआ मुझे खुले बाल पसंद है।
1: अच्छा बाबा जैसी मर्जी, आराम से जाना।
0: आपको क्यों लग रहा है कि जैसे मैं पहली बार घर से बाहर निकल रही हूँ? पल्लवी बुआ ने इसका कोई जवाब नहीं दिया, अगर देती तो यही कहती कि पहली ही बार तो जा रही हो, क्योंकि इसके पहले तो अंजलि कभी इतना तैयार होकर कहीं गई नहीं थी। एक ओर बुआ अंजलि का ये रूप देखकर खुश थी तो दूसरी ओर अंजलि के घर से निकलने की देर थी कि बुआ को उसकी फिक्र सताने लगी। उन्हें लगा कि एक बार प्रेम से बात कर ले, तभी याद आया कि उनका भी तो प्रेम से मिलने का आज प्लान था, लेकिन ये तो ध्यान ही नहीं रहा। ध्यान आया तो उन्होंने एक मैसेज डाल दिया और मना कर दिया। घर से बाहर निकली अंजलि को अरविंद दो गली छोड़कर मिल गया। सफेद शर्ट, नीली जीन्स और स्पोर्ट शूज उसकी पर्सनैलिटी पर जंच रहे थे। दोनों ने हाथ मिलाया और एक ऑटो में बैठते ही दोनों ने एक दूसरे को देखकर मुस्कान दी। पहली बार अरविंद और अंजलि एक साथ कहीं जा रहे थे। ऑटो तो नॉर्मल स्पीड से थोड़ा स्लो ही चल रहा था, लेकिन उस पर सवार दो जवां दिल अपनी नॉर्मल स्पीड से कहीं तेज धड़क रहे थे।

थोड़ी देर बाद अंजलि और अरविंद हजरतगंज के कैफे में आमने सामने बैठे हुए थे। टेबल में एक बड़ी प्लेट में पिज्जा के कुछ पीस रखे हुए थे और एक एक पीस उनके हाथों में था। सामने ही अंजलि की फेवरेट स्ट्रॉबेरी शेक के दो गिलास भी रखे हुए हैं। शेक लो, अरविंद ने अंजलि की तरफ गिलास बढ़ाते हुए कहा। अंजलि ने हल्की मुस्कान के साथ हाथ बढ़ाकर शेक अपनी ओर रखा। कुछ बताओ, अरविंद ने बात छेड़ी। क्या बताऊं? कुछ भी, अपने बारे में, अपनी फैमिली के बारे में। मैं बीकॉम कर रही हूँ यूनिवर्सिटी से, मेरी बेस्ट फ्रेंड शिवानी है, मुझे लिखना पसंद है। और इतना कहते कहते अंजलि की नजर अरविंद की उस निगाह पर गई जो उसे ध्यान से देख रही थी। अंजलि ने अपनी शर्म छिपाते हुए आगे कहने की कोशिश की और टेबल पर रखे उसके दोनों हाथों को हल्के हाथों से छूते हुए अरविंद ने कहा, और अंजलि का दिल जोर से धड़कने लगा। और मुलायम हाथों को सहलाते हुए अरविंद ने छेड़ जारी रखी। और हर पल अंजलि के चेहरे पर बहार बढ़ रही थी। वो किसी खुशनुमा फूल की तरह खिल रही थी जिसकी खुशबू सारे माहौल को रंगीन कर रही थी। उसने मारे शर्म के हाथ पीछे करने की कोशिश की लेकिन अरविंद ने उन्हें पकड़ा हुआ था। तुम्हें बुरा तो नहीं लग रहा? अरविंद के ये पूछने पर शर्म से लाल चेहरे को अंजलि ने ना मिलाया। इसके बाद उसकी नजरें झुकी ही रहीं। वो चाहती थी कि अरविंद उसे अच्छे से देख ले लेकिन उसे अरविंद की निगाहों से बेतहाशा शर्म आ रही थी। वापसी में ऑटो में बैठते ही अरविंद ने अंजलि की ओर देखते हुए कहा, लेकिन मैं तुमसे नाराज हूँ। क्यों? अंजलि हैरानी से अरविंद की ओर देखती है। बस इसलिए कि मैंने तो तुम्हें जी भर कर देखा लेकिन तुम पीछे रह गई। अंजलि ने प्यार से एक हल्की चपत अरविंद के सीने पर लगाई। तो अरविंद कह उठा, हाँ अब कुछ अच्छा लग रहा है, तुम भी ना। कहते हुए अंजलि ने एक बार फिर शर्म से लाल होकर अरविंद के कंधे पे सिर टिका लिया। अंजलि अपने घर की गली में पैदल चलती आ रही थी। घर की बालकनी पर खड़ी पल्लवी बुआ उसका रास्ता देख रही थी। टेंशन में उनके हाथ रेलिंग पर ही चल रहे थे और दूसरे हाथ में मोबाइल के स्क्रीन पर अंजलि की तस्वीर चमक रही थी। अंजलि के जाने के बाद से ही वो कई बार फोन करने का सोचती रही लेकिन किया नहीं था। अंजलि को देखकर उनके चेहरे पर सुकून आया लेकिन अंजलि की नजर उन पर न पड़ जाए ये सोचकर वो बालकनी से हट गई। पल्लवी बुआ ने प्रेम के साथ देर रात वाली फोन कॉल पर भी इस बात का जिक्र छेड़ा। तुम क्यों इतनी टेंशन में हो? प्रेम ने पूछा। टेंशन में इसलिए हूँ क्योंकि मुझे फिक्र है। अरे बाबा, इस उम्र में अंजलि किसी लड़के से नहीं मिलेगी तो कब मिलेगी? अपने मोहल्ले में पैदल चलते हुए वो फोन पर पल्लवी को समझा रहा था। तुम नहीं समझोगे, पल्लवी हताश होकर कहती हैं। अच्छा ठीक है, लेकिन अभी तो तुम्हें ये भी नहीं पता कि वो किसी लड़के से ही मिलने गई थी। मैं खुद औरत हूँ तो ये अच्छी तरह से जानती हूँ। वो जिस तरह से बनठन कर गई थी और जैसा उसका चेहरा खिला है, वो किसी लड़के से ही मिलने गई थी। अच्छा ठीक है, पहली बात तो अपने आप को औरत मत कहा करो, नहीं तो खूबसूरत हो तुम। वेरी फनी, पल्लवी ने झूठे गुस्से से कहा। अरे सच में? और दूसरी बात, तुम अंजलि को

जुलाई की उमस भरी सुबह मौसम में आने वाले बदलाव का संकेत देने लगी थी। रोशनदान से आती धूप दीवारों पर रंग बिखेर रही थी। कमर तक हल्की चादर ओढ़े अंजलि अपने बिस्तर पर थी और उसके पांव चादर से बाहर। उसकी आंखें एक सुकून भरा ख्वाब देखकर खुश हो रही थी। मेज पर माँ की तस्वीर मुस्कुरा रही है। माँ की तस्वीर के बगल में रखी अंजलि की डायरी के खुले पन्ने फड़फड़ा रहे थे, जिसमें से एक में लिखा था, किसी को भी नहीं। ये खत मैं किसी को भी नहीं लिख रही, लेकिन लिख रही हूँ। आज अरविंद ने मुझसे पूछा कि मम्मा पापा साथ रहते हैं क्या। मैं क्या कहती, मैं बहुत छोटी थी लेकिन मुझे याद है कि सुबह अच्छे भले गए मेरे पापा वापस नहीं आए, उनका शरीर आया। दादी का रो रो कर बुरा हाल था। बुआ तो कुछ बोल ही नहीं रही थी। दादू मुझे संभाल रहे थे और मम्मा पापा से लिपट कर रोए जा रही थी। फिर पापा का वो शरीर भी धुआं होकर भगवान के पास चला गया। धीरे धीरे सब नॉर्मल होने लगा। पापा नहीं थे पर दादू दादी बुआ थे और मम्मा तो थी ही। दादू दादी गांव लौट गए, बुआ मेरे साथ रहने लगी। फिर एक रोज घर में बड़ा झगड़ा हुआ। मम्मा किसी और से शादी करने की बात कर रही थी और फिर उनकी शादी हो गई। मम्मा कुछ बार आई लेकिन फिर उनका आना बंद हो गया। फोन भी अब नहीं करती। वो भी क्यों आती, जब आती थी तो बुआ झगड़ा करने लगती, फिर वो नहीं आती थी। लेकिन मुझे उनकी याद बहुत आती थी, अभी भी आती है। मम्मा शादी के लिए मुझे छोड़कर चली गई और बुआ ने मेरी वजह से शादी नहीं की। आज जब अरविंद ने पूछा तो सोचा कहूँ कि बुआ ही मेरी माँ है, पर वो मेरी माँ नहीं है, मेरी माँ मेरी मम्मा है। अंजलि। आसमान घने बादलों से घिरा है और फिजा में उमस का साया है। हल्की बूंदाबांदी से सड़कें गीली हैं और सड़क के किनारे मिट्टी की रहगुजर से भीनी खुशबू आ रही है। हजरतगंज के हलवासिया कंपाउंड के पास एक कैफे में हलचल दिख रही है। युवा लड़के लड़कियां अपने अपने ग्रुप बनाकर मेजों के पास लगी कुर्सियों पर बैठे हैं। इन्हीं में से एक टेबल पर अंजलि अरविंद के साथ बैठी है और साथ में एक और लड़की बैठी है। अंजलि ने गाढ़े नीले रंग का स्लीवलेस टॉप पहना था, सादा सा मेकअप किया हुआ है, बाल खुले और गले में एक चांदी की चेन थी। वो अच्छी लग रही थी लेकिन अरविंद की नजर शायद कहीं और ही थी। वो अंजलि के सामने बैठा था लेकिन उसका ध्यान उसके बगल में बैठी लड़की की ओर था। उसके काले घने बाल उसकी सुराहीदार गर्दन से होकर उसकी काली कुर्ती पर ठहर गए थे। उसकी बड़ी बड़ी आंखों का काजल अरविंद को आकर्षित कर रहा था। उसका चौड़ा माथा और अंजलि से थोड़ा लंबा कद भी। मम्मा शादी के लिए मुझे छोड़कर चली गई और बुआ ने मेरी वजह से शादी नहीं की। आज जब अरविंद ने पूछा तो सोचा कहूँ कि बुआ ही मेरी माँ है, पर वो मेरी माँ नहीं है,

मेरी मम्मा हैं। अंजलि, आसमान घने बादलों से घिरा है और फिजा में उमस का साया है। हल्की बूंदाबांदी से सड़कें गीली हैं और सड़क के किनारे मिट्टी की रहगुजर से भीनी खुशबू आ रही है। हजरतगंज के हलवासिया कंपाउंड के पास एक कैफे में हलचल दिख रही है। युवा लड़के लड़कियां अपने अपने ग्रुप बनाकर मेजों के पास लगी कुर्सियों पर बैठे हैं। इन्हीं में से एक टेबल पर अंजलि अरविंद के साथ बैठी है और साथ में एक और लड़की बैठी है। अंजलि ने गाढ़े नीले रंग का स्लीवलेस टॉप पहना था, सादा सा मेकअप किया हुआ है, बाल खुले और गले में एक चांदी की चेन थी। वो अच्छी लग रही थी, लेकिन अरविंद की नजर शायद कहीं और ही थी। वो अंजलि के सामने बैठा था, लेकिन उसका ध्यान उसके बगल में बैठी लड़की की ओर था। उसके काले घने बाल उसकी सुराहीदार गर्दन से होकर उसकी काली कुर्ती पर ठहर गए थे। उसकी बड़ी बड़ी आंखों का काजल अरविंद को आकर्षित कर रहा था। उसका चौड़ा माथा और अंजलि से थोड़ा लंबा कद भी अरविंद जाए, लेकिन शिवानी ने आसमान की ओर देखा और फिर अरविंद की ओर देखकर जैसे अपने आप से ही कहा, इससे पहले कि तेज बारिश हो घर ही चलना चाहिए।

अंजलि ने ऑनलाइन एक ऑटो बुक किया और तीनों उसमें बैठकर घर की ओर निकल गए। अरविंद को उसके घर के पास गली में उतारा और शिवानी भी अंजलि के साथ उसके घर आ गई। दोनों कमरे में जाकर बैठी कि अंजलि उसे अरविंद के बारे में बताने लगी। शिवानी अंजलि की भावना को समझ भी रही थी, लेकिन अरविंद को लेकर उसके मन में शक आ चुका था। बाहर तेज बारिश होने लगी। कुछ देर में बुआ कमरे में पकौड़ियाँ और चाय देकर अपने काम में लग गई। ये मशीन यहाँ क्यों रखी है? शिवानी ने बात बदलते हुए पूछा। अरे ऐसे ही रखी है। ऐसे क्यों? पर इतनी जगह है घर में, यहाँ क्यों रखना? तू छोड़ ना उसे। ये बता, अरविंद कैसा लगा? मुझे तो ठीक ठीक ही लगा, शिवानी इस बात को खत्म सा करती हुई बोली। बस ठीक? हाँ भाई ठीक बस। अरे यार, तेरा आशिक है, तुझे पसंद है ना, इतना काफी नहीं है क्या? हाँ ये तो है, तू पहली बार मिली है ना, इसलिए ऐसा कह रही है। एक दो बार मिलेगी तो समझ आएगा। दोनों चाय का कप लेकर बालकनी में खड़े होकर बारिश देख

साफ नजर आ रहा था कि वो पहले की तरह खुश नहीं है, परेशान है, और ये सोचकर वो भी परेशान हो गई। अरविंद ने दूर से अंजलि को देखा और फिर पेड़ के पास रुक गया। अंजलि उससे कुछ पूछना चाहती थी, लेकिन उसे समझ नहीं आया कि क्या पूछना है और कैसे। फिर उसने पूछा, कैसे हो? ठीक हूँ। परेशान हो क्या? हाँ, थोड़ा परेशान हूँ। बताओ मुझे, मैं दूर करूँगी तुम्हारी परेशानी, अंजलि ने आशा भरे शब्दों में कहा। नहीं, अपने आप दूर हो जाएगी। अरे हाँ, कोई बड़ी बात नहीं है, बस कुछ समय में ठीक हो जाएगा सब। इसके बाद अंजलि बहुत कुछ कहना चाहते हुए भी कुछ ना कह सकी। अरविंद जाने लगा तो एक बार अंजलि का जी चाहा कि उसे रोक ले, लेकिन इसका भी क्या फायदा होता, यही सोचकर खुद को ही रोक लिया। अरविंद चला गया, अंजलि उसे दूर तक जाते हुए देखती रही। दोनों के बीच कुछ बदल चुका था। फोन पर अरविंद बात नहीं कर पाने का कोई ना कोई बहाना बताता। अंजलि को भी एहसास होने लगा था कि या तो अरविंद को कोई बड़ी परेशानी है या फिर वो उससे दूर जा रहा है। यूनिवर्सिटी की छुट्टियां खत्म हो गई थी। अंजलि दिन में यूनिवर्सिटी जाती, लेकिन उसका सारा ध्यान अरविंद की ओर लगा रहता। यूनिवर्सिटी से आकर वो बालकनी पर ही खड़ी रहती। एक हफ्ते से ज्यादा समय बीत गया था, ना तो अरविंद ही उसे रास्ते पर नजर आया और ना ही उसकी आवाज ही फोन पर सुन सकी थी। लेकिन व्हाट्सएप पर वो छोटे छोटे रिप्लाई किया करता था। एक दो बार अंजलि ने अरविंद के भाई की दुकान पर जाकर उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन वहां उसने बिजी होने की बात कह दी। अंजलि को अरविंद का ये व्यवहार समझ ही नहीं आ रहा था। कहां तो वो प्यार भरे सपने सजा रही थी और कहां अरविंद उसकी खुली आंखों से ही दूर होता नजर आ रहा था।

0: उस रोज मोबाइल की रिंग हुई कि अंजलि ने अरविंद का कॉल समझकर लपक कर फोन पकड़ा, लेकिन फोन स्क्रीन पर अरविंद के जगह शिवानी का नाम देखकर उसने बेरुखी से फोन उठाया। हेलो, दूसरी तरफ से आवाज आई। हाँ हेलो, उधर से अंजलि ने रुखा सा जवाब दिया। क्या हुआ तुझे? मुझे क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ। फिर दो दिन से यूनिवर्सिटी क्यों नहीं आई? शिवानी ने धमकाया। नहीं आई बस। अच्छा सुन, मुझे कुछ बताना था तुझे।
1: क्या?
0: मिलकर बताती हूँ। अरे बताना। नहीं आशा।

उस रोज मोबाइल की रिंग हुई कि अंजलि ने अरविंद का कॉल समझकर लपक कर फोन पकड़ा, लेकिन फोन स्क्रीन पर अरविंद के जगह शिवानी का नाम देखकर उसने बेरुखी से फोन उठाया। हेलो, दूसरी तरफ से आवाज आई। हाँ हेलो, उधर से अंजलि ने रुखा सा जवाब दिया। क्या हुआ तुझे? मुझे क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ। फिर दो दिन से यूनिवर्सिटी क्यों नहीं आई? शिवानी ने धमकाया। नहीं आई बस। अच्छा सुन, मुझे कुछ बताना था तुझे। क्या? मिलकर बताती हूँ। अरे बताना। नहीं, आज शाम को तेरे घर आती हूँ, शिवानी ने गंभीर होते हुए कहा। पर क्या बात है, कुछ हिंट तो दे। अंजलि झुंझला उठी। धार बारिश शुरू हो गई, लेकिन वो गेट खोलकर दौड़ती हुई दूसरे पार पहुंच गई। अरविंद पेड़ के नीचे था, लेकिन भीग रहा था। इससे पहले कि अंजलि कुछ कहे, अरविंद बोल पड़ा, तुम मेरा इंतजार मत किया करो। अरे तुम फोन भी? लेकिन अंजलि कुछ और कहती उसके पहले ही अरविंद उसकी बात बीच में टोकते हुए बोला, मैं तुमसे प्यार नहीं करता। ये क्या कह रहे हो और क्यों? जोर से बादल गरजा और बारिश की बूंदें मोटी हो गईं, क्योंकि यही सच है। अंजलि अरविंद को आस भरी नजरों से देखने लगी। तभी अरविंद ने कहा, मैं शिवानी से प्यार करता हूँ। उसके इस वाक्य ने अंजलि की आस को पूरी तरह तोड़ दिया। इसके बाद अरविंद ने क्या कहा उसने कुछ भी नहीं सुना। उसने कठोर नजर से अरविंद की ओर देखा और फिर अपने दरवाजे के सामने आकर खड़ी हो गई। अरविंद जाने लगा, लेकिन अंजलि ने उसे एक बार भी नहीं देखा। वो अपने दरवाजे के सामने जैसे बेसुध खड़ी हुई थी। कुछ देर में वो घर के अंदर चली गई। शाम होते होते बारिश हल्की हो गई। पल्लवी बुआ अपनी स्कूटी गेट के अंदर ही कर रही थी कि शिवानी छाता लिए ऑटो से उतरती दिखी। दोनों साथ ही ऊपर जाने लगे। अचानक फिर से तेज हवा के साथ मूसलाधार बारिश होने लगी। पानी की बौछारें बालकनी तक आने लगी। अंजलि के कमरे का दरवाजा खुला हुआ था। मेज पर रखी डायरी के पन्ने हवा से उड़ते उड़ते एक पन्ने पर आकर रुक जाते हैं, जिस पर लिखा है, बुआ मुझे मालूम है मम्मा अब नहीं आएंगी। तुम्हें भले लगता हो कि मैं उनका इंतजार कर रही हूँ, लेकिन नहीं, मुझे उनका इंतजार नहीं है। हाँ मैं उन्हें प्यार करती हूँ और तुम्हें भी, लेकिन तुम्हें ज्यादा प्यार नहीं करती। इतना जरूर करती हूँ कि जो साड़ी तैयार कर रही थी वो मम्मा के लिए नहीं तुम्हारे लिए है। अलमारी में रखी है साड़ी, तुम्हें दी नहीं क्योंकि समझ नहीं आया कि कैसे दूं। बुआ तुम प्यारी लगोगी उस साड़ी में, और वो जिन्हें तुम चाहती हो वो भी तुम्हें साड़ी में देखकर खुश होंगे। मैंने एक रोज तुम्हें उनके साथ देखा था और मुझे यकीन हो गया था कि तुम प्यार में हो। कितना अच्छा है ना? पता है मेरी मम्मा मुझे बहुत प्यार करती हैं। इस बात का कोई सबूत मेरे पास नहीं है, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि यही सच है। तुम भी मेरी माँ के लिए दिल में कड़वाहट मत रखो। मुझे दुख होता है जब तुम उनको कुछ कहती हो।

गीतों भरी कहानी इस श्रृंखला में आप सुन रहे थे अरगवान रब्बही की लिखी कहानी अंजलि, वाचन स्वर नेहा शर्मा का, संपादन सहयोग काजल भदरगे, कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। अगले सप्ताह किसी नई कहानी के साथ होंगे हाजिर, तब तक दीजिए इजाजत, नमस्कार।

फूलों का मैं आशिक, मैं जो चाहे यार करूं, चाहे फूलों के साए से खेलूं, चाहे कली से प्यार करूं।

सबको ये बता दो, कह दो हर नजर से हा, सबको ये बता दो, कह दो हर नजर से हा, कोई भी मेरे सिवा गुजरे ना इधर से हा।

गाइड फिल्म का गीत अभी आपने सुना, शैलेंद्र सचिन देव बर्मन, शकील बदायूनी का लिखा आदमी फिल्म का नगमा, नौशाद मोहम्मद

आशा फिल्म का गीत आपने सुना। आनंद बख्शी के बोल थे, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का था। और अब तराना फिल्म का गाना, शैलेंद्र सिंह के बोल, शैलेंद्र सिंह की आवाज, रविंद्र रावल के बोल, संगीत राम लक्ष्मण का।

0: अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे दोस्त।
1: इसी के साथ अब खत्म होता है आज का ये कार्यक्रम। थोड़ी देर में आप सुनेंगे हमारा अगला कार्यक्रम मैटिनी शो।

0: अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे दोस्त हैं जो बदकिस्मती से आज इस दुनिया में नहीं हैं
1: जी,
0: तो कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। मैंने जब सन 59 में अपना फिल्मी कैरियर शुरू किया तो एक उलझन थी कि कंपनी का नाम क्या रखें। इतवार का दिन था, बहुत से अखबार आए, तो ऐसे सामने आया धर्मयुग, तो हमने कहा धर्म को जरा अलहदा कर देते हैं, यहाँ फिल्म रख दीजिए, तो फिल्म युग से ही शुरू करते हैं।
1: क्या बात है, क्या तो, मैं हमेशा सोचता था कि आपकी कंपनी का नाम फिल्म युग
0: तो
1: क्यों है?
0: वहाँ इंस्टेंटली सब ने पसंद किया
1: जी,
0: तो ये उसकी मेहरबानी है कि आज तक फिल्म युग कायम है।

ये सुनिए मैटिनी शो, इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम कुछ बहुत ही अनमोल यादें आपके लिए लेकर आए हैं। सबसे पहले तो जे ओम प्रकाश के एक लंबे इंटरव्यू का ये छोटा सा हिस्सा सुनिए, जिसमें वो एक दिलचस्प किस्सा सुना रहे हैं।

0: जब ये खबर छपी कि मैं फिल्म बना रहा हूँ और ये कंपनी का नाम है, तो मुझे मेरे दोस्त हजरत कतील शिफाई ने पाकिस्तान से खत लिखा,
1: वाह,
0: मुबारक का खत लिखा, और साथ में एक नज्म भेजी कि मैं ये नज्म भेज रहा हूँ, ये गजल भेज रहा हूँ, अगर तुम्हारी फिल्म में कोई सिचुएशन हो
1: जी,
0: तो मेरी तरफ से एक तोहफे के तौर पर इस्तेमाल कर लेना।
1: क्या बात,
0: बहुत अच्छा लगा मुझे। उसका शुरू का जो शेर था और फिर मक्ता मैं आपको बता देता हूँ।
1: जी जी।
0: कतील साहब कहते हैं कि अंगड़ाई पर अंगड़ाई लेती है रात जुदाई की।
1: क्या बात है, क्या बात है।
0: अंगड़ाई पर अंगड़ाई लेती है रात जुदाई की, तुम क्या जानो तुम क्या समझो बात मेरी तन्हाई की।
1: क्या बात है, वाह।
0: कहता था कि उड़ते उड़ते आस का पंछी,
1: वाह,
0: दूर उफक में डूब गया, रोते रोते बैठ गई आवाज किसी सौदाई की।
1: क्या बात है साहब, क्या बात।
0: तो मैंने कतील साहब को जवाब दिया, मैंने कहा बहुत बहुत शुक्रिया, गजल का तो मुझे पता नहीं क्योंकि कहानी अभी बन रही है
1: जी,
0: लेकिन कहानी का जो मकसद है
1: जी जी,
0: वो आपके इस शेर से मैंने ले लिया है, वो पिक्चर का टाइटल होगा आस का पंछी।
1: क्या बात है, क्या।

0: क्यों, जैसे मैंने कहा कि उजाले उनकी यादों के, यादों के बारे में एडजेक्टिव्स बहुत से सुने थे, इसी तरह आस का पंछी मैंने पहली बार सुना।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: और चूंकि इस टाइटल से मेरे मेन कैरेक्टर को भी बहुत कुछ मिलता है, कहा जाता है इससे, और इसी से मेरी जिंदगी की जो रफ्तार है या जिंदगी का जो सफर है वो भी एक आस का पंछी ही समझिए तो ठीक रहेगा।
1: क्या बात।
0: अब इन्हीं जज्बात को अपने शंकर जयकिशन ने मेरी उसी पहली ही फिल्म में, पहले ही गाने की जब रिकॉर्डिंग हुई थी तो हजरत जयपुरी ने कैसे तर्जमानी की, सुनिए।
1: वाह क्या बात है, ये सुबीर सेन की आवाज है
0: सुबीर सेन की।
1: जो हेमंत कुमार से काफी कुछ मिलती जुलती है।

भाई आज का पंछी फिल्म के एक गाने की धुन आपने सुनी और जाहिर है कि जब ये धुन बज रही होगी तो गाने के बोल आपके जहन में बाकायदा गूंज रहे होंगे। जी ओम प्रकाश की फिल्मों की खासियत ये थी कि उनकी फिल्मों के टाइटल अंग्रेजी के ए शब्द से शुरू होते थे, जैसे आज का पंछी, आपकी कसम वगैरह।

0: पुराना और रेयर इंटरव्यू लेकर आया हूँ। 15 मिनट का ये इंटरव्यू किसी जमाने में रिकॉर्ड किया गया था। गुलजार साहब से शबी अब्बास बात कर रहे हैं, मैटिनी शो की ये पेशकश।
1: ये आकाशवाणी का पंचरंगी कार्यक्रम है विविध भारती, इनसे मिलिए। आज के इस प्रोग्राम में हम आपको मिलवाते हैं फिल्म जगत के सुप्रसिद्ध लेखक और निर्देशक गुलजार से।
2: गुलजार भाई नमस्कार।
3: नमस्कार।
2: देखिए गुलजार भाई, बड़ी कृपा की आपने जो आप आज आए, इस वास्ते कि हमें आपसे बहुत कुछ पूछना है। हाँ तो पूछूं?
3: छोटे जी मैं जानता हूँ कि इसीलिए आया हूँ यहाँ के।
2: मैं कुछ पूछूंगा। हाँ, हाँ। अच्छा देखिए साहब, तो गुलजार भाई आपको तो पता है कि इस फिल्मी दुनिया में जहाँ से आप संबद्ध हैं, तो वहाँ पे कोई म्यूजिक डायरेक्टर बनने आया था वो एक्टर बन गया, कोई डांसर डांस डायरेक्टर बनने आया था तो म्यूजिक डायरेक्टर और गीतकार बन गया, ऐसे बहुत सारी बातें हुई हैं। तो आप बताइए कि आप इस फिल्म जगत में क्या बन।

0: लगाते गुजरते थे।
1: अच्छा अच्छा।
0: तो उस हालत में कुछ दोस्त हमें बिमलदा के पास ले गए। अच्छा। बिमलदा से आप शायद नाम सुना के होंगे।
1: बिमल राय
0: जी हाँ। अच्छा। उन्हें हम बिमलदा कह के बुलाते थे और उनसे मिले। वहां पे एक गाना लिखा उनकी एक फिल्म में।
1: कौन सा गाना?
0: बंदनी में मुरगो रंग ले।
1: वाह वाह, बड़ा सुंदर गाना था।
0: अब छोड़िए, क्या कहूँ, ये बात भी बहुत ही दफा कह चुका हूँ अपने परिचय में कि इसी गाने से परिचय

0: तो मैं समझता था सिर्फ आप देहात की जबान बोलते हैं, आप अंग्रेजी भी अच्छे बोल लेते हैं बीच में,
1: अरे आप ही लोगों से
0: तो
1: समझा पड़ा
0: आपस
1: साथ
0: में
1: साथ बैठ के। हाँ
0: दोनों का झगड़ा तो होता है दोनों शख्सियतों का
1: होता है ना।
0: जी हाँ।
1: अच्छा
0: और अक्सर ये हुआ है कि जो लेखक है ना मुझमें
1: जी
0: वो पकड़ लेता है, वो पकड़ लेता है
1: निर्देशक
0: इसलिए
1: को।
0: जी हाँ,
1: अच्छा
0: वो इसलिए कि ख्याल फिल्म से ज्यादा जरूरी है, जो
1: हाँ
0: बात आप कह रहे हैं
1: हाँ
0: जो ख्याल कह रहे हैं वो बहुत जरूरी है। अब आप शॉट चाहे किसी तरह से भी ले लीजिए, कोई भी चालाकी कीजिए,
1: जी
0: कैमरा कहीं भी रख के
1: जी
0: आप बहला तो लेंगे देखने वालों को,
1: जी
0: लेकिन वो बात बहुत जरूरी है और वहां पे आके पकड़ लेता है वो लेखक,
1: अच्छा
0: और उसका बड़ा फायदा है कि जो बात कहनी है उसमें एक मकसद और मतलब होना बहुत जरूरी है।
1: अच्छा तो गुलजार भाई, अब साथ ही साथ ये भी बता दीजिए कि फिल्मों में आने के बाद जब आप लेखक और निर्देशक बन गए तो फिर आपको ये दुनिया मतलब अब कैसी लगती है? जो पहले आपने सोच रखी थी ऐसी है या कुछ अंतर है?
0: वैसे दुनिया बड़ी दिलचस्प है, बहुत अच्छी है
1: अच्छा
0: और रंगा रंग है
1: हाँ
0: और अंग्रेजी में
1: अच्छा
0: फैसिनेटिंग है,
1: हाँ भाई
0: बहुत
1: अच्छा ठीक
0: फैसिनेटिंग है।
1: अच्छा
0: और इसलिए कि एक चीज कहने के लिए कविता तो मैंने कागज और कलम ली और ख्याल को उस पे कलम बंद कर लिया,
1: जी
0: लेकिन फिल्म के लिए जो ख्याल मैं कहना चाहता हूँ और फिल्म में सेलुलाइट पर उसे डालना चाहता हूँ, उसके
1: जी
0: लिए मैं अकेला नहीं हूँ
1: अच्छा
0: और उसके लिए मुझे एक पूरी टीम बनानी पड़ती है।
1: हाँ
0: जाहिर है उसमें कैमरामैन भी है, एक्टर भी है, म्यूजिक डायरेक्टर भी है और दूसरे
1: उससे हाँ
0: कर्मचारी
1: जितने
0: जिस तरह के
1: कर्मचारी
0: वहाँ
1: हैं
0: टेक्नीशियंस हैं
1: हाँ
0: जितने,
1: सभी उसमें शामिल हैं।
0: और वो सारे जब तक आकर एक सुर पे न मिले और एक सम पे धा ना पड़े तो वो बात
1: हाँ तब
0: बनती
1: तक
0: नहीं,
1: बात नहीं बनेगी।
0: तो वो एक धा मारने के लिए वो सात आदमियों को जुड़ना पड़ता है और सातों की उंगली वहीं पे आगे पड़नी चाहिए तब बात बनती
1: सही
0: है।
1: बात है सही बात
0: तो
1: है
0: इसलिए वो बहुत फैसिनेटिंग है
1: सही बात है
0: क्योंकि एक काम करने के लिए फिर मुझे वो दूसरे का मीडियम समझना पड़ता है,
1: हाँ
0: उसमें मुश्किलात समझनी पड़ती हैं, म्यूजिक डायरेक्टर की क्या है, कैमरामैन की क्या है, आर्ट डायरेक्टर की क्या है, तो ये तमाम जब दूसरे मीडियम मिल जाते
1: हाँ
0: हैं तो यूं महसूस होता है कि ये बहुत से फाइन आर्ट्स सारे के सारे जो हैं
1: वो
0: वो
1: इसी
0: फिल्म
1: से
0: में
1: जुड़े हाँ
0: एक में
1: एक साथ
0: जुड़े
1: जुड़े
0: हुए
1: हुए हैं
0: हैं
1: एक साथ जुड़े
0: जी
1: हुए
0: हाँ।
1: हैं। अच्छा गुलजार भाई, एक चीज आपसे ये भी पूछनी है कि जब से बहुत ज्यादा मारधाड़ खून खराबा और अश्लीलता यानी सेक्स पर पाबंदी लगाई गई है तब से ये बात जो है वो फिल्म देखने और बनाने वालों में चर्चा का विषय बन गई है
0: जी हाँ,
1: ना।
0: बहुत चर्चा
1: तो
0: सर इसकी।
1: आपका इसके बारे में क्या विचार है?
0: इसके विचार दो तरह से हैं।
1: हाँ पहली तरह कौन
0: पहली
1: सी
0: तरह
1: है?
0: ये है कि हमारी कुछ नौकरी जो है ज्यादा महफूज हो गई है, खासतौर पे जिस तरह की फिल्में मैं बनाता रहा हूँ,
1: अच्छा
0: तो या जाहिर है कि अगर वो सेक्स और वायलेंस के ऊपर पाबंदी पड़ेगी तो कुछ नौकरी मुझे और मिल जाएगी क्योंकि
1: अच्छा
0: ज्यादा
1: हाँ
0: साफ सुथरी फिल्में बनानी
1: ठीक
0: पड़ेंगी।
1: ठीक ठीक
0: और दूसरी बात ये है कि अगर मुझसे ये पूछा जाए वही लेखक का ख्याल
1: जी
0: कि भाई ये है क्या ये जो वायलेंस है,
1: जी
0: तो सच पूछिए वेस्ट की फिल्मों का बहुत असर है हम पे
1: अच्छा अच्छा
0: और वो प्रोपगेट करते रहे हम,
1: अच्छा
0: और वो दिखा दिखा के ये वायलेंस से एक झूठा जोश पैदा करके वो
1: जी
0: ऑडियंस को कुछ लम्हों के लिए कुछ घंटों के लिए उन्हें बस वो मुक्त कर दो, उसमें मदहोश कर दो और निकल
1: अच्छा
0: जाओ,
1: ये चीज़ है
0: लेकिन उसके असर जो हैं वो बहुत
1: जी
0: बुरे हैं।
1: अच्छा वो दूसरी बात हुई।
0: और जो चर्चा है वो यही है कि साहब उस पर पाबंदी लग रही है, और वो पाबंदी लगने से जितनी सफाई हो रही है अगर ये
1: जी
0: हो गई इसी तरह से
1: जी
0: तो मेरा ख्याल है कहीं ये सोचना पड़ेगा कि
1: जी
0: जिस जो जिंदगी हम जीते हैं
1: जी
0: क्या उसमें लिखा जा सकता है, क्या उसके बारे में फिल्में भी बनाई जा सकती हैं कि
1: वाह
0: नहीं,
1: वाह वाह वाह
0: जो हर फन का बहुत बड़ा हिस्सा है,
1: वाह
0: क्योंकि जब तक कोई फन जिंदगी में से निकल के नहीं आएगा
1: जी
0: वो बनावटी रहेगा,
1: हाँ ठीक
0: और
1: ठीक
0: ये इस तरह की फिल्में निहायत बनावटी लगती हैं। जिस तरह के डेन्स, पता नहीं मुझे तो तजर्बा नहीं, शायद किसी को हो,
1: जी
0: जो डेन्स और वो स्मगलर्स के डेन्स लगते हैं
1: जी
0: और
1: हाँ
0: जो देखते हैं फिल्मों में,
1: जी
0: मैंने अभी तक हिंदुस्तान में तो कहीं नहीं देखे,
1: अच्छा
0: शायद हों कहीं, मेरी नजर से नहीं
1: अच्छा
0: गुजरे।
1: अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा तो आपके विचार से सेंसर की ये पाबंदी फिल्मों के हक में कैसी रहेगी?
0: जी फिल्मों के हक में भी अच्छी और मेरे हक में भी अच्छी है, आज से आज की मेहनत के बाद मेरी
1: हाँ
0: नौकरी अच्छी पक्की हो
1: हाँ
0: जाएगी।
1: हाँ अच्छा गुलजार भाई, आपने तो विदेशों में भी कई फिल्मी मेले देखे हैं। अभी पिछले दिनों आप ताशकंद भी गए थे,
0: जी
1: तो वहाँ यानी दूसरे मुल्कों में भारतीय फिल्मों को कैसा समझा जाता है? यानी हमारी फिल्मों के बारे में वहाँ के लोगों के क्या विचार होते हैं?
0: खास तौर पे ताशकंद में
1: जी
0: हिंदुस्तानी फिल्मों को बहुत अच्छी तरह स्वीकार किया गया। अच्छा। बहुत अच्छी तरह अपनाया गया।
1: अच्छा।

0: और उसमें एक ये भी वजह है कि हमारे जो स्टार्स हैं यहाँ के,
1: हाँ,
0: वो वहाँ भी बहुत पॉपुलर हैं।
1: अच्छा,
0: जैसे एक तो राज कपूर साहब
1: जी,
0: और राजीव तो रूस में मतलब उसी तरह से घेर लिए जाते हैं आवाम से जिस तरह से यहाँ
1: यहाँ पे। वाह।
0: और जो नए अदाकार वहाँ गए हमारे साथ, उसमें चिंटू की भी वही हालत हुई जो राज कपूर साहब की थी।
1: वाह वाह।
0: तो एक वो पॉपुलैरिटी भी एक वजह है जिसकी वजह से हमारी फिल्में बहुत अच्छी तरह अपनाई गई और वहाँ दिखाई गई, जगह जगह गए हम
1: जी,
0: और कुछ फिल्मों के तो बहुत से शो हुए।
1: अच्छा।
0: और मुझे सही मालूम नहीं कि आखिर में क्या हुआ फेस्टिवल के बाद, लेकिन मेरा ख्याल है कि हम उसमें से काफी सारी फिल्में वहाँ बेच सकें।
1: अच्छा।
0: या उनके सौदे किए जा रहे थे या बातचीत चल रही थी।
1: अच्छा।
0: और अगर ये इसी तरह बढ़ता रहे तो वो भी कारामद है।
1: बिल्कुल कारामद है। और साहब, हमारी फिल्मों की तो मांग विदेशों में और बढ़ती जाएगी अगर ऐसे ही तरक्की होती रही। गुलजार भाई, एक बात तो आप ये भी बता दीजिए कि ये जो 20 सूत्री कार्यक्रम से देश में एक नई खुशहाली आ रही है, तो आपकी फिल्मी दुनिया इसमें कितना योगदान कर सकती है और या कर रही है?
0: कर सकती है और कर रही में थोड़ा सा अंतर है,
1: हाँ, है ना?
0: और
1: हाँ,
0: दोनों को जांच लेना चाहिए।
1: हाँ, जांच लीजिए।
0: कर सकती में तो ये है कि हर फिल्म
1: जी
0: एक बड़ा मकसद ले सकती है।
1: ठीक।
0: और वही बात जैसे ऊपर कही मैंने कि अगर ये साफ सुथरी होने लगे
1: जी,
0: तो कहीं तो ये महसूस होगा कि हम कौम के लिए क्या कर रहे हैं या वतन के लिए क्या कर रहे हैं।
1: ठीक।
0: और वो फिल्में भी आएंगी जो हमें एक बार तो ये महसूस कराएंगी या एक बार तो ये महसूस होने देंगे कि साहब आप हिंदुस्तानी हैं, आपने हिंदुस्तान के लिए क्या बात सोची।
1: वाह, क्या बात कही।
0: और आप किस कौम से ताल्लुक रखते हैं और आपकी कौम क्या है, कम से कम ये तो जान लें।
1: ठीक।
0: क्योंकि सिवाय आज तक के ये कि हम ये जानते हैं कि ये एक्टर है और मैं डायरेक्टर हूँ और ये, लेकिन ये कभी बहुत कम मेरा ख्याल है कहीं बहस होती होगी कि हम दो हिंदुस्तानी हैं और बाहर की फिल्मों को उस नुक्ते से देख रहे हैं कि साहब हमें कहाँ तक पहुँचना है या क्या करना चाहिए।
1: जी।
0: तो वो एक बार कौम की तरफ से कौमियत के साथ महसूस करना तो कहीं फर्ज है और कहीं अच्छा लगता है, वो होना चाहिए। और ये फिल्में कम काम कर सकते हैं क्योंकि बड़ी बड़ा एजुकेटिव मीडियम है।
1: जी।
0: और कर कितना रही है उसमें ये कि कोशिश बहुत है।
1: अच्छा।
0: लेकिन पहुंच कम हुई है।
1: हाँ, ठीक है। तो
0: मतलब उतनी
1: तो
0: नहीं हुई जितनी होनी चाहिए थी। और उसी के लिए ये 20 नुकाती प्रोग्राम चल रहे हैं, उम्मीद है होगा।
1: हाँ जी। अच्छा गुलजार भाई, आपने पहले ही कहा था कि आप तो आपने फिल्म जगत में पहले सबसे जो कदम रखा था गाना लिखा था।
0: जी हाँ।
1: और आप कवि हैं, शायर हैं।
0: जी हाँ।
1: तो हम चाहेंगे भाई अंत में एक दो चार पंक्तियां अगर श्रोताओं तक पहुंच जाए आपकी, आपकी जबानी तो क्या हर जाए।
0: छोटे जी, हर्ज तो कुछ नहीं बल्कि अच्छी बात है।
1: अच्छी बात है ना।
0: अगर उन्हें अच्छी लगे।
1: अरे लगेगी साहब, जरूर लगेगी।
0: नज़्म में आपको सुना देता हूँ।
1: अच्छा।
0: और सुनने वालों तक भी पहुंच जाएगी।
1: हाँ, पहुंचे रहेगी।
0: वो जो शायर था।
1: अच्छा, वो जो शायर था।
0: बहकी बहकी सी बातें करता था। मेरी तरफ ना देखिए। वो जो शायर था, बहकी बहकी सी बातें करता था और आंखें कानों पर रख के सुनता था गूंगी खामोशियों की आवाजें, जमा करता था चांद के साए गीली गीली सी नूर की बूंदें।
1: वाह।
0: जमा करता था चांद के साए गीली गीली सी नूर की बूंदें और ओक में भर के खड़खड़ाता था रूखे रूखे से रात के पत्ते।
1: वाह।
0: और वक्त के इस घनेरे जंगल में कच्चे पक्के से लम्हे चुनता था। हाँ, वही वो अजीब सा शायर रात को उठ के कोहनियों के बल चांद की ठोड़ी चूमा करता था।
1: वाह वाह वाह वाह।
0: हाँ, वही वो अजीब सा शायर रात को उठ के कोहनियों के बल चांद की थोड़ी चूमा करता था। चांद से गिर के मर गया है वो, लोग कहते हैं खुदकुशी की है।
1: वाह बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। गुलजार भाई, आज आपसे मिलके हमें और हमारे श्रोताओं

0: और आंखें कानों पर रख के सुनता था गूंगी खामोशियों की आवाजें, जमा करता था चांद के साए, गीली गीली सी नूर की बूंदें।
1: वाह।
0: जमा करता था चांद के साए, गीली गीली सी नूर की बूंदें, और ओक में भर के खड़खड़ाता था रूखे रूखे से रात के पत्ते। और वक्त के इस घनेरे जंगल में कच्चे पक्के से लम्हे चुनता था। हाँ, वही वो अजीब सा शायर रात को उठ के कोहनियों के बल चांद की ठोड़ी चूमा करता था।
1: वाह वाह वाह वाह।
0: हाँ, वही वो अजीब सा शायर रात को उठ के कोहनियों के बल चांद की ठोड़ी चूमा करता था। चांद से गिर के मर गया है वो, लोग कहते हैं खुदकुशी की है।
1: वाह वाह, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। गुलजार भाई, आज आपसे मिलके हमें और हमारे श्रोताओं को बहुत ही प्रसन्नता हुई और बहुत सारी जानकारी मिली है, तो इसके लिए तो भाई हम आभार प्रकट कर रहे हैं अपने श्रोताओं की ओर से भी और भारती की भी ओर से
0: आपका।
1: और आप समझो समय अभी हो रहा है, तो अब श्रोताओं
0: फिर मिलेंगे।
1: अच्छा, नमस्कार।

0: और आंखें कानों पर रख के सुनता था गूंगी खामोशियों की आवाजें, जमा करता था चांद के साए, गीली गीली सी नूर की बूंदे,
1: वाह,
0: जमा करता था चांद के साए, गीली गीली सी नूर की बूंदे, और ओक में भर के खड़खड़ाता था रूखे रूखे से रात के पत्ते, और वक्त के इस घनेरे जंगल में कच्चे पक्के से लम्हे चुनता था। हाँ, वही वो अजीब सा शायर रात को उठ के कोहनियों के बल चांद की ठोड़ी चूमा करता था।
1: वाह वाह वाह वाह।
0: हाँ, वही वो अजीब सा शायर रात को उठ के कोहनियों के बल चांद की ठोड़ी चूमा करता था। चांद से गिर के मर गया है वो, लोग कहते हैं खुदकुशी की है।
1: वाह वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। गुलजार भाई, आज आपसे मिलके हमें और हमारे श्रोताओं को बहुत ही प्रसन्नता हुई और बहुत सारी जानकारी मिली है, तो इसके लिए तो भाई हम आभार प्रकट कर रहे हैं अपने श्रोताओं की ओर से भी और भारती की भी ओर से
0: आपका।
1: और आप समझो समय अभी हो रहा है तो अब श्रोताओं
2: ये रणनीतिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। श्री मोदी ने कहा कि इस यात्रा से भारत और फ्रांस के बीच आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध और प्रगाढ़ होंगे। प्रधानमंत्री मोदी कल फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ भारत इनोवेट्स सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। उन्होंने कहा कि ये कार्यक्रम भारतीय स्टार्टअप्स को दुनिया भर से जोड़ेगा। यात्रा के दूसरे चरण में श्री मोदी कल स्लोवाकिया के लिए रवाना होंगे। एक रिपोर्ट।
3: प्रधानमंत्री मोदी ब्रातिस्लावा में स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी और प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको से मुलाकात करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि इससे यूरोपीय संघ के साथ भारत की रणनीतिक साझेदारी और मजबूत होगी। स्लोवाकिया यात्रा के बाद श्री मोदी फ्रांस के एवियन जाएंगे, जहां वे 16 और 17 जून को G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि G7 में भारत की उपस्थिति भारत के बढ़ते वैश्विक प्रभाव को दर्शाती है। ये लगातार 8वां G7 शिखर सम्मेलन है जिसमें भारत को आमंत्रित किया गया है। यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री मोदी 18 जून को पेरिस जाएंगे, जहां वे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ विवा टेक 2026 सम्मेलन में शामिल होंगे। पेरिस से शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
2: असम में भारतीय वायुसेना का एक AN-32 विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया है।

0: यह हादसा जोरहाट वायुसेना स्टेशन पर हुआ। विमान क्रैश होने के बाद आग लग गई। फिलहाल दमकल की गाड़ियां घटनास्थल पर मौजूद हैं और राहत बचाव कार्य जारी हैं। घटना के कारणों का पता लगाया जा रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO को लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल रोधी तथा मध्यम दूरी की पोत रोधी क्षमता का प्रदर्शन करने वाले लगातार तीन सफल परीक्षणों के लिए बधाई दी है। रक्षा मंत्री ने कहा कि इन परीक्षणों से भारत अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल हमले रोकने में सक्षम विशिष्ट देशों के समूह में शामिल हो गया है। मंत्रिमंडल सचिव TV सोमनाथन ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के महानिदेशक अभिषेक सिंह के साथ बैठक में 21 जून को नीट पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने पुनर्परीक्षा के सुचारू, पारदर्शी और सुरक्षित आयोजन के लिए सभी संबंधित पक्षों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने पर बल दिया। प्रवर्तन निदेशालय ED ने आज पश्चिम बंगाल के नगर पालिका भर्ती घोटाले के सिलसिले में कोलकाता और आसपास के इलाकों में 7 स्थानों पर छापेमारी की। ये कार्रवाई तृणमूल कांग्रेस विधायक और पूर्व मंत्री मदन मित्रा के ठिकानों से जुड़े परिसरों में की गई। निदेशालय के अनुसार कमरहाटी सहित विभिन्न नगर पालिकाओं में अयोग्य उम्मीदवारों की नियुक्ति के बदले बिचौलियों के माध्यम से नकद और सोने के रूप में रिश्वत ली गई थी। एजेंसी का कहना है कि मदन मित्रा 125 से अधिक ऐसी अवैध नियुक्तियों से जुड़े हुए हैं। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से बातचीत में खाड़ी में अमेरिकी नौसेना के हमलों पर कड़ा विरोध जताया है। इन हमलों में 3 भारतीय नाविक मारे गए थे। डॉ जयशंकर ने कहा कि वाणिज्यिक जहाजों पर इस तरह की घातक कार्रवाई उचित नहीं है। ट्रंप प्रशासन ने कहा है कि वह ईरान के नागरिक परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम को मंजूरी देने के लिए तैयार है, लेकिन ईरान को परमाणु हथियार निर्माण से जुड़े बुनियादी ढांचे को खत्म करना होगा। ट्रंप प्रशासन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कल प्रस्तावित अमेरिका ईरान परमाणु समझौते का विवरण प्रस्तुत किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज उत्तराखंड के देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी में पासिंग आउट परेड का निरीक्षण किया। इस वर्ष की ऐतिहासिक पासिंग आउट परेड में पहली बार महिला कैडेट्स भी शामिल हुईं। समारोह में 500 से अधिक पुरुष और महिला कैडेट्स ने भाग लिया। खुदरा मुद्रास्फीति इस वर्ष मई में बढ़कर 3.93% हो गई है। लगातार 5वें महीने महंगाई में वृद्धि दर्ज हुई है। ग्रामीण क्षेत्रों में मुद्रास्फीति बढ़कर 4.25%, जबकि शहरी क्षेत्रों में यह 3.53% रही। भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच आज धर्मशाला में खेला जाएगा। मैच दोपहर 1:30 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: भारती से बोल रहे हैं, थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हमारा अगला कार्यक्रम यादों की महफिल।

0: आइए सुने यादों की महफिल।
1: कह दूं तुम्हें
2: हाँ
1: या चुप रहूं
2: ना,
1: दिल में मेरे आज क्या है
2: क्या है।
1: कह दूं

0: जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है। पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
2: विविध भारती से आप सुन रहे हैं यादों की महफिल।

मेहरबान, आपके शहर में आकर एक खास गाना बनाया है जो इस प्रोग्राम को रोककर आपके सामने पेश करता हूं।

श्रोताओं, अभी आप विविध भारती के कार्यक्रम सुन रहे थे। FM बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी केंद्र झालावाड़ का ये चंद्र है। कुछ ही देर में आप हमारे जयपुर केंद्र से रिले हिंदी में प्रादेशिक समाचार सुनेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के युवा विज्ञान, प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष, विनिर्माण, सेमीकंडक्टर और ड्रोन जैसे क्षेत्रों में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल कर रहे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि भारत आज दुनिया के प्रमुख स्टार्टअप केंद्रों में शामिल है और इसकी सफलता में छोटे शहरों और गांवों के युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रधानमंत्री ने खेलों में युवाओं के उत्कृष्ट प्रदर्शन की सराहना करते हुए कहा कि भारतीय खिलाड़ियों ने अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में देश का गौरव बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया और अटल इनोवेशन मिशन जैसी पहलों ने नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा दिया है। श्री मोदी ने कहा कि पिछले 12 वर्षों से एनडीए सरकार युवा नेतृत्व वाले विकास को प्रोत्साहित कर रही है, जिससे देश के युवाओं का आत्मविश्वास बढ़ा है और वे अपने सपनों को साकार कर रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज हैदराबाद के दुंडीगल स्थित वायुसेना अकादमी के 215 17वें बैच की संयुक्त दीक्षांत परेड का निरीक्षण किया। इस अवसर पर उन्होंने नव नियुक्त अधिकारियों से बदलती युद्ध तकनीकों के अनुरूप खुद को तैयार रखने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि आधुनिक युद्ध में ड्रोन, उपग्रह और रोबोटिक्स जैसी तकनीकों की भूमिका बढ़ रही है। रक्षा मंत्री ने राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में प्रशिक्षित महिला कैडेट्स के पहले बैच को भी शामिल किया। समारोह में सुखोई 30, एमकेआई, सारंग और सूर्य किरण एरोबेटिक टीम द्वारा हवाई प्रदर्शन किया गया। असम में आज सुबह भारतीय वायुसेना का एक AN-32 विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। यह हादसा जोरहाट वायुसेना स्टेशन पर हुआ। विमान क्रैश होने के बाद उसमें आग लग गई। फिलहाल दमकल की गाड़ियां घटनास्थल पर मौजूद हैं और राहत बचाव कार्य जारी है। घटना के कारणों का पता लगाया जा रहा है। राजस्थान काडर के 2 वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों को केंद्र सरकार में महानिदेशक यानी डीजी स्तर के पदों पर नियुक्ति के लिए चुना गया है। केंद्र की कैबिनेट नियुक्ति समिति ने राजस्थान के 1995 बैच के आईपीएस अधिकारी एमएन दिनेश और बीजू जॉर्ज जोसेफ को केंद्र में डीजी या उसके समकक्ष पदों पर पदस्थापना के लिए सूचीबद्ध करने की मंजूरी दे दी है। इस सूची में इन दोनों अधिकारियों सहित देश भर के विभिन्न राज्यों के कुल 33 वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों को जगह मिली है, जिनमें 1990 से 1995 बैच तक के अधिकारी शामिल हैं। राज्य सरकार द्वारा जयपुर डेयरी के संयंत्र का आधुनिकीकरण किया गया है। इस पर 133 करोड़ रुपए की लागत आई है। डेयरी मंत्री जोराराम कुमावत ने बताया कि प्लांट के नवीनीकरण से इसकी दूध प्रसंस्करण क्षमता 20 लाख लीटर प्रतिदिन हो गई है।

0: वहीं दूध पैकिंग की क्षमता भी 16.5 लाख प्रतिदिन पहुंच गई है। पहले इसकी दूध पैकिंग क्षमता 10 लाख लीटर थी। इस मेगा प्लांट का जल्द ही उद्घाटन किया जाएगा। इस प्लांट से जयपुर और आसपास के उपभोक्ताओं को उच्च गुणवत्ता वाला दूध मिलेगा, साथ ही पशुपालकों से अधिक मात्रा में दूध खरीद होने से उन्हें सीधा फायदा होगा। पाली के सोजत सिटी में मेहंदी व्यापारियों के लिए एक कार्यशाला रखी गई। डाक विभाग और मेहंदी व्यापार संघ की ओर से आयोजित इस कार्यशाला में सोजत की विश्व प्रसिद्ध मेहंदी और अन्य स्थानीय उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंचाने पर चर्चा की गई। कार्यशाला में पाली के डाकघर अधीक्षक तरुण शर्मा ने बताया कि डाकघर निर्यात केंद्र छोटे और मध्यम व्यापारियों के लिए वैश्विक बाजार से जुड़ने का एक आसान और प्रभावी माध्यम है। इस दौरान व्यापारियों को निर्यात पंजीकरण, अंतर्राष्ट्रीय पार्सल बुकिंग, कस्टम प्रक्रियाएं, जीएसटी और आयात निर्यात कोड की जानकारी दी गई। प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से राज्य में अधिकांश हिस्सों में मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल गया है। अधिक आंधी और बारिश से लोगों को भीषण गर्मी और उमस से राहत मिली है। मौसम विभाग ने आज भी राज्य के 23 जिलों में तेज हवाओं और बारिश का अलर्ट जारी किया है। पिछले 24 घंटों के दौरान राजधानी जयपुर सहित कई जिलों में रुक रुक कर बारिश का दौर चला। हनुमानगढ़, सीकर, श्रीगंगानगर और चूरू के कुछ इलाकों में ओले भी गिरे। प्रदेश में सबसे ज्यादा 50 मिलीमीटर बारिश सीकर के दांता रामगढ़ में दर्ज की गई। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: हम आकाशवाणी केंद्र झालावाड़ की चंद्रभागा चैनल से बोल रहे हैं। लीजिए एक बार फिर सुनवाते हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम, जिन्हें हम मुंबई केंद्र से रिले कर रहे हैं।

फिल्म का ये गाना है और इसके अलावा गाइड उपन्यास के लेखककार के नारायण थे और राजू और रोजी नाम थे गाइड फिल्म के हीरो और हीरोइन के नाम। और इसके अलावा और भी बहुत सारे श्रोताओं के कमेंट्स आए हैं। 1977 में आई थी पलकों की छांव में फिल्म और 1958 में आर के नारायणन का द गाइड आया था। और ये तमाम बातें हमारे श्रोताओं की। और इसके अलावा बारिश का जो इंतज़ार है वो आप सभी को है, हम सभी को है, क्योंकि जिस तरह की गर्मी इस साल पड़ी है वो बहुत ही खौफनाक है। क्या आपने अपने पूरे जीवन में इस तरह की तेज़ गर्मियां इससे पहले देखी थी? और पिछले साल या बीते सालों की गर्मियों में और इस साल की गर्मी में क्या फ़र्क आपको नज़र आ रहा है, ये भी बताइएगा कि इस साल की गर्मी के कहर ने क्या कुछ दिखाया है आपको। और इसके अलावा एक और श्रोता हैं जिन्होंने कहा कि बहुत बरसों बाद एसडी बर्मन वाला ये गाना हमें सुनने को मिला है। और इसके अलावा एक श्रोता हैं जिन्होंने लिखा है आई बहार, आई बरखा बहार करे अंगना फुहार। और इसके अलावा और भी बहुत सारे बारिश के गाने इन्होंने लिख दिए हैं, बहुत सारे बारिश के गाने। आज वर्षा की बूंदें पूरे विविध भारती को तरबतर करने वाली हैं, कम से कम गर्मी से थोड़ी राहत मिलेगी भले बारिश के गानों के जरिए ही क्यों ना हो। इसके अलावा एक और श्रोता लिखते हैं कि सचिन देव बर्मन धोती कुर्ता पहनते थे और कितने आगे का संगीत देकर वो चले गए हैं कि आज के संगीतकार भी उनका मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं। इसके अलावा और भी श्रोता हैं जिन्होंने अलग अलग शब्दों के जरिए अंदाज़ा लगाया है कि आज कौन कौन से गाने हो सकते हैं। जिंदगी की पहली बारिश बहुत सारी यादें लेकर आती है। बारिश की बूंदें गिरते ही इंसान अनजाने में अपने अतीत में लौट जाता है। मिट्टी की पहली सोंधी खुशबू सीधे हमारे मस्तिष्क के उस हिस्से को सक्रिय करती है जो यादों को वापस लेकर आता है। ये एक श्रोता का कमेंट है। एक और श्रोता है जो कह रहे हैं कि आज की जो इबारत है उसमें रिमझिम और ठंडक है और बस यूं लग रहा है कि अभी बारिश हो जाए। एक और श्रोता कह रहे हैं कि पूरे राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय है, दो दिन से अलग अलग स्थानों पर कहीं कहीं बारिश हो रही है और मौसम सुहावना हो रहा है। एक और श्रोता का कहना है कि हम सब पर्यावरण को भूल रहे हैं, एल नीनो की वजह से अकाल जैसी परिस्थितियां हो रही हैं। तो और भी श्रोताओं के कमेंट्स हम शामिल करेंगे, लेकिन अभी आज के दूसरे गाने की तरफ बढ़ते हैं और वो गाना जो है वो आप सभी के दिल के करीब गाना है। आपको फिल्म का नाम बताना है और उसके अलावा ये भी बताना है कि इस साल की पहली बारिश आते ही आप किस इलाके में पिकनिक मनाने जाएंगे।

बहुत ही सुंदर गाना आशा भोसले की आवाज में, और बहुत सारे श्रोताओं के कमेंट से, एक श्रोता लिखती हैं कि हम तो सागर किनारे बारिश में भीगेंगे जैसे मौसमी चटर्जी और अमिताभ बच्चन मरीन ड्राइव पर भीगते हैं रिमझिम गिरे सावन गाने में, हम विशाखापट्टनम में इसी तरह के मजे लेंगे। एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि आजकल वैसे रिमझिम फुहार वाली बारिश नहीं होती, आप कहीं बाहर आउटिंग के लिए जा सकते हैं, पिकनिक मना सकते हैं, अब तो धूम धड़ाके के साथ बारिश होती है, ऐसा लगता है जैसे बहुत गुस्से के साथ बारिश हो रही है, कहीं रास्ते बंद, कहीं पुल टूट गए। अब बारिश से खुशी तो होती है पर उस खुशी को मनाने का मौका नहीं मिलता। एक और श्रोता है जो भोपाल से हैं और लिखते हैं कि भोपाल में पिकनिक मनाने की बहुत सारी जगह हैं, बरसात के मौसम में आसपास के जंगल और डैम्स पर पिकनिक मनाना बहुत अच्छा लगता है, केरवा डैम और कोलार डैम में हम जंगलों में जाएंगे। एक और श्रोता लिख रहे हैं कि गर्मी तो हर साल बढ़ती चली जा रही है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है हमारी त्वचा ज़्यादा संवेदनशील होने लगती है और ठंडी और गर्मी का असर ज़्यादा होने लगता है। एक और श्रोता ये लिख रही हैं कि हमारे यहाँ सुबह से बारिश हो रही है और बारिश के साथ इस कार्यक्रम का हम आनंद ले रहे हैं। एक और श्रोता हैं जो लिखते हैं कि 1980 में आई थी थोड़ी सी बेवफाई फिल्म आशा भोसले और खयाम। इसके अलावा एक और श्रोता लिख रहे हैं कि जहां विविध भारती के जरिए बारिश के गाने बज रहे हैं, धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में जोरदार बारिश हो रही है। और इसके अलावा एक और श्रोता ये लिख रहे हैं कि इस साल बहुत ही ज़्यादा गर्मी पड़ी है और हालत ख़राब हो गई है। इसके अलावा एक श्रोता का कमेंट है कि इस साल मारतंड अपने प्रचंड रूप में दिखा गया है, जनजीवन बेहाल हो गया है। और बहुत सारे श्रोता हैं जो गर्मी से वाकई बहुत बुरी तरह से परेशान हैं। गर्मी तो हर साल लगभग एक सी पड़ती है, ये बात अलग है, हम पिछले साल की गर्मी भूल जाते हैं और सामने जो गर्मी है उससे हम परेशान होने लगते हैं।

खंडवा शहर के एक श्रोता कहते हैं कि हम भीषण गर्मी की चपेट में हैं, तेज धूप और गर्म हवाओं ने लोगों का जनजीवन कठिन बना दिया है। दोपहर की तपती सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहता है और हर चेहरा बारिश की राह देखता रहता है। इसके अलावा एक और श्रोता हैं जिन्होंने ये लिखा है कि बस अब तो बारिश हो जाए तो जैसे हमें थोड़ा सा सुकून मिलेगा। और इसके अलावा एक श्रोता का कहना यह है कि विविध भारती से जब बारिश के गाने बजेंगे तो हमें थोड़ा सा तो सुकून गर्मी से मिलेगा और क्या पता हमारे शहर में बारिश आ ही जाए। एक और श्रोता लिखते हैं, ये रे पाउसा तुला दे तो पैसा, पहला पैसा झाला खोटा, पाउसाला मोटा जैसे बचपन के गाने याद आ गए हैं, क्योंकि आज के सुरीला सफ़र की जो इबारत है वो बहुत बारिश वाली इबारत है। अभी अभी अमिताभ बच्चन और मौसमी चटर्जी को याद किया हमारी एक श्रोता ने, और बस अब हम भी वही गाना आप सभी के लिए प्ले करने वाले हैं। लेकिन सवाल ये है कि इस गाने में मुंबई के कौन कौन से मॉन्यूमेंट्स, मुंबई के कौन कौन से इलाके, कौन कौन सी इमारतें या मशहूर जगहें आपको नजर आती हैं रुपेले पर्दे पर, कितनी जगहों के नाम आप लिख पाएंगे? और साथ में ये भी बताइए कि इस गाने को लिखा किसने है।

क्या तो शानदार गाना, बहुत ही प्यारा गाना, और योगेश जी ने इस गाने को लिखा है। एक श्रोता लिखते हैं कि ये गाना तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मुंबई के ज़्यादातर इलाकों से मैं परिचित नहीं हूँ, इसलिए इनके नाम नहीं बता सकता। लता जी की आवाज़ कानों में अमृत घोलती है। एक और श्रोता का कमेंट है, एक और श्रोता कहते हैं कि अकोला में बारिश हुई है, लेकिन आज बहुत बुरी तरह से गर्मी पड़ रही है। और इसके अलावा कई श्रोता ये लिख रहे हैं

ये मुंबई के साथियों को ही पता होगा कि इस गाने में कौन कौन से इलाके नजर आते हैं। नहीं, मुंबई के बाहर के श्रोताओं को भी पता होगा, क्योंकि ये जो इलाके नजर आते हैं ये अपने आप

मरीन ड्राइव नजर आता है, उसके अलावा ओवल मैदान नजर आता है, उसके अलावा राजाबाई टावर नजर आता है, गेटवे ऑफ इंडिया, ताज और मुंबई का समुद्र। बहुत सारे श्रोताओं की बातें मिला के लगभग लगभग तय हो गया कि कौन कौन सी इमारतें और मुंबई के कौन कौन से इलाके इस गाने में नजर आते हैं। ये सिर्फ गीत नहीं, ये दो आत्माओं के बीच बहती उस भाव की बारिश, क्या बात है, क्या बात है। इसके अलावा कुछ श्रोताओं ने पहचानने की कोशिश की है, मरीन ड्राइव और विक्टोरिया टर्मिनस नजर आते हैं। ये हमारी एक श्रोता ने लिखा है, मरीन ड्राइव नजर आता है, उसके अलावा ओवल मैदान नजर आता है, उसके अलावा राजाबाई टावर नजर आता है, गेटवे ऑफ इंडिया, ताज और मुंबई का समुद्र। बहुत सारे श्रोताओं की बातें मिला के लगभग लगभग तय हो गया कि कौन कौन सी इमारतें और मुंबई के कौन कौन से इलाके इस गाने में नजर आते हैं। ये सिर्फ गीत नहीं, ये दो आत्माओं के बीच बहती उस भावना का गीत है जिसकी गवाह है बारिश। सौम्यता और कोमलता से भरपूर इस गाने को योगेश जी ने लिखा है। एक और श्रोता है जो कहते हैं कि आज आपकी इबारत सही साबित हुई, पिछली रात कुछ घंटे पहले बारिश की रिमझिम फुहारों ने हमारे अजमेर शहर की तपती धरती पर बरखा रानी के आने से सुबह झूम उठे हैं और घर के गार्डन के पेड़ पौधे भी लहरा उठे हैं, मानो उन्हें शिद्दत से इंतजार था। इसके अलावा एक और श्रोता है जो इंदौर से हैं, उनका कहना है कि सब जगह से बरसात की खबरें आ रही हैं पर हमारे इलाके में गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ती चली जा रही है। कटक से एक श्रोता है जो लिखते हैं कि हम अक्सर बारिशों में पुरी चले जाते हैं और सुंदर समुद्र तट पर सुकून मिलता है। और इसके अलावा कई शहरों में बारिश हो रही है, इसकी खबर हमें अपने श्रोताओं के कमेंट से मिली है। एक श्रोता ने सुमित्रा नंदन पंत की कविता लिखी है, झमझम मेघ बरसते हैं सावन के, छमछम छमछम गिरती बूंदें तरुओं से छन के, चमचम बिजली चमक रही उर्मे घन के, थम थम दिन के तम में सपने जगते मन के, पंख खोल फैले हैं ताड़ों के दल, लंबी लंबी उंगलियां हैं चौड़े करतल, तड़ तड़ पड़ती धारी वारी के उन पर चंचल, टप टप झरती करमुख से जल बूंदें झलमल। क्या सुंदर तो भाषा है, कितनी ललित भाषा। पहली बारिश के बाद नासिक के हम लोग पुणे, मुंबई, इगतपुरी, भंडारदरा जैसे इलाकों में जाते हैं। मुंबई का सबसे, महाराष्ट्र का सबसे ऊंचा पर्वत कलसूबाई है, जहां से सैकड़ों झरने बहते हैं, वहां जाना बड़ा मजेदार होता है। एक श्रोता

आपका मकसद है, ये थोड़े नाराज नजर आ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि कोई प्रेरक विषय वस्तु दीजिए और इस तरह से कुछ और करिए। भाई आपका ये सुझाव जो है सर आंखों पर प्रेरक विषय वस्तु से आपका क्या तात्पर्य है, थोड़ा विस्तार दीजिएगा। और त्रिवेणी जैसे

बहुत ही सुंदर गाना जो पूरी तरह से खत्म हो गया, और एकदम से जब गाना खत्म होता है तो लगता है अरे ये इतना शानदार गाना था, ये कैसे खत्म हो गया। पर बहुत मजा आया, और बहुत सारे श्रोताओं के इस वक्त हमारे पास कमेंट हैं जो अपनी अपनी बातें लिख रहे हैं। फिर कब मिलोगी फिल्म का ये गाना मुझे बहुत पसंद है, ये एक श्रोता का कमेंट है। मजरू सुल्तानपुरी का लिखा ये गीत, पंचम का संगीत, ये भी कई श्रोताओं ने लिखा है। और इसके अलावा ये हिंदी के बड़े खूबसूरत रोमांटिक गानों में से एक है, ये हमारे एक श्रोता का कमेंट है। एक श्रोता लिखते हैं, नैनों के द्वार पे खड़े कुछ मासूम से सपने, इन पानी भरी बदलियों को देख मुस्कुराते हैं, जैसे निस्दिन देख रहे हों बादलों की आड़ में बहारों के सपने, तुम आओ तो शायद उन्हें भी आ जाए कुछ करार। ये हमारे एक श्रोता का कमेंट है। और इसके अलावा एक और श्रोता हैं जो लिख रहे हैं कि बरसात की रात के गाने के बिना ये कार्यक्रम अधूरा रहेगा, सरकार अभी गाना आने तो दीजिए, कार्यक्रम अभी बहुत लंबा है, तो एक बार पूरा हो जाए उसके बाद देखा जाएगा। इसके अलावा बहुत सारे श्रोता हैं जो लिख रहे हैं कि हमारे शहर में बारिश आ जाए तो बहुत अच्छा है, जैसे नागपुर के एक श्रोता का कमेंट ठीक इस वक्त मेरी नज़रों के सामने, वो लिख रहे हैं कि इतनी गर्मी है कि बारिश आ जाए तो सुकून मिल जाएगा। और इसके अलावा एक श्रोता अपने ननिहाल की याद लिख रहे हैं, जब उनके नानी के घर पर बिजली गिर गई थी और एक भयावह माहौल था। एक श्रोता लिख रही है कि इबारत का पता नहीं चलता है, कब आती है कब दिखती नहीं है। इबारत पोस्ट की जाती है पोस्टर के साथ, और आपको वहां वो जो टेक्स्ट है उसमें देखना चाहिए, आपको पता चल जाएगा। इसके अलावा एक और श्रोता है जो कहते हैं कि सूरत में बारिश जैसा माहौल तो है लेकिन अभी तक बारिश नहीं हुई है। एक और श्रोता

जो पंजाब में रहते हैं और वो कहती हैं कि जब भी मैं मुंबई आती हूं तो मरीन ड्राइव पर बहुत घूमती हूं क्योंकि वो जगह मुझे बहुत अच्छी लगती है। बहुत बहुत शुक्रिया। अगले गाने की तरफ बढ़ रहे हैं जो एक खूबसूरत मौसम का इशारा करने वाला गाना है। जब बहुत सुंदर मौसम होता है, चाहे वो बारिश का हो, चाहे वो ठंड का हो, चाहे वो गर्मियों की थोड़ी बहुत ठंडी शाम हो, तो आप ऐसी शाम को किस जगह बिताना पसंद करते हैं ये बताइएगा।

पाकीज़ा फिल्म का ये गीत आप सभी ने सुना। एक श्रोता लिखते हैं कि रिमझिम गिरे सावन एक ऐसा गाना है जहां पिछले बारिशों के दिनों में हम मुंबई आए थे और मरीन ड्राइव पर इस गाने पर हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैं और मेरी धर्मपत्नी छाता लेकर चल रहे हैं। इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि पहली बारिश हो चुकी है और प्रकृति का मिजाज थोड़ा बदला हुआ है। हमारे यहाँ आम पके हैं, जामुन पकी है, खजूर और करौंदा आ रहा है और हम विविध भारती के कार्यक्रमों का आनंद ले रहे हैं। एक और श्रोता छत्रपति संभाजीनगर में हैं और बारिश का इंतजार कर रहे हैं। एक श्रोता कहती हैं कि माँ के घर जाती हूँ, वहाँ नदी बहती है और उस नदी के किनारे बैठना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। इसके अलावा

सुमन कल्याणपुर और कमल बारोट की आवाज फिल्म का नाम बरसात की रात। बहुत सारे श्रोताओं ने ये बात लिखी है और एक श्रोता कह रहे हैं कि हमें आपका ये वाक्य अच्छा लगा, कहीं ये वाला गाना वो वाला तो नहीं। और इसके अलावा एक और श्रोता हैं जिन्होंने ये लिखा है कि बारिश का आगमन सभी के लिए हर्ष का विषय होता है, शायद ही कोई होगा जिसे बारिश अच्छी नहीं लगती। और इसके अलावा वो लिख रहे हैं कि बुरा लगता था जब माँ रेनकोट पहना देती थी और फिर पापा बाइक से लेने आ जाते थे, क्योंकि बारिश में पैदल चलते हुए स्कूल जाना और वापस आना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था। इसके अलावा एक और श्रोता लिख रहे हैं कि बरसात की रात फिल्म का ये गाना है और एग्जैक्टली इबारत से मेल खाता हुआ मौसम हमारे शहर में है, बारिश सुबह से ही दस्तक दे चुकी है। चलिए अब आगे चलते हैं और अगले गाने की तरफ बढ़ते हैं जो एक तरह से बारिश के आने के बाद का गाना है और आपको संगीतकार और फिल्म का नाम बताना है।

एक श्रोता लिख रहे हैं कि आज मेरी सूची तो फेल हो गई है, बस यही खासियत है आपकी, आपकी मौलिकता कुछ अलग है और अदा भी अलग है। शुक्रिया भाई। एक और श्रोता हैं जिन्होंने लिखा है कि मजरूह सुल्तानपुरी, लता मंगेशकर, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, मेरे हमदम, मेरे दोस्त, क्या बात है। ये बिल्कुल मेरे अंदाज में लिखा गया है। एक श्रोता है लिखती हैं कि बारिश तो अच्छी लगती है लेकिन कीड़े मकोड़े, मेंढक, बिजली वाले कीड़े, इन सबसे थोड़ी परेशानी होती है। इसके अलावा एक और श्रोता हैं जो कह रहे हैं कि आज जो बारिश के इंतज़ार पर आपने कार्यक्रम किया है, इतनी गर्मी है हमारे शहर में कि बस इस कार्यक्रम को सुनकर ही थोड़ी राहत मिल रही है। एक श्रोता लिख रहे हैं कि बचपन में जब बारिश होती थी तो मैं लोहे का तवा उलट कर रख देती थी क्योंकि घर के बड़े बोलते थे कि तवा उलट कर रख देने से बारिश बंद हो जाती है क्योंकि उस समय कीचड़ हो जाता था और वो मुझे अच्छा नहीं लगता था। एक और श्रोता लिखते हैं कि शहर जयपुर में गोठ और सवामणि का दौर शुरू हो जाता है जिसमें दाल बाटी, चूरमा और अन्य चीज़ें होती हैं। हम भी आज जाएंगे सवामणि में, जयपुर के ही रमणीक स्थल पाल के बालाजी, ये उन्होंने लिखा है। इसके अलावा एक और श्रोता है जिन्होंने लिखा है कि 1968 में आई फिल्म मेरे हमदम मेरे दोस्त फिल्म का ये गाना है। एक और श्रोता लिखते हैं कि परसों बारिश हुई थी रात को 11:30 बजे और उसके बाद हम बारिश का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। हमारी शादी वाले दिन भी इतनी बारिश हुई थी कि शादी मंडप में नहीं कमरे में करनी पड़ गई थी। जी जी। इसके अलावा एक और श्रोता दिल्ली से लिख रहे हैं कि बड़ी उमस, बड़ी परेशानी है और आपने जिस तरह से बारिश के गाने सुनवाए, शुक्रिया, आपका शुक्रिया। और अब ये गाना आ रहा है। अच्छा ये बताइए कि जब बारिश आती है तो आपके जहन में पहला गाना कौन सा गूंजता है, आपका वाला बारिश का गाना कौन सा है, फटाफट बताइए।

भाई बहुत सारे श्रोताओं के कमेंट आ रहे हैं और एक श्रोता लिखते हैं कि मेरा वाला जो गाना था वो तो आप सुना चुके हैं, रिमझिम गिरे सावन। भाई खुशी हुई कि आपका वाला गाना बजा है। और इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिखते हैं, जिंदगी भर भूलेगी नहीं भूलेगी बरसात की रात, ये वो गाना है जो मेरा वाला बारिश का गाना है। इसके अलावा रिमझिम गिरे सावन एक और श्रोता है, उनका फेवरेट गाना है बारिश आते ही जो उनके जहन में आता है, और रोटी कपड़ा और मकान का एक गाना हाय हाय मजबूरी कुछ श्रोताओं के जहन में आता है, वो घटा सावरी कुछ श्रोताओं के जहन में आता है, बरखा रानी जरा जम के बरसो भी कुछ श्रोताओं का बारिश का गाना है। और इसके अलावा रिमझिम के तराने लेके आई बरसात, या काली घटा छाए मोरा जिया भरमाए, रिमझिम के ये प्यारे प्यारे गीत लिए, देखिए पूरी की पूरी प्लेलिस्ट बन गई। इतने सारे श्रोताओं ने अपने अपने बारिश के गाने दिए हैं। एक श्रोता हैं जिन्होंने कहा है कि जब बारिश आती है तो मुझे काला बाजार फिल्म का गाना याद आता है, रिमझिम के तराने लेके आई बरसात, याद आई मुझको वो पहली मुलाकात। और उसके अलावा और भी बहुत सारे श्रोताओं ने बारिश के गाने दिए, लेकिन अभी मुझे बजाना है ये वाला गाना, नीरज के बोल एस टी बर्मन की तर्ज है। किस फिल्म का ये गाना है ये बताइए।

आज का सुरीला सफर कार्यक्रम अब अपने आखिरी मकाम पर आ चुका है। बहुत सारे श्रोताओं के कमेंट्स आ रहे हैं और कुछ गाने हैं जो रह चुके जिन्हें इस कार्यक्रम में शामिल नहीं किया जा सका, जैसे कि ये।

0: वक्त की कमी की वजह से शामिल नहीं हुआ। पर आप तो जानते हैं कि आप सभी के कमेंट्स भी पढ़ने हैं इस कार्यक्रम में और आप सभी की बातें भी तो जाननी है।
1: ले प्यार ने अंगड़ाई, दीवाना हुआ।
0: तो आज का सुरीला सफर कार्यक्रम बारिश के इंतजार पर केंद्रित था। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस कार्यक्रम में साथ निभाने के लिए। हम यही दुआ करेंगे कि आपके शहर में भी जल्दी बारिश आए और आप सभी को गर्मी से निजात मिले। आज के इस कार्यक्रम का सफर आपने अपने दोस्त यूनुस खान के संग तय किया।

0: cadets for the first time reflects India's march towards women-led development. India lodges strong protests to the US over US Navy strikes on oil ship in the Gulf, killing three Indian sailors. Indian Air Force AN-32 aircraft meets with an accident at Jorhat Air Force Station in Assam. And in men's cricket, toss for first ODI of three-match series between India and Afghanistan delayed due to rain in Dharamshala. And with that, we end the midday news.
1: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 दिन की फ्रांस और स्लोवाकिया यात्रा पर रवाना कहा यात्रा से फ्रांस के साथ आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध मजबूत होंगे स्लोवाकिया के साथ द्विपक्षीय सहयोग को नई गति मिलेगी प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के एवियन में G7 शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी की पासिंग आउट परेड में कैडेटों की सराहना की कहा पहली बार 9 महिला कैडेट का शामिल होना महिला नेतृत्व वाले विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम भारत ने खाड़ी क्षेत्र में तेल पोत पर अमरीकी नौसेना के हमले का कड़ा विरोध किया हमले में 3 भारतीय नाविकों की मौत हुई थी वायुसेना का AN-32 विमान असम के जोरहाट स्टेशन पर दुर्घटनाग्रस्त और धर्मशाला में भारत अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला के पहले मैच में बारिश के कारण देरी अब समाचार विस्तार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिन की यात्रा पर रवाना हो गए हैं श्री मोदी ने प्रस्थान वक्तव्य में कहा कि फ्रांस भारत के लिए रणनीतिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है श्री मोदी ने कहा कि इस यात्रा से भारत और फ्रांस के बीच आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध और प्रगाढ़ होंगे प्रधानमंत्री मोदी कल फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ भारत इनोवेट्स सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे नीस से हमारे संवाददाता की रिपोर्ट
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन से पहले नीस में भारतीय समुदाय और कारोबारी जगत में उत्साह का माहौल है उनके स्वागत के लिए विशेष तैयारियां की गई हैं भारत और फ्रांस के लोगों के बीच संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं वर्तमान में लगभग 10,000

0: श्री मोदी कल स्लोवाकिया के लिए रवाना होंगे। एक रिपोर्ट।
1: ब्रातिस्लावा में प्रधानमंत्री स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी और प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको से मुलाकात करेंगे। उन्होंने कहा कि यह यात्रा यूरोपियन यूनियन के साथ भारत की रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करेगी, जिसमें स्लोवाकिया एक महत्वपूर्ण और मूल्यवान भागीदार है। स्लोवाकिया यात्रा के बाद प्रधानमंत्री फ्रांस के एवियन जाएंगे, जहां वे 16 और 17 जून को आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि G7 में भारत की मौजूदगी दुनिया में भारत की बढ़ती प्रतिष्ठा और उसके प्रति देशों के विश्वास को दर्शाती है। उन्होंने बताया कि लगातार 8वां G7 शिखर सम्मेलन है, जिसमें भारत को आमंत्रित किया गया है। अपनी यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 जून को पेरिस में आयोजित वाइवा टेक 2026 में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ शामिल होंगे। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी
2: स्लोवाकिया। Prime Minister Modi will also attend G7 summit at Evian in France. President Draupadi Murmu hails cadets at IMA passing out parade in Dehradun, says inclusion of 9 women cadets for the first time reflects India's march towards women-led development. India lodges strong protest to the US over US Navy strikes on oil ship in the Gulf, killing 3 Indian sailors. Indian Air Force AN-32 aircraft meets with an accident at Jorhat Air Force Station in Assam. And in men's cricket, toss for first ODI of 3-match series between India and Afghanistan delayed due to rain in Dharamshala. And with that, we end the midday news.
0: Namaskar. Akashvani se dopahar samachar ke saath main Jagriti Sharma. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 दिन की फ्रांस और स्लोवाकिया यात्रा पर रवाना। कहा, यात्रा से फ्रांस के साथ आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध मजबूत होंगे, स्लोवाकिया के साथ द्विपक्षीय सहयोग को नई गति मिलेगी। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के एवियन में G7 शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी की पासिंग आउट परेड में कैडेटों की सराहना की। कहा, पहली बार 9 महिला कैडेट का शामिल होना महिला नेतृत्व वाले विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम। भारत ने खाड़ी क्षेत्र में तेल पोत पर अमरीकी नौसेना के हमले का कड़ा विरोध किया। हमले में 3 भारतीय नाविकों की मौत हुई थी। वायुसेना का AN-32 विमान असम के जोरहाट स्टेशन पर दुर्घटनाग्रस्त। और धर्मशाला में भारत अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला के पहले मैच में बारिश के कारण देरी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिन की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। श्री मोदी ने प्रस्थान वक्तव्य में कहा कि फ्रांस भारत के लिए रणनीतिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। श्री मोदी ने कहा कि इस यात्रा से भारत और फ्रांस के बीच आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध और प्रगाढ़ होंगे।

0: मिसाइल हमले रोकने में सक्षम विशिष्ट देशों के समूह में शामिल हो गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज जनसांख्यिकीय बदलावों को लेकर एक बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने आयोग को सीमावर्ती जिलों में जनसंख्या संरचना में हो रहे बदलावों का अध्ययन करने के निर्देश दिए। बैठक में गृह मंत्री ने आयोग से सीमावर्ती क्षेत्रों, महानगरों और औद्योगिक श्री मोदी कल स्लोवाकिया के लिए रवाना होंगे। एक रिपोर्ट।
1: ब्रातिस्लावा में प्रधानमंत्री स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी और प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको से मुलाकात करेंगे। उन्होंने कहा कि यह यात्रा यूरोपियन यूनियन के साथ भारत की रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करेगी, जिसमें स्लोवाकिया एक महत्वपूर्ण और मूल्यवान भागीदार है। स्लोवाकिया यात्रा के बाद प्रधानमंत्री फ्रांस के एवियन जाएंगे, जहां वे 16 और 17 जून को आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि G7 में भारत की मौजूदगी दुनिया में भारत की बढ़ती प्रतिष्ठा और उसके प्रति देशों के विश्वास को दर्शाती है। उन्होंने बताया कि यह लगातार 8वां G7 शिखर सम्मेलन है, जिसमें भारत को आमंत्रित किया गया है। अपनी यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 जून को पेरिस में आयोजित वाइवाटेक 2026 में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ शामिल होंगे। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी।
2: विरोध जताते हुए अमेरिकी राजनयिक को नई दिल्ली में तलब किया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इससे पहले कहा था कि भारतीय चालक दल के सदस्यों को ले जाने वाले व्यापारिक जहाजों पर हमले तुरंत बंद होने चाहिए। समाचार कक्ष से मेघना शर्मा।
0: प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पीके मिश्रा ने कहा है कि भारत के शहरों को आर्थिक रूप से मजबूत, पर्यावरण के अनुकूल, सामाजिक रूप से समावेशी, तकनीक आधारित और चुनौतियों का सामना करने में सक्षम होना चाहिए। नई दिल्ली में राष्ट्रीय शहरी मामलों के संस्थान के स्वर्ण जयंती समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि संस्थान ने देश में शहरी विकास को दिशा देने और शहरों की क्षमताओं को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। खुदरा मुद्रास्फीति इस वर्ष मई में बढ़कर 3.93% हो गई है। लगातार पांचवें महीने महंगाई में वृद्धि दर्ज हुई है। अप्रैल में ये 3.48% थी। ग्रामीण क्षेत्रों में मुद्रास्फीति बढ़कर 4.25% हो गई, जबकि शहरी क्षेत्रों में ये 3.53% रही। भारतीय वायुसेना का AN-32 विमान आज सुबह असम में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। ये हादसा जोरहाट वायुसेना स्टेशन पर हुआ। विमान क्रैश होने के बाद आग लग गई। वायुसेना ने कहा है कि दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के लिए जांच समिति गठित की जा रही है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। ईरान ने कहा है कि वह अमेरिका के साथ जारी संघर्ष को समाप्त करने के लिए अंतिम शांति समझौते पर तब तक हस्ताक्षर नहीं करेगा जब तक उसकी प्रमुख शर्तें पूरी नहीं हो जाती। हालांकि ऐसी खबरें हैं कि दोनों पक्ष शुरुआती समझौते के करीब हैं।
3: ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग्ची ने कहा है कि समझौता ज्ञापन का मसौदा तैयार कर लिया गया है और आने वाले दिनों में इस पर डिजिटल रूप से हस्ताक्षर किए जा सकते हैं। हालांकि ईरान ने कहा है कि वो तब तक स्थायी समझौता नहीं करेगा जब तक अमेरिका अपनी नौसैनिक नाकाबंदी नहीं हटाता और अरबों डॉलर की फ्रीज की गई परिसंपत्तियों के नुकसान की भरपाई नहीं करता। इस बीच पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में चल रही गुप्त वार्ता में अमरीकी और पाकिस्तानी मध्यस्थों ने पुष्टि है कि दोनों पक्ष शांति समझौते के मसौदे पर सहमत हो गए हैं। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: इस बीच ट्रंप प्रशासन ने कहा है कि वह ईरान के नागरिक परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम को मंजूरी देने के लिए तैयार है, लेकिन इसके लिए तेहरान को परमाणु हथियार निर्माण से जुड़ी बुनियादी ढांचे को खत्म करना होगा। ये स्पष्टीकरण तब आया है जब ट्रंप प्रशासन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कल प्रस्तावित अमेरिका ईरान परमाणु समझौते का विवरण प्रस्तुत किया। फिनलैंड की विदेश मंत्री एलिना वाल्टुनेन ने रूस से तेल खरीदने के भारत के निर्णय का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि भारत ने पश्चिमी देशों की निर्धारित मूल्य सीमा का पालन किया है। फिनलैंड में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर के साथ बैठक में उन्होंने कहा कि ये मूल्य सीमा वैश्विक तेल आपूर्ति को बनाए रखने और रूस के मुनाफे को सीमित करने के लिए बनाई गई थी। नीति आयोग और जर्मनी के प्रतिनिधिमंडल के बीच नई दिल्ली में भारत जर्मनी विकास सहयोग को मजबूत करने के लिए एक बैठक हुई। बैठक में स्वच्छ ऊर्जा, पर्यावरण संरक्षण, टिकाऊ विकास, कृषि सुधार, जल प्रबंधन और हरित अर्थव्यवस्था में छोटे और मध्यम उद्यमों की भागीदारी जैसे मुद्दों पर चर्चा की गई। दोनों पक्षों ने जलवायु परिवर्तन से निपटने और

0: पीवी सिंधु को हार का सामना करना पड़ा। सिडनी में जापान की अकाने यामागुची ने सिंधु को पराजित किया। इसके साथ ही प्रतियोगिता में भारत का सफर समाप्त हो गया है। भारत और अफगानिस्तान के बीच तीन मैचों की एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में बारिश के कारण देरी हो रही है। टॉस का समय दोपहर 1 बजे निर्धारित था, लेकिन तेज बारिश के कारण टॉस अभी नहीं हो पाया है। ये मैच हिमाचल के धर्मशाला में खेला जाना है। मौसम विभाग ने आज असम और मेघालय में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। अगले 2-3 दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के मध्य अरब सागर, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, झारखंड और बिहार के कुछ और हिस्सों में आगे बढ़ने की संभावना है। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में भी आज रात गरज और तेज हवाओं के साथ वर्षा की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 दिन की फ्रांस और स्लोवाकिया यात्रा पर रवाना। कहा, यात्रा से फ्रांस के साथ आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध मजबूत होंगे। स्लोवाकिया के साथ द्विपक्षीय सहयोग को नई गति मिलेगी। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के एवियन में G7 शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी की पासिंग आउट परेड में कैडेटों की सराहना की। कहा, पहली बार 9 महिला कैडेट का शामिल होना महिला नेतृत्व वाले विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम। और धर्मशाला में भारत अफगानिस्तान के बीच तीन मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला के पहले मैच में बारिश के कारण देरी। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: हम विविध भारती से बोल रहे हैं, आइए सुने सदाबहार नगमे।

विविध भारती से आप सुन रही हैं सदाबहार नगमे। मुकेश की आवाज में आपने सुना फिल्म आशिक का गाना और अब आरजू फिल्म का गीत लता मंगेशकर की आवाज़।

0: लता मंगेशकर की आवाज में आरजू फिल्म का गीत आपने सुना, हसरत जयपुरी के बोल थे, संगीत शंकर जयकिशन का था।
1: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
2: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
1: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।

0: जरूरी बातें।
1: एक व्यक्ति या परिवार की चिट्ठियाँ एक महीने में एक बार ही शामिल की जाएंगी।
0: एक चिट्ठी में केवल अपने परिवार के नाम लिखें, दूसरे शहर के, दूसरे व्यक्तियों के, अपने दोस्तों के नाम नहीं लिखें, इन्हें शामिल नहीं किया जाएगा।
1: हम अपने हर श्रोता की चिट्ठियों को शामिल करने की पूरी कोशिश करेंगे, पर इसमें समय लग सकता है, कृपया धैर्य बनाए रखें।
2: और हाँ, हस्तलिखित चिट्ठियों को प्राथमिकता दी जाएगी, कृपया सील ठप्पे वाले और छपे हुए पोस्टकार्ड ना भेजें, अंतरदेशीय नहीं, केवल पोस्टकार्ड भेजें। और ये चिट्ठियां आपको भेजनी कहाँ है?
0: कार्यक्रम मन चाहेगी,
1: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
2: पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091।
3: बहुत बहुत स्वागत मन चाहिए गीत कार्यक्रम में। आज का पहला गाना आप सभी की फरमाइश पर है। ये हमारे श्रोता हैं राजा जी नगर बेंगलोर से एनआर प्रसाद, अखिला और सुनील प्रसाद, इसके अलावा टैगोर गार्डन नई दिल्ली से रविंद्र सिंह, इंद्रजीत और स्वीटी छाबड़ा की चिट्ठी हमें प्राप्त हुई है, पोस्टकार्ड है। शुगर फैक्ट्री गेवराई से दिनकर सालवे, गंगा सालवे और श्रेया सालवे की फरमाइश है। और इसके अलावा ये जो गाना है ये हम सुनवा रहे हैं छत्तीसगढ़ से पोषण बंदोर, चंद्र किरण, प्रीति और छाया बंदोर की फरमाइश पर, और गौतम नगर नांदेड़ से प्रभाकर जोंधले और आरती जोंधले की फरमाइश है। आप सभी की फरमाइश पर मनचाही गीत का ये पहला गाना। सुलक्षणा पंडित और भूपिंदर की आवाजें, गुलजार की बोल, कनी रॉय का संगीत, फिल्म का नाम है गृह प्रवेश।

0: आइए सुने मन चाहे गीत। मन चाहे गीत
1: मन चाहे गीत
2: मन चाहे गीत।
0: मन चाहे गीत कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत।
3: कार्यक्रम शुरू करने से पहले कुछ

0: क्या किया? पास से शुरू करना था ना, और तुमने कहाँ से किया? नी से?
1: अच्छा बाबा लो, पास से शुरू करती हूँ।

और अब मनचाहे गीत कार्यक्रम में हम सुनवा रहे हैं कोटवा नारायणपुर से ओम प्रकाश राय, उषा राय, अमित कुमार राय और हैप्पी राय की फरमाइश। इसी गाने के लिए ऑक्सीजन पार्क राहुल नगर अमरावती से सिद्धार्थ गुंडाने, अर्चना गुंडाने, प्रणय प्रसिद्धि और प्रतिभा ताई गुंडाने की फरमाइश है। खांजीपीर उदयपुर से जब्बार मोहम्मद, अशरफ नजीब, गोपाल और रमेश नाचानी, रुद्री जिला धमतरी से चंद्रकांत सीमा साहू, सूर्यकांत राकेश साहू और शुभम सावित्री साहू और दतरेंगी भाटापारा से इसकी फरमाइश की है हीरामणि वर्मा ने। दूर हस्ते फिल्म का गाना

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम, जिन्हें हम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से रिले कर रहे हैं। FM 103.2 MHz पर आकाशवाणी झालावाड़ का ये चंद्रभागा चैनल है। अब सुनिए पीपुल्स पद्म आकाशवाणी, जिसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं।

0: know, God's words told, whatever it is, we have that sort of a death. So that is a palliative care. I'm so glad that therefore now from the newborn antenatal to the death, we do the whole life cycle in.
1: All I can say is wish you all the very best and we are so proud of you.
2: You are listening to an exclusive interview with Dr. Armida Fernandez, a pediatric.
3: आप सुन रहे हैं एफ एम 103.2 में पर आकाशवाणी झालावाड़ का चंद्रभागा चैनल। आइए वापस चलें विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रमों की ओर जिन्हें हम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से रिले कर रहे हैं।
4: मध्य प्रदेश से राम सखी परमानंद सौरभ गौरव एलपी रोहित लल्लू राम पूरण रोहित छोटू डूडनुन और इनका पूरा परिवार और इसके अलावा भोपाल से रविकांत गुप्ता किरण गुप्ता आशीष और सुप्रिया। आप सभी की फरमाइश पर खुशबू फिल्म का ये गाना।

0: ये था आज का मनचाही गीत कार्यक्रम। इस कार्यक्रम का सफर आपने अपने दोस्त यूनुस खान के संग तय किया।
1: मनचाही गीत
2: मनचाही
3: आप सुन रहे हैं विविध भारती। नाट्य तरंग आज के इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं डॉक्टर शंकर शेष के लिखे नाटक अभिशप्त गांधार का पहला भाग। इसका निर्देशन किया सुदर्शन कुमार ने। तो आइए सुनते हैं नाटक अभिशप्त गांधार पहला भाग।

0: क्या मेरी तरह किसी वधु की यात्रा हुई है अब तक? विवाह तो पिता के घर होता है, उसके बाद वधु अपने पति के रथ पर आरूढ़ होती है, उसके बिल्कुल निकट।
1: राजकुमारी,
0: हाँ, मैं पिछले कुछ वर्षों से एक स्वप्न देखा करती थी। एक दिन वो आएगा, मेरे स्वप्नों का राजकुमार। सुनहरा रथ होगा उसका और उसमें जुते होंगे हंसों की तरह उज्जवल, विद्युत की भांति गतिमान धवल अश्व। यदि रथ पर वो होता तो मेरी ये यात्रा क्या इतनी निर्जीव होती? न जाने क्यों कभी कभी मेरे मन में भय की आंधी उठती है, कहीं यह यात्रा मेरे स्वप्नों की शव यात्रा ना।
1: राजकुमारी, आपके मुंह से ऐसी अशुभ बात।
2: सुनो, हम गांधार राज्य की सीमा पर पहुंच गए हैं। हमारा दल आज रात्रि यहीं विश्राम करेगा। कल सूर्योदय से पूर्व ही हमारी हस्तिनापुर की यात्रा प्रारंभ होगी। राजपुत्र शकुनी की आज्ञा का पालन हो।

0: राजकुमारी, आप अभी तक सोई नहीं?
1: प्रयत्न करने के बाद भी नींद नहीं आ रही।
0: आप अकारण ही बहुत सोचती हैं। आपकी शंकाएं निर्मूल हैं, आपका भय अकारण है।
1: तो मेरे लिए स्वयंवर का आयोजन क्यों नहीं हुआ? मुझे अपने अधिकार से वंचित क्यों रखा गया?
0: स्वयंवर होता भी तो क्या आप दूसरा निर्णय ले सकती थी? हस्तिनापुर के राजकुमार धृतराष्ट्र को छोड़कर क्या आपकी जयमाला दूसरे के गले में पड़ सकती थी? इसे अपना सौभाग्य समझिए कि स्वयं महाराज भीष्म आपके लिए प्रस्ताव लेकर आए।
1: भीष्म भीष्म भीष्म, ये नाम बार बार सुनकर मुझे क्रोध आने लगा है। हर बात में भीष्म, जैसे वो विधाता हो, नियामक हो।
0: पूरा जीवन जिसने त्याग किया हो, अपने सुख का सर्वस्व देकर जिसने हस्तिनापुर की शक्ति को अनुप्राणित किया हो, उस भीष्म का नाम तो आएगा ही।
1: मेरा मन तो दूसरी ही बात सोचता है।
0: अब सोचना बंद करें राजकुमारी, अपनी मनस्थिति को भावी जीवन के लिए ढालने का प्रयत्न करें।
1: लाख प्रयत्न करती हूँ किंतु उस विचार से छुटकारा नहीं मिलता। मुझे लगता है मेरे पिता ने मुझे बेच दिया।
0: राजकुमारी,
1: भीष्म की शक्ति के सामने अपना शीश झुका दिया है।
0: फिर वही
1: अपनी राजनीतिक सुरक्षा के लिए मुझे बलि बनाया जा रहा है। ये कार्य व्यापार ऊपर से जितना सीधा सरल दिखाई देता है उतना है नहीं।
0: जब आपने पहले से ही धारणाएं बना ली हैं, तो मैं क्या कह सकती हूँ। लेकिन राजकुमारी, जब आप हस्तिनापुर पहुंचेंगी तो आपका भव्य स्वागत होगा, और जब आप वहां का वैभव देखेंगी तब गांधार को सदैव के लिए भूल जाएंगी, और तो और मुझे भी भूल जाएंगी।
1: ईश्वर करे तेरी ही वाणी सच निकले।

0: भीष्म, स्वयं आपके स्वागत के लिए खड़े हैं। हस्तिनापुर का प्रत्येक महत्वपूर्ण व्यक्ति आपकी अगवानी करने खड़ा है राजकुमारी।
1: क्या राजकुमार धृतराष्ट्र भी?
0: वो अभी कैसे आएंगे, उनसे तो विवाह मंडप में ही भेंट होगी। इतनी भी अधीरता अच्छी नहीं है राजकुमारी। देखिए, महाराज भीष्म रथ की ओर बढ़ रहे हैं, उन्हें आगे बढ़कर प्रणाम कीजिए।
2: कुरुवंश के महापराक्रमी तपस्वी महापुरुष को ये गांधार कन्या प्रणाम करती है।
3: आयुष्मती भव, कहो पुत्री, यात्रा कैसी रही? कोई कष्ट तो नहीं हुआ?
2: कुल देवता की कृपा और आपके आशीर्वाद से यात्रा निर्विघ्न संपन्न हुई महाराज।
3: पुत्री गांधारी, आज तुम्हारे आगमन के साथ ही मैं एक बहुत बड़े उत्तरदायित्व से मुक्त हुआ। मुझे पूरा विश्वास है राजकुमार धृतराष्ट्र के व्यक्तित्व के अधूरेपन को तुम भर दोगी। तुम्हारे आगमन के साथ ही हस्तिनापुर के जीवन में सुख के नए अध्याय का प्रारंभ होगा।
2: मैं आपकी अपेक्षाओं के अनुरूप उतरने का पूरा प्रयत्न करूंगी महाराज।
3: साधु, मैंने तुम्हारी और राजकुमार शकुनी के ठहरने की व्यवस्था एक विशेष भवन में कराई है, चलकर विश्राम करो।
2: जो आज्ञा।

0: राजकुमारी, मैं कहती थी ना, देखिए पूरा हस्तिनापुर उमड़ रहा है। मार्ग के दोनों ओर सहस्त्रों व्यक्ति आपके स्वागत में खड़े हैं। आपके आगमन से हस्तिनापुर में कितना उत्साह है। वो देखिए, आपके मार्ग पर फूल बिखरे हुए हैं।
1: सचमुच हस्तिनापुर अद्भुत नगर है। इतने ऊंचे ऊंचे भवन, इतने सुंदर उद्यान, इतना धन धान, जितना सुना था उससे कहीं अधिक। वो देखो, वो कौन भव्य राजपुरुष खड़ा है?
0: वो ही तो है भीष्म पितामह, कुरुवंश की सत्ता के केंद्र बिंदु, सत्य जिनका व्यक्तित्व है, त्याग जिनका श्वास है, तपस्या जिनकी देह है, ब्रह्मचर्य का तेज जिनकी आत्मा है,

0: तो कुछ बोलती क्यों नहीं? शकुनी कब गांधा लौट रहा है? तू बोलती क्यों नहीं?
1: राजकुमारी, अब राजकुमार शकुनी गांधार नहीं लौटेंगे।
0: क्यों?
1: वे अब स्थायी रूप से यहीं रहेंगे। भीष्म पितामह ने उनके लिए अलग भवन की व्यवस्था कर दी है।
0: लेकिन शकुनी यहाँ क्यों रहना चाहता है? अपनी बहन के ससुराल में आश्रय लेना क्या उसके लिए सम्मानजनक होगा? क्या यहाँ के वैभव ने उसे भी मोल ले लिया? तू चुप क्यों है? बोलते क्यों नहीं?
1: राजकुमार शकुनी आपके हित में यहाँ रहना चाहते हैं।
0: मेरे हित में? क्या मैं अपंग हूँ? क्या मुझ में विचार शक्ति नहीं है?
1: अब मुझसे न पूछे तो अच्छा है। सत्य को कह पाने का साहस मुझ में नहीं है। संभवतः सत्य को देख पाने का साहस आप भी न बटोर सके।
0: ऐसा क्या हो गया? मैं नहीं चाहती कि शकुनी यहाँ रहे। यहाँ कितना भी वैभव क्यों ना हो, किंतु उसका यहाँ रहना बहुत अपमानजनक है। मैं चलकर उसे समझाती हूँ।
1: अब बहुत देर हो गई है राजकुमारी। राजकुमार शकुनी का यहाँ रहना सचमुच आपके हित में है। मैं सोच भी नहीं सकती थी इतना बड़ा षड्यंत्र आपके विरुद्ध रचा जाएगा। उस षड्यंत्र में भीष्म पितामह जैसे तपस्वी व्यक्ति और आपके पिता जैसे तेजस्वी व्यक्ति सम्मिलित होंगे।
0: षड्यंत्र? कैसा षड्यंत्र?
1: प्रवंचना हुई है राजकुमारी। जिसे हम स्वर्ग समझ रहे थे वो और कुछ नहीं, एक चिरंतन अंधकारमय पथ की अनंत यात्रा।

0: नहीं आर्य श्रेष्ठ, ये संभव नहीं। ये मेरी प्रतिज्ञा है।
1: प्रतिज्ञा? कैसी प्रतिज्ञा?
0: महाराज, मेरे पति दृष्टिहीन है। उन्होंने संसार का दृश्य सुख एक क्षण के लिए भी नहीं भोगा है। उनके भाग्य में अनंत अंधकार है। उनके दुख के साथ समरस होने के लिए क्या ये आवश्यक नहीं कि मैं भी अंधत्व को अंगीकार कर लूं?
1: किंतु तुमने धृतराष्ट्र को देखा कहां? कल विवाह के समय उसे एक बार देख तो लो।
0: क्या लाभ? क्या वे मुझे देख पाएंगे? जब वे मुझे बिना देखे स्वीकार कर सकते हैं, तो क्या मैं उन्हें बिना देखे स्वीकार नहीं कर सकती? उन्हें देखकर संभव है मेरे मन में मोह जाग जाए, संभव है मेरी प्रतिज्ञा डगमगाने लगे।
1: तुम अपनी प्रतिज्ञा का अर्थ समझती भी हो?
0: धृष्टता के लिए क्षमा करें देव, किंतु आपसे एक प्रश्न पूछूं?
1: पूछो।
0: आपने कभी अपनी प्रतिज्ञा का अर्थ समझा?
1: गांधारी।
0: या आपने अर्थ समझकर ही प्रतिज्ञा की थी? हाँ आर्य श्रेष्ठ, पूरा जीवन एकाकी बिताने की भयावह प्रतिज्ञा क्यों की आपने? केवल पिता की इच्छा पूरी करने के लिए ही ना, केवल एक आदर्श स्थापित करने के लिए। फिर मुझे क्यों रोकते हैं?
1: विवाह के पश्चात तुम्हारा पूरा व्यक्तित्व ही सापेक्ष हो जाएगा। तुम्हारे निर्णयों के सुख दुख धृतराष्ट्र को भी भोगने पड़ेंगे। मैं फिर कहता हूं, मेरी और तुम्हारी प्रतिज्ञा के आधार ही अलग है। हट, छोड़ दो।
0: अब संभव नहीं है आर्य श्रेष्ठ। राजपुत्र के दृष्टिहीन होने की जानकारी यदि मुझे गांधार में ही मिल गई होती, तो मैं वहीं से आंखों पर पट्टी बांधकर चलती। किंतु मेरे साथ प्रवंचना की गई है।
1: प्रवंचना का विचार मेरे मन में कभी नहीं था गांधारी, किंतु जो कुछ हुआ उसके लिए मैं लज्जित हूं।
0: कुरुवंश में ये पहली घटना नहीं है आर्य श्रेष्ठ। आप इसी प्रकार अंबा, अंबिका और अंबालिका को भी उठा लाए थे। उन भोली कन्याओं से आपने ही स्वयंवर का अधिकार छीना था। अंबा का सारा जीवन इसी दुख की आग में चलता रहा।
1: उस घटना का स्मरण न दिलाओ पुत्री।
0: क्यों ना दिलाऊं? आज जन्म ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा करने के बाद भी आप ऐसे राजपुत्रों के विवाह में रुचि लेते रहे जो स्वयंवर में वरमाला के अधिकारी नहीं हो सकते थे।
1: तुम नहीं जानती गांधारी, मैंने विवाह नहीं किया, किंतु अपने पिता का वंश दीप प्रज्वलित रखने के लिए मैं वचनबद्ध हूँ।
0: और आपकी वचनबद्धता की वेदी पर मेरी बलि दी जा रही है। आर्य श्रेष्ठ, मैं अंबा नहीं बन सकती, किंतु गांधारी तो बनी रह सकती हूँ। मेरी आंखों पर बंधी यह पट्टी राजनीति, शक्ति और सत्ता द्वारा स्त्री की स्वाधीनता पर किए गए आक्रमण का एक ऐतिहासिक स्मृति चिन्ह बनकर रहेगी।
1: गांधारी, अपने निःस्वार्थ के लिए मैंने कभी कुछ नहीं किया। फिर भी यदि तुम्हारे प्रति मुझसे अपराध हुआ है तो मुझे क्षमा करो।
0: मैं क्षमा करने वाली कौन होती हूँ? और अपराध करने के बाद क्षमा मांगने के शिष्टाचार में मेरा विश्वास भी नहीं है। इस प्रवंचना ने संसार के प्रति मेरा विश्वास ही छीन लिया है। अब इस संसार को खुली आंखों से देखने की न इच्छा है न साहस। आर्य श्रेष्ठ, विवाह की तैयारी कीजिए।

0: फिर प्रयत्न करती हूँ।
1: प्रयत्न? तुम्हें भी प्रयत्न करना पड़ता है?
0: मेरे लिए ये बहुत नया नया है महाराज, किंतु कुछ दिनों में सब ठीक हो जाएगा।
1: तो क्या तुम भी? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। पिताग्रज भीष्म ऐसा नहीं कर सकते। माता सत्यवती झूठ तो नहीं कह सकती। उन्होंने तुम्हारी आंखों की उपमा कमल, हरिण, भ्रमर न जाने किस किस से दी थी।
0: महाराज,
1: गांधारी, मैंने न हरण देखा है न कमल, परंतु सोचता हूं लोग जिसे सुंदर कहते हैं वैसी तो आंखें अवश्य होंगी तुम्हारी, किंतु तुम भी?
0: क्या माता सत्यवती और भीष्म पितामह ने आपको कुछ नहीं बताया?
1: क्या?
0: महाराज, मुझे क्षमा करें, मुझे स्वयं सहारे की आवश्यकता है।
1: क्या तुम भी ज्योतिहीन हो?
0: नहीं, नहीं, ऐसी बात नहीं है महाराज, मैंने स्वयं अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली है।
1: क्या?
0: मेरा पातिव्रत यही मांग करता है, यदि आप संसार को नहीं देख सकते तो मुझे भी कोई अधिकार नहीं है, मैंने अंधत्व स्वयं धारण किया है।
1: और तुम इसे पातिव्रत कहती हो? ये तुमने क्या किया गांधारी? ये किसने कह दिया तुमसे कि इससे मैं प्रसन्नता का अनुभव करूंगा?
0: तो क्या आप इस प्रतिज्ञा से प्रसन्न नहीं हैं?
1: मैं अंधत्व का दुख जानता हूं गांधारी। मैं तो सोचता था तुम्हारी आंखों से संसार को देखूंगा, तुम मेरा अधूरापन किसी सीमा तक पूरा कर दोगी, और तुमने स्वयं अंधत्व स्वीकार कर लिया, यानी अब हमारी गृहस्थी में केवल अपूर्णता, केवल दृष्टिहीनता।
0: नहीं महाराज, मैं सोचती थी कि
1: अब भी समय है गांधारी, तोड़ दो अपनी प्रतिज्ञा। देखो, मैं तुम्हारी दृष्टि का सहारा लेकर जीना चाहता हूं।
0: किंतु मैं तो प्रतिज्ञा कर चुकी
1: हूं। गांधारी, देख लेना, तुम्हारी ये प्रतिज्ञा न तुम्हें सुखी बना पाएगी, न मुझे और न कुरुवंश को। ये अंधत्व हमें बहुत महंगा पड़ेगा। ये सत्य सहनीय है, असहनीय है ये सत्य, असहनीय है ये सत्य।

0: कौन?
1: मैं धृतराष्ट्र।
0: ओह, आप विवाह के बाद हमारी पहली रात्रि है, आइए आइए ना।
1: मुझे तनिक सहारा दो गंधारी, न जाने क्यों इन लोगों ने मेरा कक्ष बदल दिया। जानते तो हैं स्थान बदल जाने से मुझे कितनी कठिनाई होती है। अपना हाथ मुझे दो गंधारी।
0: किंतु महाराज, मैं मेरे लिए भी तो
1: क्या?
0: अच्छा, आप वहीं रुकिए, मैं आ रही हूँ।
1: क्या हुआ, गिर पड़ी?
0: लगता है किसी पात्र से टकरा गई,

0: महारानी की जय हो। देवी एक समाचार है।
1: क्या?
0: महारानी कुंती को पुत्र लाभ हुआ है।
2: पुत्र लाभ?
0: हाँ महारानी,
2: बहुत शुभ समाचार है। कुरुवंश की नई पीढ़ी का पहला प्रतिनिधि जन्मा है। महाराज ने महोत्सव के आयोजन की घोषणा कर दी ना?
0: आश्चर्य है महारानी।
2: क्यों, इसमें आश्चर्य की क्या बात? क्या ये स्वाभाविक नहीं?
0: आप नहीं समझेंगी महारानी, कभी नहीं।
2: क्या?
0: महारानी कुंती का पुत्र ही अब हस्तिनापुर का।
2: ओह, पगली कहेंगी। क्या तू जानती नहीं कि महाराज धृतराष्ट्र ज्येष्ठ है? वस्तुतः वे ही महाराज हैं, इसलिए ये निर्विवाद है कि नियमानुसार उनका ही पुत्र राज्य का अधिकारी होगा। महाराज पांडु तो शासन संचालन में महाराज के मात्र सहायक हैं। तेरा भ्रम निरर्थक है।
3: कांधारी,
2: महाराज आ रहे हैं, तू जा।
0: जो आज्ञा महारानी।
3: सुना तुमने कांधारी, महर्षि व्यास का मंत्र सिद्ध हो गया, कुंती ने पुत्र को जन्म दिया।
2: हाँ महाराज, सुना, जानकर सुख भी मिला। महाराज पांडु की स्वीकृति लेकर महारानी कुंती ने धर्मराज का जो आवाहन किया था वो फलीभूत।
3: हाँ गांधारी, मैंने समस्त हस्तिनापुरी को सुसज्जित करने का आदेश दे दिया है। निरंतर 3 दिन तक भव्य आयोजन होगा। क्यों, उचित है ना?
2: सर्वथा उचित है महाराज। वंश वृद्धि का समाचार भला किसे सुखदायक नहीं लगता। किंतु क्या कुंती पुत्र ही अब राज्य का उत्तराधिकारी भी होगा?
3: उत्तराधिकारी? इस विषय पर तो हमने सोचा नहीं थी

0: हरी।
1: महाराज, ज्येष्ठ तो आप हैं, राजा तो आपका ही पुत्र होना चाहिए।
0: होना चाहिए गंधारी, ये ठीक है, परंतु परंतु मेरी असमर्थता के कारण राज्य का सारा कार्य संचालन तो पांडु ने ही किया है, क्या उसके पुत्र का कोई अधिकार नहीं होगा?
1: महाराज, कहीं आपके हृदय की उदारता आपके पुत्र के जीवन के लिए अभिशाप न बन जाए?
0: मैं दृष्टिहीन हूँ देवी, यदि पिताग्रज भीष्म चाहते और पांडु हट करते तो क्या मुझे शासनाधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता था? परंतु उन दोनों ने ऐसा नहीं किया। मैं इतना कृतज्ञ तो नहीं कि उनके उपकार भूलकर उनकी संतान को उसके अधिकार से वंचित कर दूं?
1: अर्थात हस्तिनापुर का भावी शासन?
0: नहीं जानता देवी, अन्य विवादों की भांति इसका निर्णय भी महाराज भीष्म करेंगे।
1: किंतु महाराज, ये तो अनर्थ होगा।
0: धैर्य रखो देवी गंधारी, कौन जानता है हमारे वंशजों के लिए नियति के गर्भ में क्या छिपा है। सुनो, गर्भधारण तो महारानी कुंती और तुमने साथ ही किया था, नियति तुम्हारे पक्ष में भी हो सकती थी, तुम्हारी कोख से भी हस्तिनापुर का उत्तराधिकारी जन्म सकता था, किंतु ऐसा नहीं हुआ।
1: महाराज,
2: महाराज धृतराष्ट्र की जय हो।
0: कहो सूत।
2: महाराज भीष्म विशेष मंत्रणा के लिए आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं।
0: अब हमें अनुमति दो देवी गंधारी, ईश्वर कल्याण करे।
1: मेरी कोख से भी तो

0: महारानी, एक बार, केवल एक बार।
1: नहीं,
0: देखिए तो कितना तेजस्वी है, कितना चौड़ा माथा, देह की स्वर्ण कांति, सुनहरे केश,
1: आंखें कैसी हैं?
0: बहुत मोहक।
1: काश मैं देख सकती। किस पर किया है?
0: किस पर? दोनों पर। आप दोनों की आकृतियों में जो सुंदरतम है वही इसने पाया है। महारानी, महारानी, क्या आप इसे देखेंगी नहीं? एक बार तो देख लीजिए।
1: नहीं, मैं इसे नहीं देख पाऊंगी।
0: एक क्षण के लिए देख लीजिए, विश्वास रखिए, मैं किसी से नहीं कहूंगी।
1: नहीं, एक बार देख लेने के बाद मेरा मोह पड़ जाएगा, इसके बाद आंखों पर पट्टी बांधने की इच्छा ही नहीं होगी। रहने दे।
0: कैसा भाग्य लेकर जन्मा है ये बालक। माँ देखना नहीं चाहती, पिता देख नहीं सकता, ना जाने संसार को ये किस दृष्टि से देखेगा।

0: महाराज द्रुपद के यहाँ से अभी तक कोई समाचार नहीं आया।
1: क्या आपको विश्वास है कि द्रौपदी दुर्योधन का वरण करेगी?
0: क्यों नहीं, दुर्योधन से कौन स्पर्धा कर सकता है।
1: हाँ, कुंती के पुत्र अब कहाँ हैं? उन्हें तो वर्णावत का लाक्षाग्रह खा गया।
0: बहुत दुखद प्रसंग है ये गंधारी। कई बार हृदय में आशंका उठती है कहीं इसमें दुर्योधन का कोई षड्यंत्र तो नहीं।
1: इस आशंका का कारण?
0: कोई विशेष कारण नहीं, दुर्योधन पांडवों के प्रति सदैव ईर्ष्यालु रहा है। फिर शकुनी की मंत्रणा और साहचर्य सुखद तो हो नहीं सकते।
1: महाराज, पांडवों के प्रति आपका अतिरिक्त मोह ही दुर्योधन की ईर्ष्या का कारण रहा है।
0: ये क्या कह रही हो गंधर्व?
1: हाँ महाराज, बाल्यकाल से ही भीम और अर्जुन मेरे पुत्रों को सताते रहे हैं, पर आपने कभी उन्हें प्रताड़ित नहीं किया। यदि दुर्योधन भीम पर अंकुश न रखता, समय समय पर उसे पराजित न करता, तो आज मेरे पुत्रों में से अधिकांश तो जीवित ही ना रहते।
0: जानता हूँ गंधारी, सोचता था पांडु नहीं रहे तो पांडवों की चिंता का भार भी मुझ पर ही आ पड़ा है।

0: हस्तिनापुरी को सज्जित किया जाए, मंगलोत्सव का आयोजन हो, पांचाल राज की पुत्री का भव्य स्वागत किया जाए।
1: दुर्योधन असफल हुआ, पांडव जीवित है।

अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर शंकर शेष के लिखे नाटक अभिशप्त गांधार का पहला भाग। निर्देशन किया सुदर्शन कुमार ने। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र की प्रस्तुति आपने सुनी। और आपको याद दिला दें, कल के नाट्य तरंग कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे इसी नाटक का दूसरा और अंतिम भाग। आज का नाट्य तरंग कार्यक्रम समाप्त हुआ।

0: साउंड कैमरा एक्शन।
1: बॉम्बे टॉकीज में आइए आज सुनते हैं कोरियोग्राफर टेरेंस लुविस से अमरकांत दुबे के फिल्मी गपशप। आइए आज सुनते हैं इस गपशप का दूसरा भाग।
2: दोस्तों नमस्ते, स्वागत है आप सभी का बॉम्बे टॉकीज में। आज फिर एक बार डांस से जुड़े एक बेहद मकबूल फनकार हमारे बीच हैं, डांस रियलिटी शोज के जज, डांस गुरु और कोरियोग्राफर, जिनके साथ होगी फिल्मी गपशप। टेरेंस लुविस। टेरेंस जब सिर्फ 6 साल के थे तभी लहू उनके मुंह लग गया, जी हाँ, और डांस उनकी नस नस में लहू के साथ दौड़ने लगा।
3: सोया था नस नस में, अब ये जग गया, लहू मुलग गया।
2: डांस के स्टेज ने टेरेंस के अंदर वो ऊर्जा भर दी जो आज भी उन्हें हर वक्त म्यूजिक की बीट्स पर

0: मेरे डैडी तो मजदूर हैं, वो पढ़े लिखे भी नहीं।
1: तो पिताजी ने हम सभी भाई बहन को बोला था कि मैं सिर्फ 15 साल की उम्र तक पढ़ाऊंगा, उसके आगे आपको गैराज में काम करना है या नहीं पढ़ना है वो आपकी मर्जी, ओके। मेरी जिम्मेदारी है आपको पाल पोस कर 15 साल तक पढ़ा करना, उसके बाद जो करना है करो। तो मैंने देखा था कि मेरे सभी जो 7 भाई बहन थे वो सब ट्यूशन देते थे मैथ साइंस इंग्लिश, तो मैंने भी ट्यूशन दिया। 14 साल की उम्र से मैं मैथ साइंस इंग्लिश ट्यूशन देता था क्योंकि मैं पढ़ाई में भी होशियार था। हमारे परिवार में डांस एक लग्जरी है, ये अमीर लोगों के लिए शौक है, शौक के लिए कर सकते हो, करियर नहीं बना सकते इसमें।
2: इतनी कठिनाइयों के बावजूद जिंदगी के साथ लड़ाई में आप आगे बढ़ते गए, जीतते गए।
1: मैं जीता नहीं हर बार, मैं कई बार हारा।
2: आप जब कभी हारते थे तो जिंदगी से शिकायत नहीं होती थी, तो फिर क्या किया आपने?

जिंदगी ने टेरेंस को गले लगाया, टेरेंस ने जिंदगी का साथ खूब निभाया। बहुत सी बातें, बहुत से गाने, बहुत सी यादों के साथ आज टेरेंस हैं हमारे बीच।

0: मेरे डैडी तो मजदूर हैं, वो पढ़े लिखे भी नहीं।
1: तो पिताजी ने हम सभी भाई बहन को बोला था कि मैं सिर्फ 15 साल की उम्र तक पढ़ाऊंगा, उसके आगे आपको गैराज में काम करना है या नहीं पढ़ना है वो आपकी मर्जी, ओके, मेरी जिम्मेदारी है आपको पाल पोस कर 15 साल तक पढ़ा करना, उसके बाद जो करना है करो। तो मैंने देखा था कि मेरे सभी जो 7 भाई बहन थे वो सब ट्यूशन देते थे मैथ साइंस इंग्लिश, तो मैंने भी ट्यूशन दिया। 14 साल की उम्र से मैं मैथ साइंस इंग्लिश ट्यूशन देता था क्योंकि मैं पढ़ाई में भी होशियार था। हमारे परिवार में डांस एक लग्जरी है, ये अमीर लोगों के लिए शौक है, शौक के लिए कर सकते हो, करियर नहीं बना सकते इसमें।
2: इतनी कठिनाइयों के बावजूद जिंदगी के साथ लड़ाई में आप आगे बढ़ते गए, जीतते गए।
1: मैं जीता नहीं हर बार, मैं कई बार हारा।
2: आप जब कभी हारते थे तो जिंदगी से शिकायत नहीं होती थी? तो फिर क्या किया आपने?

0: जिंदगी ने टेरेंस को गले लगाया, टेरेंस ने जिंदगी का साथ खूब निभाया। बहुत सी बातें, बहुत से गाने, बहुत सी यादों के साथ आज टेरेंस हैं हमारे बीच।
1: ने बड़े नाम, बड़े फिल्म के साथ जुड़ गया हूं, तो अगर आशुतोष जी ने विश्वास किया है तो इस बच्चे में कुछ ना कुछ होगा। तो मुझे सेकंड फिल्म मिल गई जो झंकार बीट्स थी, वो भी फिट हो गई।
0: झंकार बीट अपने आप में एक अलग फिल्म थी,
1: करेक्ट,
0: जिसमें खास तौर से राहुल देव बर्मन का जिक्र था।
1: आर डी बर्मन
0: साहब का। और अगर आप देखें तो राहुल देव बर्मन के हर एक गाने में आज भी वही कशिश है,
1: करेक्ट,
0: वही ताजगी है, जबकि वो उनकी साज से निकले होंगे,
1: करेक्ट।
0: तो उन गानों पर, उस संगीत पर कुछ, उसमें कुछ नयापन लाना,
1: हाँ,
0: और फिर उस पे डांस, वो एक अलग चैलेंज नहीं था आपके लिए?
1: एब्सोल्युटली, क्योंकि धुन जो थी, जो विशाल शेखर पहली फिल्म थी उनकी, और सुजॉय घोष की भी पहली फिल्म थी वो, तो जो धुन बना रहे थे, इट वाज मतलब यू नो एक वेरिएशन था ऑफ आर डी बर्मन को लेकर और उसके संगीत को समझकर वो आज की तारीख में वैसा वाला संगीत बना रहे थे, और बहुत ही अच्छे अच्छे गाने बने उसी टेम्पलेट में, लेकिन एक नया ट्विस्ट देना था, एक नया अंदाज देना था आज की पीढ़ी जिसके साथ जो कनेक्ट कर पाए। तो वो इंस्ट्रक्शन भी सुजॉय ने दिया था कि मुझे थोड़ा पुराना वाला फ्लेवर चाहिए और थोड़ा आज का।
0: उसमें डांस में फिर क्या किया, मैं वही जानना चाहता हूँ।
1: तो डांस में इट वॉज नॉट सच अ डांस ओरिएंटेड सॉन्ग, इट वॉज मोर अबाउट, इट वॉज अ रॉक बैंड, तो वो बैंड है, फिल्म में भी वो लोग सब संगीतकार हैं, म्यूजिशियंस हैं, तो उनको नाचना नहीं था, लेकिन जिस तरीके से उनको फिल्माया गया था, एक रॉक स्टार वाली फील आनी थी। एक रॉक बैंड कैसे आते हैं, उनके बीच में कैसा छोटी छोटी अनबन होती है, और कैसे वो अलग अलग काम कर रहे हैं लेकिन रात को वो आके यू नो गाते हैं और साथ में मिलते हैं, तो वो वाली कहानी थी। तो उस किरदार के हिसाब से मैं बन गया था। आई डेंट हैव मच ऑफ डांसिंग टू डू, बट पिक्चराइजेशन हैड टू बी डन वेल। एज अ कोरियोग्राफर समटाइम्स हर गाना आपको आर्टिस्ट को नचवाना नहीं पड़ता, सिचुएशन के हिसाब से आपको वो दर्शाया जाना चाहिए ताकि वो अच्छा लगे, देखने में फील करे और वो कैरेक्टर से बाहर ना निकले। ओनली ड्रीम सीक्वेंस जब रिया सेन और शायन मुंशी, वो एक्टर भी थे, उनका एक गाना था जो शान ने गाया था, दिल ने तुमको चुन लिया है, तुम भी मुझको चुनो ना ला ला ला, देखने में फील करे और वो कैरेक्टर से बाहर ना निकले। ओनली ड्रीम सीक्वेंस जब रिया सेन और शायन मुंशी, वो एक्टर भी थे, उनका एक गाना था जो शान ने गाया था, दिल ने तुमको चुन लिया है, तुम भी मुझको चुनो ना ला ला ला ला ला ला ला ला, बहुत अच्छा प्यारा गाना था। वो गाने में ड्रीम सीक्वेंस में थोड़ा डांसिंग दिखाया गया था, बट मोस्टली इट वॉज मोर ऑफ अ फील का गाना था।

एक्चुअल फिल्म में डांस एकदम कहर वाला डांस जो किया वो तीसरी फिल्म में आया नाच, जो अभिषेक बच्चन और अंधरा माली के साथ था और जो इसके डायरेक्टर साहब थे रामगोपाल वर्मा। वो फिल्म हाथ ऐसे आई कि अंतरा माली मेरे शोज देखती थी स्टेज में। मुझे तब भी, मैं फिल्मों में काम करता था लेकिन मुझे स्टेज का बहुत बड़ा लगाव था और मुझे स्टेज पर परफॉर्म करना ज़्यादा पसंद था, तो मैं अतरंगी चीज़ें स्टेज पर ट्राई करता था, एकदम अतरंगी, जो मतलब एकदम लोग बोलते थे क्या कर रहा है तू स्टेज पर बट कुछ भी जो भी दिमाग में आया करता था, लेकिन उसका कुछ शीनो सर या पैर नहीं था, बट एक आइडिया, एक कॉन्सेप्ट, और मैं वो स्टेज पे दिखाता था। तो उसको वो स्टाइल बहुत पसंद आया अंतरा माली को, और उन्हें बोला कि मुझे आपका ये स्टाइल बहुत पसंद है और मैं ये सीखना चाहती हूँ और मैं इसको अपने फिल्म में लेके आना चाहती हूँ। और एक फिल्म लिखी है जो मैंने लिखी है और रामगोपाल वर्मा ने लिखी है, उसका फिल्म का नाम है नाच आपे, कोरियोग्राफी की लाइफ पर ये फिल्म है। चिनो सर या पैर नहीं था बट एक आइडिया, एक कॉन्सेप्ट, और मैं वो स्टेज पे दिखाता था। तो उसको वो स्टाइल बहुत पसंद आया अंतरा माली को, और उन्हें बोला कि मुझे आपका ये स्टाइल बहुत पसंद है और मैं ये सीखना चाहती हूँ और मैं इसको अपने फिल्म में लेके आना चाहती हूँ। और एक फिल्म लिखी है जो मैंने लिखी है और रामगोपाल वर्मा ने लिखी है, उसका फिल्म का नाम है नाच आपे, कोरियोग्राफी की लाइफ पर ये फिल्म है। और फिर मैंने धीरे धीरे समझा कि ये फिल्म तो मेरे ऑलमोस्ट मेरे से मिलती जुलती है, बिकॉज इट वॉज अ कोरियोग्राफर हु वॉज नॉट अ वेरी ट्रेडिशनल कोरियोग्राफर, जो हटके है, जो हटके सोचता है। तो उसने वो जो मेरा जो चाल चलन है, जिस तरीके से मैं बैठता था, वो मुझे नोटिस करने लगी अंतरा माली जी, और वो हर एक चीज़ समझने लगी कि मैं कैसे सोच रहा हूँ, कैसे बात कर रहा हूँ, कैसे डांस करता हूँ, कैसे समझाता हूँ। तो वो सब चीज़ें उसने मुझे स्टडी कर दिया और वही चीज़ वो अपने फिल्म में नाच में करवाना चाहती थी। तो जो कंटेम्प्रेरी डांस का जो मैंने तड़का दिया उस गाने में, तो क्रिटिकली मुझे बहुत सारा लोगों ने फ़ोन किया कि ये फिल्म बहुत हटके है, तुमने कुछ और ही कर दिया, कुछ अलग ही दिख रहा है, डांस नहीं पता नहीं क्या, कुछ एक अलग नजारा दिख रहा है। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा कि क्रिएटिवली मैंने कुछ अलग सोचा, मैंने बोला कि जो लोग करते हैं वो नहीं करूंगा मैं, कुछ अलग अलग अलग। तो उसके पीछे मैंने क्रिएटिवली कुछ अलग ही डांस करवाया और वो बहुत दिख कर आया और लोगों को पसंद आया। सो इन माई क्रिएटिव जर्नी आई हैव डन ओनली 10 फिल्म्स, नॉट मच, बट दिस इज वन ऑफ देम दैट काइंड ऑफ, यू नो, एक अलग, एक पहचान मुझे इस फिल्म से मिली।

0: अच्छा, अभी आपने इसके पहले ये बात कही कि अंतरा माली ने आपको एक स्टेज शो में देखा और फिर और आपने ये बताया कि स्टेज शोज में बड़े अतरंगी से डांस आप करते थे, तो गाने भी अतरंगी चुनते होंगे?
1: बहुत ही।
0: किस तरह के? क्या क्योंकि अतरंगी गानों के लिए कुछ खास नाम भी हैं हमारे, जैसे किशोर कुमार साहब हैं, अमित कुमार जी के भी गाने रहे हैं, तो आपके अतरंगी गाने किस तरह के होते थे?
1: वेल, अगर हम हिंदी गाने तो यूज नहीं करते थे, बिकॉज वी यूज्ड टू यूज यू नो नॉन कॉपीराइटेड म्यूजिक, क्योंकि हमारे पास लाइसेंस नहीं था, तो हम लोग म्यूजिक क्रिएट करते थे, लेकिन इन्फ्लुएंसेस बहुत सारे थे जो मतलब यू नो देसी फिल्मों से थे। कुछ गाने बहुत ही यू नो दिल को करीब छूने वाले, जो एकदम सोलफुल थे, जैसे ए जिंदगी गले लगा ले, और मुझे गजल्स बहुत पसंद हुआ करते थे, गजल्स जैसे कोई ये कैसे बताए कि वो तन्हा क्यों है, क्योंकि मैं स्टेज पे ना मूड लेके चलता था।
0: अच्छा अच्छा।
1: तो मेरी कहानियां होती थी, तो मुझे ऐसे वाले मूड वाले गाने बहुत पसंद हुआ करते थे, जहाँ पे एक मूड फील हो जाता है, जो बहुत ही संजीदा, जो बहुत ही जिसमें लिखावट में एक फीलिंग होती है। तो मुझे अर्थ के गाने, सदमा के गाने, या मासूम के गाने, या ऐसे फिल्मों के जहाँ पे बहुत ही मतलब बहुत खूबसूरती से लिखे हुए, जो बहुत ही यू नो सोचकर, या साहिर लुधियान के गाने, सभी मुझे पसंद थे। एक गाना था जो मैं जूझ रहा था लाइफ में, संसार से भागे फिरते हो,
0: चित्रलेखा,
1: चित्रलेखा, करेक्ट सर, मीना कुमारी। तो वो गाना मेरे लिए वॉज अ पिविटल मोमेंट, जब मैंने वो गाना सुना और जो जो उसका अर्थ था, क्योंकि मैं उसी मैं भी लाइफ में जूझ रहा था कि यू नो मटीरियलिज्म इज राइट ओके और इज इट कि सब कुछ त्याग देना, भोग में है या त्यागने में, तो क्या है। सो आई थिंक ऐसे गाने जब मैंने सुना करता था, माइंड की क्या सोच है, और उसको फिल्मों में दिखाया गया था। सो आई थिंक आई वॉज वेरी इन्फ्लुएंस्ड बाई ऑल ऑफ दीज ग्रेट आर्टिस्ट एंड ग्रेट सॉन्ग्स एंड ग्रेट लिरिसिस्ट, क्योंकि जो म्यूजिक एक तरफ, लेकिन जो अच्छा लिखते हैं उस पर भी अमल करना बहुत इंपॉर्टेंट है एज अ कोरियोग्राफर, बिकॉज उससे कोरियोग्राफी बनती है। तो ये गाने मेरे लिए दिल के बहुत करीब रहे।

0: अभी आपने जो ये बातें की, गजल की बात की, लिरिक्स की बात की, आपने बात की कि कहीं कोरियोग्राफर्स उससे बनते हैं, एक सवाल मेरे मन में उठ रहा था कि आपने कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं ली?
1: नहीं ली।
0: आपने कोरियोग्राफी की अगर बात की जाए तो फिल्मों में ऐसे कोई बहुत
1: असिस्ट भी
0: फिल्में भी नहीं की या किसी को असिस्ट भी नहीं,
1: नहीं
0: किया। बावजूद इसके आप वो जो कोरियोग्राफी के लिए जो एक खास चीज होती है जिसको क्रिएटिविटी कहते हैं, देखिए ऐसा एक डांस देख के डांस कर लेना एक अलग चीज है, लेकिन एक डांस को खुद क्रिएट करना,
1: हाँ,
0: एक लिरिक्स को डांस में कन्वर्ट करना,
1: करेक्ट,
0: वो एक अलग चीज है जो कहीं ना कहीं गॉड गिफ्ट कह सकते हैं जिसको,
1: हाँ, अंदर से आता है।
0: इसको आपने महसूस कैसे किया? आपने इसको कन्वर्ट करने का जो प्रोसीजर होता है, देखिए गॉड गिफ्ट है, लेकिन वो गिफ्ट आप बाहर कैसे निकाल कर, आपने की जो प्रोसीजर है वो कैसे सीखी, उसको कैसे समझा आपने?
1: सो कोरियोग्राफी ना दो तरीके से होती है। आप गाने को सुनते हो और गाना आप पर हावी हो जाता है और आपका शरीर उस गाने को सुनकर, उसके कानों के ध्वनि को सुनकर आपका अंग यू नो डांस करने लगता है। वो एक तरीका है, लेकिन मैं दूसरा तरीका अप्लाई करता हूँ। मैं म्यूजिक लगाता ही नहीं हूँ, मैं जो थॉट है, जो सोच है, उसको लेके चलता हूँ और मेरे असिस्टेंट को बोलता हूँ कि मुझे पता नहीं कि मैं क्या करने वाला हूँ, लेकिन मुझे गौर से देखना और याद रखना और मुझे कॉपी करते रहना, क्योंकि मुझे आपको अगर बोलोगे कि अभी वही चीज़ वापस करो तो मुझे याद नहीं रहेगा, लेकिन जो भी निकल रहा है मेरे अंदर से उस पर थोड़ा आप ध्यान देना, क्योंकि कुछ चीज़ें अच्छी होंगी कुछ चीज़ें नहीं। तब उतना ध्यान नहीं था कि कैमरा भी लगा सकते हो और आप रिकॉर्ड कर सकते हो। उस ज़माने में मैं अपने असिस्टेंट पर ज़्यादा निर्भर करता था, तो मैं स्टूडियो में जाता था और मेरे अंदर से जो भी निकल रहा है वो मैं डांस करता था विदाउट म्यूज़िक। और फिर मैं सोच रहा कि ये जो मैं कर रहा हूँ ये कौन से म्यूज़िक पे अच्छा लगेगा। फिर मैं म्यूज़िक को सुनता था, बोलता कि ये म्यूज़िक मुझे इंस्पिरेशन दे रहा है। तो इट वाज ऑलवेज हाफ हाफ। पहले मैं आगे बढ़ता था, अपना कुछ करता था ताकि वो हावी ना हो जाए मुझ पर, और फिर मैं म्यूज़िक को सुनता था और फिर उसको कंबाइन करता था। फिर लव्स कभी कभी, जो अल्फाज जो है अगर वो अच्छे हैं तो वो कभी कभी

इन्फ्लुएंस करते हैं हमारी कोरियोग्राफी में। बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक चीज ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्पेशली क्रिएटिव लोगों में, कि आप एक ही म्यूजिक को सुन के 10 चीजें कर सकते हैं, लेकिन अभी आपको डिसाइड करना है कि कौन सा सबसे बेस्ट रहेगा। इसके लिए आपको एक इंटेलिजेंस चाहिए, उसके लिए आपको एक समझ चाहिए। वो समझ होता है, इट्स कॉल्ड एन आर्टिस्टिक इंटेलिजेंस। क्योंकि आप बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप बहुत सारे

और उसके लिए चाहिए आपको कॉम्पोजिशन टेक्निक, और कोरियोग्राफी कॉम्पोजिशन इज एन आर्ट, मतलब जो गाना जो आप डांस कर रहे हैं उसके उतार चढ़ाव क्या है। अगर आपकी बॉडी झट से एक स्ट्रांग मूवमेंट दे रही है उसके बाद आप फिर से स्ट्रांग मूवमेंट मत कीजिए, एक थोड़ा सॉफ्ट मूवमेंट कीजिए ताकि वो एक लहर की तरह ऊपर नीचे चढ़े। अगर आप एक बहुत बड़ा वाला मूवमेंट कर रहे हैं उसके बाद एक छोटा वाला मूवमेंट कीजिए। अगर आप बहुत ही मतलब अगर आप एक बार मतलब 8 काउंट के लिए सामने के कैमरा के सामने करें तो कई बार यू नो थोड़ा मुड़ के आप थोड़ा डांस की ताकि वो विजुअल थोड़ा बदले।

0: यही मैं चाहता था कि हमारे जो श्रोता है वो इस बात को समझे कि एक कोरियोग्राफी होती क्या है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, आपकी फिर अगली फिल्म कौन सी रही? जैसे कि आपने बताया 10 फिल्में रही।
1: हाँ, बहुत सारी दूसरी छोटी छोटी फिल्में आई। मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था क्योंकि मुझे 2009 में ही टीवी से इनविटेशन आया ताकि मैं कोरियोग्राफर और जज बनूं, और मुझे ये जो इनविटेशन आया बहुत अच्छा लगा क्योंकि यहाँ पर मैं सिर्फ जज नहीं करने वाला था लेकिन मैं कोरियोग्राफी करने वाला था, और मुझे मौका चाहिए था कि मैं ऐसे ऐसे डांसर्स के साथ काम करूँ जो अब जीजा मेहनत करें और मुझसे कोई सवाल ना करे, और जो मैं क्रिएटिवली दिखाना चाहता हूँ वो मौका मिले। क्योंकि जब फिल्मों में जब आप काम करते हो तो
0: लिमिटेशन
1: होती है, आर्टिस्ट कितना कर सकता है, एक दो कट कट कट करके शूट करना पड़ता है। तीसरी बात ये होती है कि गाना का अगर वो किरदार ऐसा है कि वो ज्यादा नहीं नाचता तो तुम जबरदस्ती को नहीं नचवा सकते, और या सिचुएशन में आप यही कर सकते हो तो आप बहुत सारी चीजों से बंध जाते हो। टेलीविजन शो में आपको आप डांस दिखाना है, सिर्फ डांस, लेकिन कहानियां भी दिखानी है क्योंकि कहानियां के माध्यम से अगर सिर्फ डांस हो तो मजा नहीं आएगा, लेकिन अगर उसमें एक नैरेटिव हो, इसमें एक कहानी हो, इसमें एक इमोशन छुपा हो तो वो बहुत लोगों को पसंद आने लगता है। तो जब मुझे ये मौका मिला मैं बहुत खुश हो गया। बहुत कोरियोग्राफर्स ने डांस इंडिया डांस को रिजेक्ट किया था, इनफैक्ट हम पहले चॉइस नहीं थे फॉर एज कोरियोग्राफर्स, बड़े बड़े लोगों को लिया गया था पहले, नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन हमसे बहुत सीनियर जो लोग थे उनको अप्रोच किया था लेकिन उन्होंने ना कर दिया क्योंकि उनको कोरियोग्राफ करना नहीं था, क्योंकि वो फिल्मों में कोरियोग्राफ अच्छा करते हैं लेकिन स्टेज को कोरियोग्राफ करना मतलब स्टूडेंट्स को एक झटके में विदाउट कट्स, वो एक अलग ही विधि है।
0: टेरेंस, मैं उस पूरी जो टीवी की दुनिया है उसमें हम जाएंगे
1: जरूर,
0: लेकिन उससे पहले कुछ गाने भी हम सुनते चलेंगे।
1: बाहों में

0: भैया, एक बहुत ही अहम सवाल मैं आपसे करना चाहता हूँ। आपने बातचीत के दौरान कहा कि फिल्मों में जो कोरियोग्राफी होती है, जो डांस होता है, वो कट कट करके होता है।
1: करेक्ट।
0: मान लीजिए कि हम एक एक्टर को जानते हैं कि भाई इसको डांस आता नहीं, लेकिन वो बराबर 7 मिनट तक या 6 मिनट तक पर्दे पर डांस करता हुआ नजर आता है। आप थोड़ा सा समझाएंगे कि एक्चुअली जो फिल्मी कोरियोग्राफी होती है, फिल्मी डांस जब शूट होता है, तो उसका जो प्रोसीजर होता है, उसकी जो टेक्निक होती है, वो किस तरह से कट कट करके जाती है।
1: तो देख लीजिए, समझ लीजिए, आपने एक गाना सुन रहे हैं। गाने में बीट्स होती हैं, ओके। एक ताल होता है, 1 2 3 4, ओके, 1 2 3 4, वो बीट होता है, रिदम होता है, ताल होता है। जब हम लोग सेट करते हैं तो हम हर बीट को कोरियोग्राफ करना पड़ता है, चाहे वो एकदम शुरू में अगर सिर्फ फ्लूट बज रहा है तो वो भी हमारे लिए कोरियोग्राफी होनी चाहिए। क्या हो रहा है उस पर वो भी सेट करना पड़ता है। तो जब हम शूट करते हैं तो हम पिक्चराइज करते हैं कि ये 4 बीट पे हम ये वाला स्टेप करेंगे। अब ये है कि चाहे आर्टिस्ट अच्छा डांस करे या ना करें, लेकिन जो फिल्म का जो माध्यम है उसमें हम बहुत ग्लैमराइज करना चाहते हैं। तो हम क्या करते हैं कि एक एंगल से 4 काउंट लिया, दूसरे एंगल से क्लोजअप मारा, वही चीज, फिर तीसरे एंगल से मूविंग ट्रॉली शॉट लगा दिया। तो जनरली क्या होता है, आर्टिस्ट को सहूलियत मिल जाती है या कन्वीनियंस हो जाता है कि वो सिर्फ 4 स्टेप करें या 8 स्टेप करें और फिर उसके बाद वो रुक जाते हैं, क्योंकि उनको पता है उसके बाद कट लगने वाला है, क्योंकि एक दूसरा कट आएगा। मान लो कि आपने 16 काउंट का भी कोरियोग्राफी रख दिया। अनफॉर्चुनेटली मैं कहना चाहूंगा, हमारे अभी जो प्रथा चली आ रही है 20 साल से, कि हम बहुत ही हमारे पास ठहराव नहीं है, हमको सब कुछ ना, अच्छा 2 काउंट ऐसा आ गया, आर्टिस्ट ने पूरा शॉट दिया है डांस का, लेकिन नहीं नहीं नहीं ये नहीं जम रहा है, अभी थोड़ा कट करके ये लगाएंगे, अब कट करके वो एंगल लगाएंगे। लेकिन एक आर्टिस्ट, अगर अच्छा आर्टिस्ट हो, जैसे माधुरी जी हो या ऋतिक हो या गोविंदा जी हो, उनको आपको कट करने की जरूरत नहीं है, वो इतना अच्छे तरह से परफॉर्म कर रहे हैं कि वो एक एंगल से भी बनता है वो शॉट, जरूरी नहीं। लेकिन

0: नहीं, आज की पीढ़ी में सब फट फट फट फट फट, तो एडिटर ज्यादा नाचता है क्योंकि जबरदस्ती के फट फट कट, और फिर वो झामे जो आते हैं, सॉरी फॉर द लैंग्वेज, लेकिन वो ना वो एकदम जूम इन करके झामे सक सक, फिर वो ब्लो ड्रायर, अननेसेसरी ब्लो ड्रायर, हर गाना सेम टू सेम लगने लगता है। अच्छा काम भी हो रहा है इंडस्ट्री में, ऐसा नहीं है, लेकिन मैं यही जरूर कहूंगा कि एक मोनोटोनस चीजें होने लगती है। अगर वो एक चीज अच्छी भी है तो वही चीज को, अच्छी चीज को 30 गाने में आप देख सकते हैं कि वो सेम टू सेम वही फॉर्मेट वही चीज दिख रही है, इनोवेशन नहीं होता। अगर एक चीज सक्सेस हो जाती है हमारी इंडस्ट्री में तो फिर सभी लोग बोलते हैं कि अच्छा वैसा ही गाना करो और इसको भी डुप्लीकेट बनाओ, सिर्फ गाने के लव्स और आर्टिस्ट बदल रहे हैं लेकिन ट्रीटमेंट वही का वही है। सो वही ट्रीटमेंट है कि गाने को फट फट काटो, फिर यू नो झामे करो, फिर क्लोजअप लो, फिर स्टडी कैम लगाओ। लाइक आई फील मास्टर जी, जैसे गणेश मास्टर जी और दूसरे हैं मास्टर जी जो यू नो अभी इस दुनिया में नहीं रहे, सरोज जी, उनका जो स्टाइल ऑफ ट्रीटमेंट था, लंबे लंबे कट्स, आई थिंक दैट वो सिनेमा वापस आना चाहिए। एंड कुछ कोरियोग्राफर्स कर रहे हैं कुछ हद तक, और आर्टिस्ट को भी पता चल गया है कि नाउ वी शुड ऑल्सो नॉट कीप सच शॉर्ट कट्स। तो फिल्म की बात करें तो बहुत लोग जो अच्छे डांसर नहीं हैं उनको भी हम अच्छा दिखा सकते हैं, क्योंकि अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज गलत है ओके, तो मैं सिर्फ आपका क्लोजअप ले लूँगा, मैं आपको बोलूँगा कि आप आंखों से खेल लीजिए, आपकी बॉडी लैंग्वेज एकदम सही नहीं है, आप बहुत ही ऑड लग रही हैं। कुछ कुछ हैं एक्ट्रेस जिनको डांस नहीं आता और वो मॉडल्स हैं, लंबी हैं, उन्होंने कभी सीखा नहीं है लेकिन अभी उनको करना पड़ रहा है, तो वो ज़बरदस्ती करते हैं, वो सीख लेते हैं, लगता है वो बहुत स्ट्रेस में डांस कर रहे हैं, वो मज़े नहीं ले रहे हैं। कुछ कुछ हैं, ज़्यादा नहीं है, आजकल के सभी जो पीढ़ी के जो आर्टिस्ट हैं वो सब सीख कर आते हैं, बट कुछ दो तीन ऐसे रहे हैं मेरे लाइफ में भी कि मुझे लगा कि उनका फुल बॉडी शॉट नहीं लूँगा, और अगर लूँगा तो वाइड लूँगा, भर भर के डांसर, ताकि वो जो गलतियाँ हैं छिप जाएँ और उनको सिर्फ 4 या 5 या 8 काउंट का डांस सिखा के बंद करा दूंगा, क्योंकि उनकी एनर्जी कम होने लगती है या वो याद करने लगता है कि नेक्स्ट क्या है और वो चेहरे पे दिखने लगता है, तो इसलिए हम लोग कट कट करके लेते हैं, लेकिन ऑडियंस को पता नहीं चलता है कि ये कटा हुआ है, उनको लगता है कि ये लगातार निरंतर रूप से चला आ रहा है।
1: तो दोस्तों आप समझ गए ये जो कट कट की दुनिया है किस तरह से आपके सामने बट बट के आती है। बहरहाल ये एक चीज बहुत टेक्निकल थी।
0: हाँ।
1: ध्यान से जो श्रोता इस प्रोग्राम को सुन रहे होंगे, जाहिर सी बात है जिनका डांस से बहुत लगाव होगा उन्होंने बड़े ध्यान से इसे सुना होगा। अब आगे बढ़ते हैं और आपकी उस दुनिया में आते हैं जो आजकल आपको घेरे हुए, या ये कह लें कि जिस दुनिया में आजकल आप मदमस्त हैं अपने नशे में, टीवी की दुनिया।
0: हाँ।
1: तो ये टीवी की दुनिया में अब जहां तक मुझे ध्यान आता है कि मैं भी काफ़ी समय से देख रहा हूँ, मुझे लगता है जब से शुरू हुई है ये दुनिया, रियलिटी शोज का ज़माना जब से शुरू हुआ है, चाहे वो डांसिंग शोज हों या सिंगिंग शोज हों,
0: हाँ,
1: गाने तो विविध भारती के ही बजते हैं।
0: करेक्ट, बहुत सारे गाने, एक जो अभी जिसके एटलीस्ट 10 मिलियन 20 मिलियन व्यूज हो चुके हैं वो गाना भी पुराना गाना है।
1: हाँ।
0: जो मैंने नौरा के

0: आप बात कर रहे थे कुछ ऐसे डांसर्स की कि जिनकी बॉडी लैंग्वेज में डांस नहीं होता,
1: करेक्ट,
0: लेकिन फेस पे आंखों से खेल जाते हैं। आपकी नजर में कौन सी हीरोइन बहुत अच्छी डांसर है?
1: आज के जमाने में जो बहुत अच्छे हैं, मैं जरूर कहूंगा कि माधुरी जी बहुत अच्छा करती है। आजकल के तारीख में आज की जो नई पीढ़ी है सभी अच्छा डांस करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि वो बहुत मेहनत करते हैं, वो इंजॉय नहीं करते हैं। अगर आप देखेंगे माधुरी और गोविंदा जी ना, जब वो कोरियोग्राफी सीखते भी है ना, तो वो अपना एक एलिमेंट लेके आते हैं, उनको खुद को इतनी खुशी महसूस हो रही है और वो खुशी
0: दिखती
1: है। दूसरे लोगों में लगता है कि नहीं, हमें उसको एक परफेक्ट बनाना है, तो वो परफेक्शन के चक्कर में वो भूल जाते हैं कि उनको एंजॉय भी करना है।
0: परफेक्शन के चक्कर में वो रोबोट हो जाता है।
1: हाँ, तो वो मेरे बाल ऐसे हैं, अच्छा मेरी बॉडी लैंग्वेज ठीक है, अच्छा ये पोस्चर सही है, हाँ क्या मैं सुंदर लग रही हूँ, या मैं सुंदर लग रहा हूँ, या मेरा एटीट्यूड सही है, कि मेरे कपड़े अच्छे लग रहे हैं। ऑल्सो दे आर टू ट्रैप्ड इन दैट यू नो की परफेक्शन, तो कहीं ना कहीं दे डोंट रियलाइज कि एक मेटाफिजिकल चीज होती है एनर्जी एंड वाइब। आकार ओके इज अ फिक्स्ड रूप, फिजिकल रूप है, लेकिन एक चीज है एनर्जी और वाइब, वो फिजिकल नहीं होती, वो मेटाफिजिकल होती है, वो लोग भाप लेते हैं। तो लोग जब आप देखते हैं, हाँ रूप तो देख लेते हैं, लेकिन इसकी जो वाइब है ना वो नहीं आ रही,
0: आत्मा नहीं पकड़
1: सुंदर है लेकिन आत्मा नहीं, मतलब सब ठीक है, सब अच्छा लग रहा है, लेकिन फिर भी वो वाइब नहीं आ रही है, क्योंकि वो इंसान ने उसको अपना नहीं बनाया। एंड दैट इज वन थिंग दैट माधुरी जी एंड इवन गोविंदा जी डू, एंड दैट्स द वन थिंग दैट आई रियली एडमायर अबाउट देम।

0: दूसरे रितिक शाहिद ऑल वेरी गुड डांसर्स. रणवीर ऑल्सो इज वेरी गुड डांसर और बहुत मेहनत भी करते हैं. तो इट्स नाइस टू सी द यंग डांसर्स. इट्स जस्ट दैट 19-20 का फर्क है लेकिन वो बहुत बड़ा फर्क हो जाता है.
1: सही कह रहे हैं.
0: हाँ, दूसरे एक जमाना हुआ करते अगर आप पूछना चाहते

0: Yusuf, Ritik, Shahid, all very good dancers. Ranveer also is very good dancer. और बहुत मेहनत भी करते हैं. तो it's nice to see the young dancers. It's just that 19-20 का फर्क है, लेकिन वो बहुत बड़ा फर्क हो जाता है.
1: सही कह रहे हैं.
0: हाँ, दूसरे एक जमाना हुआ करते, अगर आप पूछना चाहते हैं कि कौन अच्छे डांसर नहीं हुआ करते थे, कैसे कोरियोग्राफर्स छुपाते थे, द बिगेस्ट एग्जाम्पल ऑफ नॉट बीइंग अ गुड डांसर इज मीना कुमारी जी. शी वॉज नॉट अ ग्रेट डांसर, लेकिन उनके फिल्मों में, पाकिजा में, उनको नाचना है. तो कई गानों में ना उनकी एक डबल हुआ करती थी. कल्पना अय्यर जी ने बहुत सारे टाइम उनका डबल, यू नो, डबल के रूप में घूंघट में अगर वो गाना देखा है, वो कल्पना अय्यर जी ने किया है, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन. दैट इज वन. मीना कुमार जी का एक खास बात थी कि जो ये शरीर नहीं कर पाता था,
1: फेस करता,
0: ये कर पाता था. तो अगर आप शॉट्स देखेंगे ना, तो वो सिर्फ आंखों से खेल रही हैं और वो आंखों से बहुत कुछ कह जाती हैं. उनको सिर्फ एक इतने शोल्डर से और ये आंखों को देखने में और वो फीलिंग के साथ जो कर रही है ना, उसी में पैसा है. उसको ज्यादा करने की जरूरत भी नहीं है. तो उन्होंने समझ लिया कि ये मेरी शॉर्ट कमिंग से. इवन विथ रेखा, शी यूज्ड टू वर्क वेरी हार्ड. रेखा इज नॉट अ ब्रिलियंट डांसर. उमराव जो हमें बहुत नचवाया है, लेकिन इफ यू सी इन कंपैरिजन, वैजयंती माला इज नेक्स्ट लेवल. हेमा मालिनी जी इज नेक्स्ट

0: थी। कल्पना अय्यर जी ने बहुत सारे टाइम उनका डबल यू नो डबल के रूप में घूंघट में अगर वो गाना देखा है वो कल्पना अय्यर जी ने किया है इफ आई एम नॉट मिस्टेकिन। दैट इज वन। मीना कुमार जी का एक खास बात थी कि जो ये शरीर नहीं कर पाता था
1: फेस करता
0: ये
1: था।
0: कर पाता था। तो अगर आप शॉर्ट्स देखेंगे ना तो वो सिर्फ आंखों से खेल रही हैं और वो आंखों से बहुत कुछ कह जाती हैं। उनको उसकी सिर्फ एक इतने शोल्डर से और ये आंखों को देखने में और वो फीलिंग के साथ जो वो कर रही है ना उसी में पैसा है। उसको ज्यादा करने की जरूरत भी नहीं है। तो उन्होंने समझ लिया कि ये मेरी शॉर्ट कमिंग्स है। इवन विथ रेखा शी यूज्ड टू वर्क वेरी हार्ड। रेखा इज नॉट अ ब्रिलियंट डांसर। उमराव जो हमें बहुत नचवाया है लेकिन इफ यू सी इन कंपैरिजन वैजंती माला इज नेक्स्ट लेवल। हेमा मालिनी जी इज नेक्स्ट लेवल। और ये साउथ की एक्ट्रेसेस है ना उनके संस्कृति में ये है कि
1: डांस
0: पहले
1: है।
0: डांस सीखो और पेरेंट्स जबरदस्ती लड़कियों को और लड़कियों को सिखाते थे। कमल हसन भी जी सबसे बढ़िया डांसर थे। उन्होंने भी भरतनाट्यम सीखा था। तो जो साउथ के जो हीरोज या हीरोइंस थे उनको ऑलरेडी वो सीख कर आया करते थे तो उनको समझ थी। सो द बेस्ट एग्जाम्पल इज आई वुड से इज वैजंती माला जी, श्रीदेवी जी, हेमा मालिनी जी। वहीदा रहमान इज नॉट फ्रॉम द साउथ बट शी वॉज आई वुड से ये चार ऐसे कलाकार थे।
1: एक और नाम है पद्मिनी।
0: पद्मिनी वो इसकी बहन थी ना, वैजयंती माला की बहन थी ना वो पद्मिनी। सो दे वर बोथ क्लासिकली ट्रेन। साउथ की थी वो। सो दे वर वेरी क्लासिकली ट्रेन। और वो क्या करते थे ना सर, ये अभी शायद लोगों को पता नहीं लेकिन वो जब साउथ से आई थी वैजयंती माला वो अपने कोरियोग्राफर को लेकर आई थी कि अगर मैं डांस करूंगी तो इनके साथ करूंगी। तो इट वॉज वेरी क्लियर कि मैं मेरी पहचान डांस है तो मैं अपने टीम को ही लेकर आऊंगी। वेर एज अदर्स डिडंट नो हाउ टू डांस।

0: दोस्तों, आज के बॉम्बे टॉकीज में आप सुन रहे थे जाने माने कोरियोग्राफर टेरेंस लुविस से अमरकांत दुबे की फिल्मी गपशप।
1: अभी आप सुन रहे थे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम, जिन्हें हम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से रिले कर रहे हैं। FM 103.2 MHz पर आकाशवाणी झालावाड़ का ये चंद्रभागा चैनल है।

0: लिंक के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: गली गली आवाज ये जाए, हर घर अपनी गणना करवाए, मिलकर लिखेंगे कल कन्या अध्याय।

आज आपके पत्र और आपकी पसंद के गीत लेकर, आपकी बातें लेकर मैं हूं आपके साथ, आपका साथी दीपेश। और वक्त हो चला है, शाम के 5 बज चुके हैं कि आपके पत्रों को पढ़ा जाए, आपके पसंदीदा गीत आपको सुनवाए जाए, और आपने अपने पत्रों में अपने साथियों के जो नाम लिए हैं वो नाम आपको पढ़कर सुनाए जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आगर मालवा मध्य प्रदेश के इस पहले पत्र से, जो सोनू विश्वकर्मा, मोनू विश्वकर्मा ने हमें भेजा है। इनका गांव है सालियाखेड़ी और जिला आगर मालवा मध्य प्रदेश। एक पत्र और है जो हमें भेजा है आदर्श नगर मलोट से। राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मेंडी शर्मा, सौरव शर्मा, शाइना शर्मा और निवान शर्मा ने आप सब ने फरमाइश की है तमाशा फिल्म के गीत सफ़रनामा की। तो आइए आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: दोस्तों, आज के बॉम्बे टॉकीज में आप सुन रहे थे जाने माने कोरियोग्राफर टेरेंस लुविस से अमरकांत दुबे की फिल्मी गपशप।
1: अभी आप सुन रहे थे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम, जिन्हें हम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से रिले कर रहे हैं। FM 103.2 MHz पर आकाशवाणी झालावाड़ का ये चंद्रभागा चैनल है।

अब बढ़ते हैं हमारे अगले पत्रों की ओर। अगला पत्र हमें भेजा है गांधी चौक रोपड़ पंजाब से, हरदेव मीका, बलविंदर बिरक, जेतक बिरक और मीका बिरक ने। एक पत्र और लाल माता सुदामा नगर रटलाई जिला झालावाड़ से हमें मिला है, हर्षिता, रामेश्वर, कान्हा, सफलता, कपिल, मीनाक्षी, सत्यनारायण, मनोहर भाई, प्रभुलाल बागरी का। आप सभी की फरमाइश पर आप लोगों को सुनवा रहे हैं रोटी फिल्म का गीत। आइए सुनते हैं ये गीत।

आइए अगले गीत की ओर, अगले पत्र की ओर हम बढ़ते हैं। राजेश सामले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश और शीतल राजेश, इन्होंने हमें खत भेजा है छत्रपति संभाजी नगर से। और इनके साथ ही एक पत्र और है बठिंडा रोड डबवाली से राजिन नारंग, अंजू नारंग और मोहित नारंग का। आप सभी ने फरमाइश की है हर दिल जो प्यार करेगा फिल्म के इस गीत की, तो आइए आप तक पहुंचाते हैं ये गीत।

तुम्हें देखता हूँ तो लगता है कोई ऐसा भी मेरे पास तो है, अरे जिसको मेरी तन्हाई का एहसास तो है।

आइए अगला पत्र आपको पढ़कर सुनाएं। किसने हमें भेजा है? इस पत्र में बहुत से लोगों के नाम हैं। सरगुजा मेन पाठा से सोनिया थापा, सोनम थापा, रेशमा थापा, आदिबा थापा, बिहारी कॉलोनी लोनी से परवीन डोम, सरफुद्दीन डोम, कुमारी वली डोम, कुमारी डब्लू डोम, जेल रोड मथुरा से वसीम आसमा बेलदार, अकरम आसमा बेलदार और उल्लाह आसमा बेलदार। आप सभी लोगों के साथ एक पत्र और ग्राम धुरा बांधा से बांधा भाटापारा से प्रमोद साहू, देव कुमार साहू, नवीन कुमार साहू और युवराज साहू ने हमें भेजा है और आपने फरमाइश की है ताल फिल्म के इस गीत की, जो हम पहुंचा रहे हैं आप तक।

हमारे जो भी श्रोता हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं, आपकी फरमाइश, वो सभी हमें पत्र लिख सकते हैं, अपनी फरमाइशें भेज सकते हैं। हम आपके पत्र पढ़ेंगे आपके नाम के साथ और सुनवाएंगे आपकी पसंद का गीत। आकाशवाणी झालावाड़, जब भी आप पत्र भेजना चाहें, आप इस पते पर अपना पत्र हमें भेज सकते हैं। आपकी फरमाइश द्वारा केंद्र निदेशक, आकाशवाणी झालावाड़, राजस्थान। यहाँ का पिन नंबर है 326001। और आइए बढ़ते हैं अगले पत्र की ओर। अगला पत्र है महादेव घाट अमलेश्वर से। डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारिणी ठाकुर, सूरज ठाकुर, ज्योति ठाकुर और बाबू रेयांश ठाकुर की ओर से। अगला पत्र है कनेरा मोहल्ला पटियाला से बत्ता परिवार का। मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन, पलक, करण, गीतू, निहारिका, हार्दिक और वंश बत्ता। आप सभी ने फरमाइश की है कि कोई सा भी गीत आप लोगों को सुनवा दिया जाए। तो बहुत धन्यवाद आपका कि आप हमारी पसंद से एक गीत सुनना चाहते हैं। आइए आप सभी को सुनाते हैं आन फिल्म का ये गीत।

के लिए हम शामिल कर रहे हैं लुधियाना पंजाब से अमरजीत सोनम कौर, परमजीत आदिबा कौर, बिहारी कॉलोनी महासमुंद से वली उल्ला फ़कीर, डब्लू उल्ला फ़कीर, परवीन आसमा फ़कीर और बुलंदशहर से हैं बदरू वली अंसारी, फ़र्जू वली अंसारी और फ़र्जी वली अंसारी ने। आप सभी की पसंद पर आप लोगों को सुनवाते हैं गदर फिल्म का ये गीत।

इस गीत के बाद अब आगे बढ़ते हैं हमारे अगले श्रोताओं के पत्र की ओर और कार्यक्रम के अगले गीत की ओर। पद्मा टागिज नेपा नगर मध्य प्रदेश से सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशल शाह, नीति शाह, सुरभि शाह, अश्विन शाह, मंगलाबेन शाह, राजेंद्र शाह और सुषमा कपूर इस कार्यक्रम में अपना गीत सुनना चाहते हैं। इनके साथ कुछ और नाम हैं, बोरखेड़ा कोटा से सुनील नियति, नेहा नियति, पुष्किन पीहू, महावीर नगर थर्ड कोटा से सत्येंद्र, सुनीता, राघव, आयुषी और आकांक्षा। और इसके साथ ही एक और पत्र इस

आप सुन रहे हैं हमारा पत्रों पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपकी फरमाइश। आप हमें पत्र भेज सकते हैं, हमारा पता है कार्यक्रम आपकी फरमाइश द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी झालावाड़ राजस्थान, पिन नंबर है 326001। आपके पत्रों को हम शामिल करेंगे, सुनवाएंगे आपकी पसंद के गीत, और इसी श्रृंखला में हमें जो पत्र मिला है, हमें जो पत्र भेजा है, वो भेजा है अगले गीत के लिए। रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, दतरेंगी से भागवत वर्मा, लेवई से गुलाब दास मानिकपुरी, लच्छनपुर से विश्वनाथ साहू, और चरडोंगरी पीपरिया से दुर्गा राम साहू ने। और अगला पत्र इसी फरमाइश के लिए है बोरखेड़ा पित्रामल जिला उज्जैन मध्य प्रदेश से विनोद मूणत, नेहा जैन, दीपक, मयंत मूणत, चेतन नाहटा, दिलीप सिंह पंवार, दिशा और कुश मूणत का। साथियों, आप सभी की फरमाइश पर अब पहुंचा रहे हैं आप तक आपकी पसंद का एक गीत, जो है गजनी फिल्म का गीत। आइए सुनवाते हैं गजनी फिल्म का आप लोगों को ये गीत।

जानकारी और उनका प्रसारण समय। हमारी आज की सभा में सुनिए फिल्म संगीत शाम 6:05 और रात 8:15 पर।

कार्यक्रम आपकी फरमाइश। हमारे श्रोताओं को एक बार फिर हम कार्यक्रम के अंत में याद दिला दें कि आप भी अपने पत्र हमें भेज सकते हैं, अपनी फरमाइशें सुन सकते हैं। हमारा पता है कार्यक्रम आपकी फरमाइश द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी झालावाड़ राजस्थान, पिन नंबर है 326001। आज के कार्यक्रम आपकी फरमाइश में आपके पत्र और आपके पसंदीदा गीत लेकर मैं था आपके साथ आपका साथी दीपेश। अब दीजिए अनुमति कार्यक्रम को समाप्त करने की। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी पत्रों के साथ, गीतों के साथ और बातों के साथ। तो आप भी हमें लिख भेजिए अपनी बातें, अपने नाम और अपने पसंदीदा गीत। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी झालावाड़ का चंद्रभागा चैनल। नमस्कार। अभी आपने सुना कार्यक्रम आपकी फरमाइश। आकाशवाणी झालावाड़ का ये चंद्रभागा चैनल है FM 103.2 MHz पर। आइए अब आपको दें हमारे केंद्र से आज के शेष रहे और कल आने वाले कार्यक्रमों की

शाम 7:10 पर आप सुनेंगे केंद्र सरकार के 12 साल पूरे होने पर विशेष श्रृंखला थीम अष्टलक्ष्मी। श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया मान्य संचार पूर्वोत्तर राज्य विकास मंत्री भारत सरकार के साथ बातचीत, इसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित

को समाप्त करने की। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी पत्रों के साथ, गीतों के साथ और बातों के साथ। तो आप भी हमें लिख भेजिए अपनी बातें, अपने नाम और अपने पसंदीदा गीत। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी झालावाड़ का चंद्रभागा चैनल। नमस्कार। अभी आपने सुना कार्यक्रम आपकी फरमाइश। आकाशवाणी झालावाड़ का ये चंद्रभागा चैनल है FM 103.2 MHz पर। आइए अब आपको दें हमारे केंद्र से आज के शेष रहे और कल आने वाले कार्यक्रमों की जानकारी और उनका प्रसारण समय। हमारी आज की सभा में सुनिए फिल्म संगीत शाम 6:05 और रात 8:15 पर।

शाम 7:10 पर आप सुनेंगे केंद्र सरकार के 12 साल पूरे होने पर विशेष श्रृंखला थीम अष्टलक्ष्मी। श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया मान्य संचार पूर्वोत्तर राज्य विकास मंत्री भारत सरकार के साथ बातचीत, इसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित कर जो होगा सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी। सुबह 8:15 पर विविधा में सुनिए काव्य पाठ रघुराज सिंह हाड़ा का और 8:30 पर आप सुनेंगे महिलाओं बच्चों के लिए कार्यक्रम फुलवारी, जिसमें आओ जाने आपको बताएंगे विश्व रक्तदाता दिवस पर, और साथ ही आप सुनेंगे बच्चों के मुख से कविताएं, क्विज, कहानी और सीख में आपको देंगे सीख। स्वस्थ रहो, खुश रहो।

कल शाम 7 बजे से आप सुन सकेंगे आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप 2026 का सीधा प्रसारण, जिसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। और 7:10 पर सुनिए केंद्र सरकार के 12 साल पूरे होने पर विशेष श्रृंखला सशक्त भारत, रक्षा विशेषज्ञों के साथ होगी ये परिचर्चा। इसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे।

ये थी हमारे केंद्र से आज के शीर्ष और कल आने वाले कार्यक्रमों की जानकारी और उनका प्रसारण समय। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी झालावाड़ का चंद्रभागा चैनल FM 103.2 MHz पर। अब से कुछ ही देर में सुनिए हिंदी में समाचार, जिसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित कर रहे हैं।

0: समुदाय और कारोबारी जगत में उत्साह का माहौल है। उनके स्वागत के लिए विशेष तैयारियां की गई हैं। भारत और फ्रांस के लोगों के बीच संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। वर्तमान में लगभग 10,000 भारतीय छात्र फ्रांस में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। दोनों देशों का लक्ष्य है कि वर्ष 2030 तक ये संख्या बढ़कर 30,000 हो जाए। फ्रांस ने भारतीय छात्रों और युवाओं के लिए 5 वर्ष का शेंगेन वीजा, पढ़ाई पूरी करने के बाद 2 वर्ष का वर्क परमिट और 18 से 35 वर्ष के युवाओं के लिए यंग प्रोफेशनल स्कीम जैसे कई अवसर उपलब्ध कराए हैं। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में फ्रांस में भारत के राजदूत संजीव सिंघला ने बताया कि भारत इनोवेट्स कार्यक्रम भारत और फ्रांस की मजबूत होती साझेदारी को नई दिशा देगा। नीस से शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: असम के जोरहाट में आज सुबह AN-32 विमान दुर्घटना में 5 जवानों की मौत हो गई है। इनमें स्क्वाड्रन लीडर प्रशांत सिंह, फ्लाइट लेफ्टिनेंट शुभम कुमार, सार्जेंट जितेंद्र शर्मा, अग्निवीर वायु खेमाराम कुमावत और दानिश आलम शामिल हैं। AN-32 विमान आज सुबह जोरहाट में अपनी नियमित उड़ान पर था। लैंडिंग के दौरान विमान एयरबेस परिसर में दुर्घटनाग्रस्त हो गया और उसमें आग लग गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा है कि राष्ट्र के प्रति जवानों के साहस और सेवा को हमेशा गर्व और कृतज्ञता से याद किया जाएगा। गृहमंत्री अमित शाह ने सीमावर्ती जिलों में जनसांख्यिकी परिवर्तनों का अध्ययन करने का निर्देश दिया है। श्री शाह ने एक बैठक के दौरान स्थिति के आकलन के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों, महानगरों और औद्योगिक शहरों का दौरा करने का भी निर्देश दिया। केंद्र सरकार ने अवैध

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिन की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। श्री मोदी ने प्रस्थान वक्तव्य में कहा कि फ्रांस भारत के लिए रणनीतिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है और इस यात्रा से आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध और भी प्रगाढ़ होंगे। प्रधानमंत्री कल फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ भारत इनोवेट सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी फ्रांस के एवियन में G7 शिखर सम्मेलन में भी शामिल होंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन से पहले नीस में भारतीय

0: में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। दोनों देशों का लक्ष्य है कि वर्ष 2030 तक ये संख्या बढ़कर 30,000 हो जाए। फ्रांस ने भारतीय छात्रों और युवाओं के लिए 5 वर्ष का शेंगेन वीजा, पढ़ाई पूरी करने के बाद 2 वर्ष का वर्क परमिट और 18 से 35 वर्ष के युवाओं के लिए यंग प्रोफेशनल स्कीम जैसे कई अवसर उपलब्ध कराए हैं। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में फ्रांस में भारत के राजदूत संजीव सिंघला ने बताया कि भारत इनोवेट्स कार्यक्रम भारत और फ्रांस की मजबूत होती साझेदारी को नई दिशा देगा। नीस से शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: असम के जोरहाट में आज सुबह AN-32 विमान दुर्घटना में 5 जवानों की मौत हो गई है। इनमें स्क्वाड्रन लीडर प्रशांत सिंह, फ्लाइट लेफ्टिनेंट शुभम कुमार, सार्जेंट जितेंद्र शर्मा, अग्निवीर वायु खेमाराम कुमावत और दानिश आलम शामिल हैं। AN-32 विमान आज सुबह जोरहाट में अपनी नियमित उड़ान पर था। लैंडिंग के दौरान विमान एयरबेस परिसर में दुर्घटनाग्रस्त हो गया और उसमें आग लग गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा है कि राष्ट्र के प्रति जवानों के साहस और सेवा को हमेशा गर्व और कृतज्ञता से याद किया जाएगा। गृहमंत्री अमित शाह ने सीमावर्ती जिलों में जनसांख्यिकी परिवर्तनों का अध्ययन करने का निर्देश दिया है। श्री शाह ने एक बैठक के दौरान स्थिति के आकलन के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों, महानगरों और औद्योगिक शहरों का दौरा करने का भी निर्देश दिया। केंद्र सरकार ने अवैध

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: कुछ कुछ होता है, आइए सुनते हैं इस फिल्म का गीत, जिसे गाया उदित नारायण, अलका याग्निक ने, लिखा समीर ने, संगीत जतिन ललित का।

आकाशवाणी एट 90। कहो ना प्यार है, कुमार शानू की आवाज में आइए आपको सुनवाते हैं इस फिल्म का गीत, जिसे लिखा सावन कुमार टाक ने, संगीत दिया राजेश रोशन ने।

कार्यक्रम के अंत में आपको सुनवाते हैं अरिजीत सिंह, चिन्मय श्री प्रदा की आवाज़ में टू स्टेट्स फिल्म का गीत। अमिताभ भट्टाचार्य के लिखे इस गीत को संगीत दिया शंकर एहसान लॉय ने।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत, आकाशवाणी झालावाड़ का ये चंद्रभागा चैनल है एफएम 103.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। आपसे कुछ ही देर में सुनिए प्रादेशिक समाचार, पहले हिंदी उसके बाद राजस्थानी में। साथ ही आप सुनेंगे जिले की चिट्ठी, इसे हम आकाशवाणी के जयपुर अजमेर केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे।

नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। भारतीय सैन्य अकादमी की पासिंग आउट परेड में पहली बार 9 महिला कैडेट शामिल। महिला नेतृत्व वाले विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम। भारतीय सेना के उप सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ अगले आर्मी चीफ नियुक्त। 30 जून को सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी का स्थान लेंगे। भजन लाल शर्मा ने कहा, केंद्र की एनडीए सरकार की नियमों में पारदर्शिता और नीतियों में दूरदर्शिता से देश प्रगति के पथ पर अग्रसर। और प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता और प्री मानसून गतिविधियों के कारण कई स्थानों पर आंधी बारिश का सिलसिला। तापमान में 8 डिग्री तक की गिरावट। समाचारों के साथ मैं अल्पना राठौड़। और अब समाचार विस्तार से। भारतीय सेना को आज 481 नए युवा अधिकारी मिले हैं। पहली बार 9 महिला कैडेटों को भी इसमें

0: शामिल किया गया है। ये महिला नेतृत्व वाले विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी की 158वीं पासिंग आउट परेड का आयोजन हुआ। इसमें महिला कैडेटों ने अंतिम पग पार कर सेना अधिकारी बनने का गौरव प्राप्त किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने परेड का निरीक्षण किया। भारतीय सेना के उप सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ को नया आर्मी चीफ नियुक्त किया गया है। वे 30 जून को सेवानिवृत्त हो रहे सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी का स्थान लेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल सेठ वर्तमान में 49वें उप सेना प्रमुख के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे खड़गवासला नेशनल डिफेंस अकादमी के पूर्व छात्र हैं। दिसंबर 1986 में आर्म्ड कॉर्प्स में कमीशन हुए धीरज सेठ को भारतीय सेना में करीब 4 दशकों का अनुभव है। इस दौरान उन्होंने कई कमान संभाली और कई महत्वपूर्ण ऑपरेशंस का हिस्सा रहे। लेफ्टिनेंट जनरल सेठ यूनाइटेड नेशंस के साथ भी काम कर चुके हैं। असम के जोरहाट में आज सुबह भारतीय वायुसेना का एक विमान AN-32 दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें 5 जवान शहीद हो गए। वायुसेना ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि हादसे में स्क्वाड्रन लीडर प्रशांत सिंह, फ्लाइट लेफ्टिनेंट शुभम कुमार, सार्जेंट जितेंद्र शर्मा, अग्निवीर खेमा राम कुमावत और अग्निवीर दानिश आलम का निधन हो गया। वायुसेना ने बताया कि दुर्घटनास्थल पर आवश्यक कार्रवाई और प्रारंभिक जाँच जारी है। इंदौर में आयोजित ब्रिक्स कृषि मंत्रियों के सम्मेलन में कई महत्वपूर्ण पहलों पर सहमति बनी है। भारत की अध्यक्षता में हुए इस सम्मेलन में बीजों की प्रणालियों को लेकर ग्लोबल फोरम और फार्मर्स साइट्स इन सीड सिस्टम बनाने पर मोहर लगी है। साथ ही ब्रिक्स सदस्यों ने सतत कृषि नेटवर्क और कृषि पारिस्थितिकी के लिए एक्सीलेंस सेंटर बनाने का भी निर्णय लिया है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि देश के 87% किसान छोटे और सीमांत हैं, इन्हें मजबूत करके ही खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकती है।
1: भारत खाद्य सुरक्षा, कृषि व्यापार, जलवायु परिवर्तन, डिजिटल कृषि समाधानों तथा कृषि क्षेत्र को अधिक सुदृढ़, समावेशी और भविष्य के लिए तैयार बनाने से जुड़े विषयों पर सहयोग को और आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। किसानों को केंद्र में रखकर खाद्य सुरक्षा, पोषण, आजीविका, कृषि व्यापार, नवाचार, निवेश तथा जलवायु सहिष्णु एवं सतत कृषि विकास को आगे बढ़ाने की हमारी साझा प्रतिबद्धता को प्रतिबिंबित करता है।
0: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज जनसांख्यिकीय परिवर्तन को लेकर एक बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने इस संबंध में गठित आयोग को सीमावर्ती जिलों में आबादी में हो रहे बदलावों का अध्ययन करने के निर्देश दिए। गृह मंत्री ने आयोग से सीमावर्ती क्षेत्रों, महानगरों और औद्योगिक शहरों का दौरा कर स्थिति का आकलन करने को भी कहा। केंद्र सरकार ने पिछले महीने घुसपैठ और दूसरे कारणों से हो रहे आबादी बदलावों से निपटने के उपाय सुझाने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया था। केंद्र सरकार की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना देश भर में बालिका सशक्तिकरण का बड़ा अभियान बनी है। महिला और बाल विकास मंत्रालय के अनुसार पिछले 10 वर्षों में जन्म के साथ लिंगानुपात 918 से बढ़कर 929 हो गया है। वहीं स्कूलों में माध्यमिक स्तर पर छात्राओं का नामांकन भी लगभग 75% से बढ़कर 80% के करीब हो गया है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज जयपुर में आयोजित मीडिया संवाद में केंद्र की एनडीए सरकार की 12 साल की उपलब्धियां गिनाई। श्री शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में देश में हर क्षेत्र में तरक्की हुई है। श्री मोदी ने राष्ट्र प्रथम की सोच के साथ, नियमों में पारदर्शिता और नीतियों में दूरदर्शिता के साथ देश को विकास के पथ पर आगे बढ़ाया है।
2: आत्मनिर्भर के बिना विकसित भारत का सपना पूरा नहीं हो सकता। इसी प्रेरणा से मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान को गति प्रदान की गई। आज भारत रक्षा, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, फार्मा जैसे अनेक क्षेत्रों में विनिर्माण और निर्यात के नए रिकॉर्ड स्थापित कर रहा है। पिछले 12 वर्षों में जितनी तेजी से भारत का बुनियादी ढांचा सुदृढ़ हुआ है, वो आप अपने आप में एक मिसाल है।
0: श्री शर्मा ने कहा कि राजस्थान में भी प्रति व्यक्ति आय बढ़ी है। पहले यहाँ प्रति व्यक्ति आय 69,000 रुपए सालाना थी, आज बढ़कर 2,00,000 रुपए से अधिक हो गई है। उन्होंने कहा कि डबल इंजन

0: सरकार राजस्थान के विकास में हर संभव सहयोग दे रही है। पिछले ढाई वर्षों में 12,000 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जा चुका है। वहीं 26 जिलों में किसानों को दिन में बिजली दी जा रही है। जिला प्रभारी मंत्रियों ने भी प्रेस वार्ता कर केंद्र सरकार की उपलब्धियों की जानकारी दी। साथ ही प्रदर्शनियों के माध्यम से भी केंद्र और राज्य सरकार की जनहित योजनाओं को बताया जा रहा है। प्रदेश में कल से शुरू हुए ग्रामीण और शहरी सेवा शिविरों के जरिए लोगों को लाभान्वित किया जा रहा है। इसके तहत लोगों की समस्याओं का मौके पर ही निपटारा कर उन्हें विभिन्न जनहित योजनाओं से भी जोड़ा जा रहा है। इसी कड़ी में जैसलमेर के पशुपालक गणपत कुमार ने बताया कि उन्हें ग्रामीण सेवा शिविर में मंगला पशु बीमा योजना का फायदा मिला है।
1: मैंने मंगला पशु बीमा योजना के तहत दो गायों का बीमा करवाया था, जिसमें गाय की डेथ होने के बाद मुझे 18,000 रुपए क्लेम मंगला पशु बीमा योजना के तहत मिल चुका है। और ग्रामीण सेवा क्षेत्र जैसे जैसा

0: प्रदेश में नए पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता और प्री मॉनसून की गतिविधियों के कारण आज 5 संभागों में अंधड़ और गरज के साथ बरसात का अलर्ट है। इस दौरान कहीं कहीं 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं भी चल सकती हैं। मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से हवाओं से नमी की आपूर्ति हो रही है, इससे कई जगह पानी बरसने के आसार हैं। वहीं बीते 24 घंटों में अनेक स्थानों पर हल्के से मध्यम बारिश हुई। सबसे ज्यादा 5 सेंटीमीटर पानी दातारामगढ़ में बरसा। श्रीगंगानगर, चूरू और सीकर में ओले भी गिरे, इससे तापमान में 8 डिग्री तक की गिरावट आई है। राजधानी जयपुर में भी देर रात शुरू हुआ बारिश का दौर रुक रुक कर आज सुबह भी जारी रहा। भीलवाड़ा में भी आज सुबह हल्की बरसात हुई, इससे गर्मी और उमस में कमी आई है। राज्य में अंधड़ और बरसात का सिलसिला अगले 3-4 दिन तक बना रह सकता है। उधर जैसलमेर में भीषण गर्मी और लू का प्रकोप है। दिन का पारा 44 डिग्री के पार दर्ज हुआ। यहां धूल भरी आंधी चलने का अंदेशा भी जताया गया है। मौसम विभाग ने लोगों को गरज चमक और तेज हवाओं के दौरान सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी है। वहीं किसानों को फसलों की कटाई और भंडारण का काम सावधानी से करने को कहा गया है। 21 जून को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए दुनिया भर में बड़े पैमाने पर तैयारियां की जा रही हैं। लगभग 190 देशों में इसका आयोजन होगा। इस वर्ष योग दिवस की थीम योग फॉर हेल्दी एजिंग रखी गई है। इसका उद्देश्य बढ़ती उम्र में लोगों को स्वस्थ और सक्रिय जीवन जीने के लिए प्रेरित करना है। योग दिवस काउंटडाउन के तहत प्रदेश में भी अनेक स्थानों पर योग शिविर लगाए जा रहे हैं, जिनमें सामूहिक रूप से योगाभ्यास किया जा रहा है। उधर अहमदाबाद में हुई पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाले पाली के अर्जुन परमार ने लोगों से योग से जुड़ने की अपील की है।
1: भारत में हुई विश्व स्तरीय योगासन प्रतियोगिता में मैंने भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए 2 स्वर्ण पदक प्राप्त किए, एक आर्टिस्टिक सिंगल और एक आर्टिस्टिक ग्रुप में प्राप्त किया। आगामी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए कहना चाहता हूँ कि योग केवल एक शारीरिक ही नहीं बल्कि मानसिक रूप से भी सभी लोगों के लिए कार्य करता है। मैं विशेष रूप से युवाओं को आग्रह करना चाहूंगा कि योग को अपनी दिनचर्या में शामिल करें।
0: जयपुर सैन्य स्टेशन में शिक्षा और समाज कल्याण से जुड़ी पहलों को आगे बढ़ाने के लिए एक विशेष कार्यक्रम रखा गया। इसमें सेना और सिविल सोसाइटी के बीच सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया गया। जनसंपर्क अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल निखिल धवन ने बताया कि इस दौरान वीर नारियों का सम्मान और सशस्त्र बलों के सैनिकों के मेधावी बच्चों को टैबलेट वितरित किए गए। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारतीय सैन्य अकादमी की पासिंग आउट परेड में पहली बार 9 महिला कैडेट शामिल। महिला नेतृत्व वाले विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम। भारतीय सेना के उप सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ अगले आर्मी चीफ नियुक्त। 30 जून को सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी का स्थान लेंगे। भजन लाल शर्मा ने कहा, केंद्र की एनडीए सरकार की नियमों में पारदर्शिता और नीतियों में दूरदर्शिता से देश प्रगति के पथ पर अग्रसर। और प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता और प्री मॉनसून गतिविधियों के कारण कई स्थानों पर आंधी बारिश का सिलसिला, तापमान में 8 डिग्री तक गिरावट। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप माधुरी वशिष्ठ से सिरोही जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख साकेत गोयल ने तैयार किया है। सिरोही जिले में इन दिनों मॉनसून पूर्व तैयारियों के साथ साथ विभिन्न जनकल्याणकारी और जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। प्रशासनिक स्तर पर विकास कार्यों की समीक्षा का दौर जारी है, तो वहीं जल संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण, स्वास्थ्य सेवाओं और सामाजिक सरोकारों से जुड़े कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं। आज की जिले की चिट्ठी में बात करेंगे ऐसी ही कुछ प्रमुख गतिविधियों की। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस के अवसर पर जिला प्रशासन द्वारा बाल श्रम मुक्त सिरोही अभियान चलाया गया। जिला कलेक्टर रोहिताश्व सिंह तोमर के निर्देशन में आबू पर्वत और सिरोही क्षेत्र में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। होटल, रेस्टोरेंट और दुकानों पर निरीक्षण कर बाल श्रमिकों के चिन्हीकरण की कार्रवाई की गई। साथ ही आशा सहयोगिनियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और ग्रामीण महिलाओं को बाल श्रम उन्मूलन तथा बच्चों के अधिकारों के संबंध में जानकारी दी गई। चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 तथा

विभिन्न सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने भी इस अभियान में भाग लिया। आमजन को राहत पहुंचाने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा शहरी सेवा शिविर अभियान शुरू किया गया है। अभियान के

0: जलापूर्ति, खाद्य सुरक्षा, विद्युत लाइन, प्रधानमंत्री आवास योजना, पार्क विस्तार तथा अन्य सुविधाओं से जुड़े मसलों पर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए। साथ ही पात्र व्यक्तियों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने पर जोर दिया गया। प्रदेश में अच्छी वर्षा और खुशहाली की कामना को लेकर जिले के विभिन्न धार्मिक स्थलों पर पूजा अर्चना के कार्यक्रम आयोजित किए गए। सिरोही के सारणेश्वर महादेव मंदिर तथा पिंडवाड़ा क्षेत्र के गोपेश्वर महादेव मंदिर में जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों और श्रद्धालुओं ने भाग लिया। ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग की योजनाओं की समीक्षा के लिए जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में पिछले दिनों बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने भाग लिया और राहत तथा बचाव व्यवस्थाओं पर चर्चा की गई। मॉनसून को देखते हुए जिला प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। संभावित बाढ़, अतिवृष्टि तथा अन्य प्राकृतिक परिस्थितियों से निपटने के लिए जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने भाग लिया। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर जिला प्रशासन और वन विभाग के संयुक्त तत्वावधान में लवकुश वाटिका में कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान का समापन हुआ, साथ ही हरियालो राजस्थान अभियान की शुरुआत हुई। कार्यक्रम में जल संरक्षण, पौधरोपण और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण का संदेश दिया गया। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत बत्तीसा बांध पर भी कार्यक्रम रखा गया। प्रभारी मंत्री के विश्नोई ने जल संरक्षण के महत्व पर प्रकाश डाला। जिले भर में आयोजित विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से लोगों को जल बचाने और वर्षा जल संचयन के प्रति जागरूक किया गया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के सिलसिले में जिले में विभिन्न गतिविधियां की जा रही हैं। माधव विश्वविद्यालय की ओर से योग महोत्सव 2026 के 100 दिवसीय काउंटडाउन कार्यक्रम चल रहे हैं। कार्यक्रमों का उद्देश्य युवाओं को योग, स्वास्थ्य और संतुलित जीवन शैली के प्रति जागरूक करना है। सिरोही जिले की चिट्ठी में इतना ही। नमस्कार।
1: नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर हूँ, पेश है प्रादेशिक समाचार। खास समाचार। इंडियन मिलिट्री एकेडमी री पासिंग आउट परेड में पहली दफा 9 महिला कैडेट शामिल। महिलावारी अगुवाई में विकास री दिशा में खास कदम। उपसेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ अगला सेना प्रमुख फैला। 30 जून न जनरल उपेंद्र द्विवेदी री ठौड़ लेवेला। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा कहो, केंद्र री एनडीए सरकार री नियमा माय साफ कोई और नीतियां माय आगे री सोचूं देश बरकतरा गेला माथा चाल रियो है। और प्रदेश माय कई ठोणा आंधी बारिश रो सिलसिलो, पारा माय 8 डिग्री सेल्सियस ताई री गिरावट। समाचार सागे मैं सुदर्शन नाहर। अरब समाचार विगतवार। फौज ने आज 481 नुआ नौजवान अहलकार मिल गया। आम आए 9 महिला कैडेट शामिल है जो महिलावारी अगुवाई माए विकास रे दिशा माए खास जतन है। देहरादून री भारतीय सैन्य अकादमी माए राखी जी 158वीं पासिंग आउट परेड माए महिला कैडेट आखिरी पग पार कर फौजी अहलकार बनवारो गौरव हासिल कीनो। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पासिंग आउट परेड रो निरीक्षण कीनो। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ फौज रा आगला मुखिया फैला। जनरल सेठ फिलहाल फौज रा उप प्रमुख रा तौर सेवा दे रहा है। केंद्र सरकार माने 30 जून आ नियुक्ति दीनी है। वह मौजूदा चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी री ठौड़ लेवेला। लेफ्टिनेंट जनरल सेठ खड़गवासला री नेशनल डिफेंस अकेडमी रा विद्यार्थी रहा है। करीब 40 साल री फौजी सेवा माए वे ऑपरेशनल, रणनीतिक, क्षमता विकास और संस्थागत हलका माए खास भूमिका निभाई। वे दिल्ली जा रही है। ब्रिक्स देशां रा कृषि मंत्रियां रा इंदौर माए राखी जिया सम्मेलन माए बीजां री प्रणालियां रा बारा माए ग्लोबल

0: सहयोग को और आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। किसानों को केंद्र में रखकर खाद्य सुरक्षा, पोषण, आजीविका, कृषि व्यापार, नवाचार, निवेश तथा जलवायु सहिष्णु एवं सतत कृषि विकास को आगे बढ़ाने की हमारी साझा प्रतिबद्धता को प्रतिबिंबित करता है।
1: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जनसांख्यिकी माय बदलाव रेठा करणसार वणाइचिया आयोग ने सरहदी जिला माय आबादी रा बदलाव रे जानकारी करण बाबत कहो है। वह आज इंबारा माय राखी जी मीटिंग माय बोल रहा है। गृह मंत्री आयोग सरहदी हलका महानगर और औद्योगिक शहरान रो दौरो कर हालात रो जायजो लेवन सारुई कहो। ध्यान जोग है कि केंद्र सरकार घुसपैठ और दूजा कारणों आबादी माय बदलाव न रोकने रा उपाय सुझावन सारु आला दर्जारी समिति बनाई है। देश माय लाडला 10 साल माय जन्म री बगत हर 1,000 लड़का न मुकाबले लड़कियां री तादाद 918 बधर 929 वैगी है। स्कूलों माय माध्यमिक स्तर माथे टाबनियां री तादाद 75 बधर 80% रे करीब वैगी है। महिला और बाल विकास मंत्रालय रे मुजब केंद्र सरकार री बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना देश भर माय टाबनियां ने मजबूत बनावन रो मोटो अभियान बन रही है। समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर सुन रहा हो। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारा एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक मथे AIR न्यूज राजस्थान पर आई सुन सको हो। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा कहो है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी री अगुवाई माए देश माए हर हलका माए तरक्की भी है। वे आज जयपुर माए खबर नवीसा सागे बातचीत कर रहा है। केंद्र माए एनडीए सरकार रा 12 साल री उपलब्धियां रो जिक्र करता था कांशी शर्मा कहो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्र प्रथम री सोच सागे नियमा माए साफ गोई और नीतियां माए आगे री सोच सागे देश ने विकास रा गेला माथे आगे बधायो है।
2: आत्मनिर्भर के बिना विकसित भारत का सपना पूरा नहीं हो सकता। इसी प्रेरणा से मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान को गति प्रदान की गई। आज भारत रक्षा, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, फार्मा जैसे अनेक क्षेत्रों में विनिर्माण और निर्यात के नए रिकॉर्ड स्थापित कर रहा है। पिछले 12 वर्षों में जितनी तेजी से भारत का बुनियादी ढांचा सुदृढ़ हुआ है वो आप अपने आप में एक मिसाल है।
1: श्री शर्मा कहो कि प्रदेश में आई प्रति व्यक्ति आमदनी बढ़ी है। पहली 8 प्रति व्यक्ति आय 69,000 रुपया सालाना ही जो अब बेधर 2,00,000 रुपया 32 वैकी है। मुख्यमंत्री कहो कि राज्य रा 26 जिला माए किसाना ने दिन माई बिजली दी जा रही है। जिलाना प्रभारी मंत्री प्रेस वार्ता कर केंद्र सरकार री उपलब्धियां री जानकारी दीनी। इस आ गई प्रदर्शनिया रे जरिए केंद्र और राज्य सरकार का नियम चलाई जा रही जनता रा भलारी योजनावां री जानकारी लोगा ने दी जा रही है। प्रदेश में चल रहा ग्रामीण और शहरी सेवा शिविर के जरिए जनतारी समस्यावां मौके निपटार वाने सरकार का नियम चलाई जा रही जनतारा भलारी योजनावां जोड़ी जा रही है। जैसलमेर रा पशुपालक गणपत कुमार बतायो कि वाने ग्रामीण सेवा शिविर में मंगला पशु बीमा योजना रो फायदो मिल्यो।
3: मैंने मंगला पशु बीमा योजना के तहत 2 गायों का बीमा करवाया था जिसमें गाय की डेथ होने के बाद मुझे 18,000 रुपए क्लेम मंगला पशु बीमा योजना के तहत मिल चुका है। और ग्रामीण सेवा क्षेत्र जैसे अमर सागर से हूँ मैं और मैं अभी नरेंद्र मोदी जी और सीएम भजन लाल जी का तहे दिल से स्वागत धन्यवाद करता हूँ।
1: पालीरा गुढ़ा एंदला माए लगाई चाह ग्रामीण सेवा शिविर माए टीबी री बीमारी रा मरीजा ने निक्षय पोषण किट दिया चाह। राजस्थान लोक सेवा आयोग सहायक खनिज अभियंता भर्ती 2024 रा 3 उम्मीदवार काने ऑनलाइन तरीका दाखिल करी जी अर्जियां भर्ती पोर्टल माए सेंध मारी रजरिये पाछी ले लेवन रा मामला माए अजमेर पुलिस माए FIR दर्ज कराई है। आयोग रा सचिव बतायो कि कोई अनजान मिनख दूजा उम्मीदवार न फायदो देरावन रा मकसद सोची समझी साजिश रा तेत ई पोर्टल माए गैर कानूनी तौर सेंध लगार 3 उम्मीदवार री अर्जियां हटा देनी ही। अरब मौसम प्रदेश रा 5 संभागा माए आज अंधड़ और गरज सागे बरसात सारू चेताई चियो है। इस दौरान कठे कठे 60-70 किलोमीटर प्रति घंटा री रफ्तार बायरो बाजन री शंका है। इन विचे लाडला 24 घंटा माए

0: ऐसी बेमिसाल कहानियां आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।
1: प्रस्तुत है कार्यक्रम विशेष जयमाला।

0: आज के विशेष जयमाला कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आए हैं मशहूर फिल्म निर्देशक, पटकथा लेखिका और नाटककार सई परांजपे द्वारा प्रस्तुत विशेष जयमाला कार्यक्रम।
1: फौजी साथियों, बल्कि मेरे बहादुर भाइयों, सई परांजपे का नमस्कार, हालांकि सलूट। फौजी साथियों, मुझे बहुत खुशी है कि आज जयमाला कार्यक्रम के ज़रिए मैं आपसे ये बात कर पा रही हूँ। आपने चश्मे बदूर देखी है? देखी होगी ना, तो उसका एक गाना सुनाती हूँ। और हाँ, चश्मे बदूर लिखी मैंने और डायरेक्ट भी मैंने की, तो ये गाना सुनो मेरे साथ।

0: आकाशवाणी झालावाड़ का ये चंद्रभागा चैनल है FM 103.2 MHz पर। अब से कुछ ही देर में सुनिए केंद्र सरकार के 12 साल पूरे होने पर विशेष श्रृंखला थीम में अष्टलक्ष्मी श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया माननीय संचार पूर्वोत्तर राज्य विकास मंत्री भारत सरकार के साथ बातचीत, जिसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं।
1: ये आकाशवाणी है। 12 साल विश्वास के विकास के जन कल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत आज सुनिए केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल के साथ विशेष साक्षात्कार। साक्षात्कार कर रही हैं रीमा पराशर।
2: नमस्कार। 10 जून 2026 एक ऐसी तारीख बन गई है जो कि इतिहास के पन्नों में भी दर्ज होगी और लोकतंत्र जिसकी बात

0: मंत्रालय जिसकी बात गांव गांव तक पहुंचती है, और सिर्फ बात नहीं, क्या वाकई में गांव के लोग उस बात को महसूस भी करते हैं? जी हाँ, हर घर जल और नल, ये एक ऐसी योजना रही जिसकी चर्चा सबसे ज्यादा 12 साल में रही। और हमारे साथ बेहद ही खास मेहमान बातचीत करने के लिए मौजूद हैं, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल जी। बहुत बहुत स्वागत है पाटिल जी आपका।
1: नमस्कार।
0: दो कीर्तिमान स्थापित हुए 12 साल सरकार के, और दूसरा प्रधानमंत्री ने वो रिकॉर्ड तोड़ा जिसकी चर्चा अब तक सबसे ज्यादा होती थी, जवाहरलाल नेहरू की। दोनों को आप किस तरह देखते हैं?
1: देखो, 12 साल कंटिन्यू काम करना, लोगों की जो आश है, जो अपेक्षा है, वो पूरी करना, और बार बार जीतना, और ऐसे मुश्किल परिस्थिति में जीतना, ये अपने आप में बड़ी बात होती है। जवाहरलाल नेहरू जी, इंदिरा गांधी जी, वो सब लड़ते थे इलेक्शन। उस टाइम कांग्रेस के सामने कोई विरोध पक्ष नहीं था। माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब जब इलेक्शन लड़ते हैं तो उनके सामने तो बहुत ही पावरफुल लोग, सीनियर लोग, कांग्रेस खुद लड़ती है, उसके अंदर अपने बलबूते पे लड़कर वो आना और 12 साल कंटिन्यू सेवा करना और करते रहना, यही एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। और उसको हम देखेंगे कि 12 साल में क्या किया उन्होंने, लोगों की सभी अपेक्षा पूर्ण करने में उत्तीर्ण हुए। एक लाइन में अगर कह सकते हैं तो इतना कह सकते हैं, क्योंकि काम तो उसके अगर लिस्ट बनाने बैठेंगे तो बहुत लंबी लिस्ट है। बहुत काम उन्होंने किए, देश को सुरक्षित कर दिया, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, किसानों के लिए, सीनियर सिटीजन के लिए, सभी समाज के लिए कोई न कोई योजना बनाकर उनको लाभान्वित करने का काम ये माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने किया है।
0: पाटिल जी, मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी एक ऐसे नेता रहे, क्योंकि आपके साथ तो उनका एक जो साथ और अपनापन रहा वो सिर्फ अभी 12 साल का नहीं, वो तो कितने समय पुराना हो गया, गुजरात से लेकर दिल्ली तक। आपने क्या देखा कि इतना ज्यादा हमेशा नरेंद्र मोदी के खिलाफ कसीदे इन 12 सालों में भी, जब से सरकार बनी अब गिरेगी, अब गिरेगी, अब गिरेगी, यही बात होती रही, और सरकार ने 12 साल कंप्लीट कर लिया?
1: देखिए, हमारा कहते ना अंगूर खट्टे हैं, तो इन्होंने कोशिश तो बहुत कर ली, मगर जो उनकी लालसा थी कि सरकार को गिरा देंगे, सरकार बना लेंगे, मुझे लगता है शायद वो लोग जो उनकी इच्छा इस जन्म में पूरी होने की संभावना मुझे दिख नहीं रही है, क्योंकि पूरा देश मोदी साहब के साथ खड़ा है, और इसके लिए खड़ा है कि उनकी जो अपेक्षा थी वो पूर्ण करने वाला एक सक्षम व्यक्तित्व उनमें उसमें दिखता है, और ये मोदी साहब ने प्रूव कर दिया है कि वो सपने नहीं दिखाते। अगर आप एक लाइन में देखेंगे तो आज तक गुजरात के मुख्यमंत्री रहे और देश के प्रधानमंत्री बने, उनके सामने कोई आंदोलन नहीं हुआ कि हमें रोड चाहिए, पानी चाहिए, गटर चाहिए या कोई भी चीज़ के लिए। उन्होंने डिमांड कोई करे उसके पहले उसकी आवश्यकता को समझ के समय के पहले उसको पूरा कर दिया। ये आज तक कभी कोई मुख्यमंत्री ने या प्रधानमंत्री ने अपने शासनकाल में कभी नहीं किया, इतना बड़ा काम उन्होंने कर दिया है।
0: मोदी जी को इतना टारगेट क्यों किया जाता है? मतलब जब वो मुख्यमंत्री थे, किसी मुख्यमंत्री की इतनी चर्चा नहीं होती थी जितना विपक्ष उनकी चर्चा करता था, और प्रधानमंत्री बनने के बाद भी सबसे ज्यादा टारगेट उन्हीं को किया जाता है।
1: देखिए, उनको लगता था कि ये हमारा अधिकार है, ये हमारा खानदानी अधिकार है, ऐसा समझते थे। आज एक आम आदमी में से, एक सामान्य आदमी अपने बलबूते पर यहाँ तक पहुँचता है, अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। मैंने अभी किसी से मैं बात कर रहा था कि 12 साल तो रिकॉर्ड हुआ, 12 साल बेमिसाल तो रही है, आज नेहरू जी का रिकॉर्ड तोड़ दिया, वो भी एक अपने आप में बहुत बड़ा रिकॉर्ड है।
0: तो यही तो कॉन्फिडेंस लेवल जो है, आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी का ये कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास ही है जिसने यहाँ तक उनको पहुँचाया है?
1: नहीं, आत्मविश्वास तो उसकी तो प्राथमिकता है, मगर उसके साथ प्लानिंग है, वो जमीन से जुड़े रहते हैं, लोगों की क्या समस्या है उसको ध्यान देते हैं, उसको कैसे उनको मदद की जाए उसके लिए सोचते हैं, उनकी योजना बनाते हैं। टारगेट अगर महिला के लिए तो महिला की योजना बनेगी, किसान के लिए तो किसान के लिए योजना बनेगी। हमारे देश में हम कहते हैं कि ये तो खेती प्रधान देश है, मगर आज तक कभी किसानों के लिए योजना नहीं बनी थी जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने पहली बार बनाई। यानी ऐसे कई आपको इंसिडेंट्स मिलेंगे कि जो कभी किसी ने सोचा नहीं था, ऐसी योजना बनाकर उन्होंने मदद की है।
0: पाटिल जी, अब हर घर जल और नल, ये योजना, मतलब ये विडंबना ही है इस देश की कि आजादी के बाद इतनी सारी चीजों पर बात होता था लेकिन तब भी महिलाओं को सिर पर घड़ा रखकर लाना पड़ता था। मैंने कई गांव में जाकर देखा उत्तर प्रदेश के कि महिलाएं इतना खुश होती थी। ये जो विजन है, और क्योंकि आपके मंत्रालय से संबंधित है, मैं थोड़ा ये समझना चाहूंगी कि ये विजन अब तक क्यों नहीं आ पाया किसी के दिमाग में, और अब इतना ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हो रहा है?
1: किसी को गरीब लोगों के बारे में सोचने का समय नहीं था। माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने कहा है कि विकसित भारत 2047 एक टारगेट दिया है। हमारे यहाँ देश में

0: में टॉयलेट नहीं था। महिलाओं को सूर्यास्त के बाद में और सूर्यास्त के पहले शौच के लिए बाहर जाना पड़ता था। अंधेरी रात में उनके ऊपर कई बार असॉल्ट भी हुए। कई लोगों को ये जो टॉयलेट नहीं है तो विकसित भारत कैसे बन सकता है? अगर घरों में टॉयलेट नहीं है तो विकसित भारत हो ही नहीं सकता। और ये सिर्फ विकसित भारत के लिए नहीं है, महिलाओं की सुरक्षा के लिए भी ये बहुत बड़ा प्रोग्राम है। 60 करोड़ लोगों ने अपनी आदत बदल दी। 9 करोड़ महिला रोज पानी के लिए जाती थी, उसी तरह यहाँ भी टॉयलेट के लिए बाहर जाती थी। तो जिस तरह से टॉयलेट का काम किया उसी तरह पानी का भी काम किया। हर घर में नल से जल, ये अपने आप में बहुत बड़ी योजना है। आज तक 70 साल में कांग्रेस के समय में कभी भी किसी के घर में पानी देने की व्यवस्था सरकार ने नहीं की। वो एक मोहल्ले में एक हैंडपंप डाल देते थे तो उनको लगता था हमने पानी की व्यवस्था कर दी है। यहाँ तो हर घर में और वो भी हर पर हेड 55 लीटर पानी उसको मिले, अच्छा पानी, क्वालिटी का पानी मिले, पूरी क्वांटिटी में मिले, इसकी व्यवस्था करने की बात थी। 16 करोड़ घरों में माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने पानी पहुंचा दिया। 3 करोड़ घरों में अभी जो पानी पहुंचाना है उसकी डेट भी तय कर ली कि दिसंबर 28 तक ये भी पूरा काम पूरा करना है। तो इससे हुआ क्या, जो 9 करोड़ महिला पानी लेने के लिए जाती थी, बोझ उठा के आती थी, उसमें मुक्ति मिली। 5.5 करोड़ घंटे उनके रोज पानी लाने जाने में उनके जाते थे, आज वो अपने फैमिली के दे सकते हैं, उसको आर्थिक उपार्जन में उसको खर्च कर सकते हैं। तो बहुत बड़ी बात हुई। WHO का रिपोर्ट कहता है कि इसके कारण 3 लाख बच्चों की जान बची है। जो पानी के कारण, जो गंदा पानी आता था उसके कारण जो बीमारी आती थी उसके लिए जो लोग अपना पैसा खर्च करते थे वो 8.4 लाख करोड़ रुपया वो लोगों का बचा। तो यानी एक योजना उसके पीछे कितने लोगों का फायदा हुआ। महिलाओं को पानी की मुश्किल दूर हो गई, टॉयलेट बनाने से महिलाओं की सुरक्षा और प्रॉब्लम सॉल्व हो गए। तो एक योजना के साथ महिलाओं को, युवाओं को, सबको ध्यान में रखकर ये योजना माननीय मोदी साहब भी बना सकते हैं और इम्प्लीमेंट भी वही कर सकते हैं, बाकी दुनिया में कोई नहीं कर सकता, वो काम मोदी साहब ने किया है।
1: मुझे याद है पाटिल जी, लास्ट टाइम आपसे जब मेरी बात हो रही थी तो आपने वो जल संचय के बारे में बताया था। आप दिल्ली आए थे और आप बता रहे थे कि पीएम ने किस तरह से कहा कि ये जल संचय वाला जो प्रोजेक्ट है इसको कैसे हमें पहुंचाना है। मेरे ख्याल से बहुत कम लोगों को इसके बारे में पता है।
0: देखिए, जल संचय से जन भागीदारी से जन आंदोलन में परिवर्तित करना चाहिए और कर्मभूमि से मातृभूमि में जल संचय के लिए सहयोग करना चाहिए। ये दो बात माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने 6 सितंबर 2024 को कही थी, एक वर्चुअल मीटिंग में कही थी। हमारा पहला टारगेट था 31 मई 2025 तक 10 लाख स्ट्रक्चर बनाने का टारगेट था। हमने अचीव किया, 27,50,000 पर हम पहुंच गए। हमने नया टारगेट लिया 31 मई 2026 तक 1 करोड़ तक पहुंचने का टारगेट लिया और हम 1,55,00,000 तक पहुंच गए। इसमें मनरेगा में से करीब 10 लाख स्ट्रक्चर बने, बाकी सभी जो स्ट्रक्चर बने वो छोटे से लेके बड़े बड़े जो स्ट्रक्चर बने वो लोगों ने अपने पैसों से बनाए। और इसमें छोटे छोटे भी है तो बड़े भी है। एक कच्छ में एक एंकर स्विच वाला जो है, उनका नाम है दामजी भाई एंकर, शायद वो अभी नहीं रहे, उनकी फैमिली है, वो बॉम्बे रहते हैं मगर वो लोग कच्छ के हैं। कच्छ में एक भूखी नदी है, वो भूखी नदी में पानी नहीं है, उसको सफाई करनी थी, उसको डिसिल्टिंग करना था। उन्होंने 50 करोड़ रुपया उसके लिए खर्च किए। एक व्यक्ति अपने गांव में नदी के लिए इतना पैसा खर्च सकता है, ये माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब के आह्वान के बाद ही हो सकता है। एक ऐसा आदमी है कि जब लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा था कि हमारे देश तकलीफ में है, हम एक टाइम का खाना छोड़ दो, लोगों ने खाना छोड़ दिया। मोदी साहब ने कोरोना के समय में कहा कि एक भी आदमी भूखा नहीं होना चाहिए। दोनों का डिफरेंस देखिए, कितना पॉजिटिव सोच है। और सिर्फ सोच नहीं, उसको अमलवारी भी करवाने की ताकत रखते हैं। तो ये जो उनका काम करने की जो सिस्टम है वो आपको देखेंगे, अटल बिहारी वाजपेयी जी का सपना था, उन्होंने कहा था कि रिवर लिंकिंग करना चाहिए, वो तो नहीं कर पाए, मगर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने पहले नर्मदा से साबरमती और साबरमती से कच्छ तक जितनी नदियां, तालाब, सरोवर आए वो सबको पानी से भर दिया। और पहला रिवर लिंकिंग था, केन बेतवा दूसरा रहा, मध्य प्रदेश और यूपी के बीच में 44,000 करोड़ का प्रोजेक्ट 2030 में वो पूरा हो जाएगा। उन्होंने PKC की एक नया योजना राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच में शुरू की, वो भी शायद 1,00,000 करोड़ से बड़ी योजना है। राजस्थान की जो पानी की किल्लत है वो आने वाले दिनों में जिस तरह से मोदी साहब काम कर रहे हैं तो पानी की किल्लत दूर हो जाएगी। और जो जल संचय की जो विशेषता ये है कि हम डैम बनाते हैं, डैम से पानी कैनाल में ले जाते हैं, तो कैनाल जहाँ तक पहुँचती है उसके अगल बगल के किसानों को फायदा होता है, मगर जो दूर दरार है, गांव दूर है, खेत दूर है, उसको पानी नहीं मिलता। जल संचय से हर गांव में जो बह के जाने वाला पानी खड्डे में जाता है, खड्डे से नाले में जाता है, नाले से नदी में जाता है, नदी से दरिया में चला जाता है। हमको उनको वहीं रोक देते हैं, खड्डे में ही बोर करके 100 फुट का उसमें पानी उतार देते हैं, खेत में भी 4x6 का खड्डा करके उसमें पत्थर डाल देते हैं।

0: एक बारिश में 4 से 5 लाख लीटर पानी वो खेत में नीचे जमीन में उतर जाता है। इसके कारण जो किसानों के कुएं हैं, बोर है, उसमें पानी ऊपर आ गया, जल स्तर बढ़ गया, जल की क्वालिटी सुधर गई। गांव में भी ऐसा हुआ, गांव के भी जो कुएं थे या बोर थे उसमें भी पानी का स्तर बढ़ गया, क्वालिटी सुधर गई। तो ये जल संचय अपने आप में बहुत बड़ा काम, इसके लिए कि हम हर जगह पर डैम बनाकर पानी नहीं ले जाएंगे तो ये जल संचय की वजह से हमको वहां की जो आवश्यकता है वो पूरी हो जाएगी।
1: आपको लगता है ये जो इसी तरह के विषय हैं, क्योंकि पुरुष तो बाहर नौकरी करने चले जाते थे या काम करने के लिए, महिलाओं को ये सारी चीजें झेलनी पड़ती थी, चाहे वो टॉयलेट वाली बात हो या अगर घर में पानी नहीं आ रहा है, नल नहीं है, यही जो एक विमेन वोट जो बना कि पहले जो महिलाएं बीजेपी के खिलाफ भी वोट करती थी, सारी की सारी महिलाएं अब मोदी मोदी करने लगी हैं। आपको लगता है यही वो वजह है?
0: एक वजह नहीं है, महिलाओं देखती है कि पहला आपको बताऊं, मैं गुजरात में जब आए थे उस टाइम में पावर नहीं आता था, महिलाओं को रसोई जल्दी बनानी पड़ती थी, जल्दी खाना खा के जल्दी बर्तन करके उनको वो बैठ जाती थी, और फिर उसके पास बहुत टाइम था और एंटरटेनमेंट के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी। मोदी साहब ने आकर एक सिंगल फेज अलग से लिया, पूरे गुजरात में सभी घरों में कभी लाइट नहीं गई, तो उनकी व्यवस्था हो गई, तो बहनों को जल्दी रसोई करने की आवश्यकता नहीं, जल्दी खाना खा के फिर फ्री हो जाएगा, तो ऐसा नहीं था, वो देर तक बैठ सकती थी, वो टीवी देख सकती थी, उसको एंटरटेनमेंट के लिए एक साधन बन गया। तो इसके लिए महिलाओं को लगा कि नहीं, हमारे लिए चिंता की है, तो उनके जीवन में एक प्रकाश आ गया, ऐसा उनका एक सिंगल फेज अलग से लिया, पूरे गुजरात में सभी घरों में कभी लाइट नहीं गई, तो उनकी व्यवस्था हो गई, तो बहनों को जल्दी रसोई करने की आवश्यकता नहीं, जल्दी खाना खा के फिर फ्री हो जाएगा, तो ऐसा नहीं था, वो देर तक बैठ सकती थी, वो टीवी देख सकती थी, उसको एंटरटेनमेंट के लिए एक साधन बन गया। तो इसके लिए महिलाओं को लगा कि नहीं, हमारे लिए चिंता की है, तो उनके जीवन में एक प्रकाश आ गया, ऐसा उनको लगा। आज देश में भी देखेंगे कि देश में अगर कोई भी पुरुष बाहर जाता है तो उसकी माँ, उसकी बहन, उसकी पत्नी, सबको लगता है कि सुरक्षित आ जाए घर में। ये सुरक्षा अगर किसी ने प्रदान की तो माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने की, आतंकवाद को खत्म कर दिया, नक्सलवाद को खत्म कर दिया, और जिस तरह से आज महिलाओं को उन्होंने प्रमोट किया, हर सेक्टर में प्रमोट किया, तो उसकी वजह से उनके मन में जो इच्छा थी, जो टैलेंटेड थी, मगर उनको मौका नहीं मिलता था, माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने महिलाओं को भी मौका दिया। सबसे पहले गुजरात में उन्होंने इलेक्शनों में वहाँ जिला पंचायत, महानगर पालिका, नगर पालिका, तालुका पंचायत में 50% महिलाओं के सीट रिजर्व कर दी, वो पहला इंसिडेंस था। बाद में आप यहाँ देखिए कि उन्होंने विधानसभा और लोकसभा के लिए भी 33% महिलाओं की सीट रिजर्व कर दी, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। महिलाओं को एक विश्वास आता है कि कोई हमारे लिए काम करता है, कोई हमारी चिंता करती है। आज ये सभी महिलाओं मोदी साहब की चिंता करती है कि उसके विरोधी जो है उनको ठीक रखना, उनको सत्ता से दूर रखना, इसमें महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान है।
1: आप गुजरात के सीएम के तौर पर मोदी जी और अब पीएम के तौर पर दोनों देखा आपने, कुछ अंतर आया क्या पहले वाले मोदी जी में और अब वाले मोदी जी में?
0: मैं मानता हूँ कि पहले भी मोदी साहब सामान्य जन के लिए काम करते थे, आज भी वही काम करते हैं। वहाँ उनकी मर्यादा थी, एक स्टेट के मुख्यमंत्री थे या देश के प्रधानमंत्री है, इसके लिए उनको एक काम भी उनका बड़ा है, तरीका भी थोड़ा बदल गया है, और मगर आप देखेंगे कि जो मुख्यमंत्री के तौर पे भी जो काम करते थे उसको भी उन्होंने यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया, और नई सोच के साथ, नई ताकत के साथ उन्होंने यहाँ पर भी कई योजना बनाई। हम कहेंगे कि अवकाश से लेकर पाताल तक हर जगह पे उन्होंने काम किया। हम चंद्र पर पहुंच गए, जो कभी हमारे लिए सपना था, तो उन्होंने कर दिया। आपको सुरक्षित करने के लिए जो फ्लाइट आई उसके अंदर भी महिलाओं को उन्होंने उनकी कमान सौंप दी। उसी तरह उन्होंने जमीन के ऊपर भी जो डेवलपमेंट के काम करने थे वो भी उन्होंने किए, सबमरीन भी नई नई बनाई, और जल को भी सुरक्षित करने का काम, यानी जल सीमा को भी सुरक्षित करने का काम भी उन्होंने कर दिया। आज भारत की ओर देखने का नजरिया लोगों का बदल गया है। आज भारत के लोग बाहर जाते हैं तो उनको सम्मान मिलता है, पहले तो उनकी कोई दरकार भी नहीं करता था, वो अपमान करते थे, आज वो बात नहीं रही। ये जो जाने वाले लोग थे पहले भी और अभी भी, उनको ये बात समझती, वो पूरी वो देखते भी है।
1: गुजरात का कई सारे वहाँ के किस्से जो हैं मैंने किताबों में पढ़े, और कई बार हमने जो मोदी जी के बचपन के दोस्त वगैरह उनके इंटरव्यूज देखे कि मोदी जी एक तो हर किसी को याद रखते हैं नाम से, और दूसरा हर बात की बारीकी में, डिटेल में जाते हैं, काम के मामले में भी और वैसे भी। तो जब आप वहाँ पर थे गुजरात में, कोई ऐसा एग्जाम्पल है कि अगर उनको कुछ गलत बता दिया हो तो वो एकदम पकड़ लेते हैं कि भाई ये यहाँ पे तथ्य गलत बोला गया है?
0: वो तो पूरा देश जानता है कि बहुत शार्प है, उनको कोई गलत बता के उन्हें कोई ठग जाए ऐसी कोई बात ही नहीं हो सकती, और उनका जो डिटेलिंग करने का काम है उसके अंदर कोई भी आदमी उनको कोई गलत कुछ बता भी नहीं सकता।

0: और वो जो सुनते सबकी और करते हैं अपने मन की, क्योंकि उनको अपने आप में भरोसा है, उनका प्लानिंग होता है, बहुत माइक्रो लेवल पे वो प्लानिंग करते हैं और परिणाम लाके देते हैं। गुजरात में पहली बार महानगर पालिका अगर किसी ने जीती थी, अहमदाबाद महानगर पालिका, तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने जीती थी। तो ये वहीं से उनकी जो शुरुआत हुई थी, वहीं से वो जीत के लिए ही उनका जन्म है, जीतते ही जाते हैं, उन्होंने कभी हार का मुंह नहीं देखा और ना कभी देखेंगे।
1: आपने कोई एक चीज जो उनसे सबसे ज्यादा सीखी हो, जिसको आपने अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट आपने कर रखा हो? बिल्कुल,
0: एक बार 26 जनवरी का दिन था, आवा डांग में उनका कार्यक्रम था और वो जो साफा लगाते हैं, तो ये साफा मुझे लेके जाना था और मैं 2 मिनट लेट पहुंचा, सिर्फ 2 मिनट। उन्होंने किसी से बंधवाना शुरू किया, जैसे उसने अभी तो वो रखा ही था, हाथ में ही पकड़ा था, और मैं पहुंच गया था। मुझे उन्होंने कुछ बोला नहीं, मुझे ऐसे लगा कि सीआर ये कैसे चलेगा। मैंने कहा सॉरी सर, उन्होंने और कुछ भी नहीं बोला मुझे।

0: तक वो बात याद भी है। इसका मतलब तो वो बहुत सरल तरीके से अपनी बात बता देते हैं, लेकिन छवि उनकी ऐसी बनाई जाती है कि एकदम बहुत दहशत रहती है उनको देख करके।
1: नहीं नहीं, वो तो देखो अपने काम से मतलब रखते हैं। मैं एक इंसिडेंस आपको और कहना चाहूंगा। 2014 का लोकसभा का इलेक्शन वो लड़े, काउंटिंग में करीब 10-15 दिन का टाइम था। एक बार उन्होंने वहाँ के सभी सेक्रेटरी और जो गांधीनगर में है सभी आईएएस अधिकारी और सभी एमपी सबको स्पाउस के साथ बुलाया था हम, और वहाँ उन्होंने उनका कॉन्फिडेंट लेवल आपको उसमें दिखेगा कि उन्होंने कहा कि मैं अभी दिल्ली जा रहा हूँ। काउंटिंग के पहले 15 दिन पहले कोई व्यक्ति जो कभी दिल्ली नहीं गया वो कहता है कि मैं अभी दिल्ली जा रहा हूँ, और मैंने इसके लिए बुलाया कि मेरे बारे में बहुत सी चर्चाएं होती है, बहुत सी अफवाहें चलती है। कोई कहता है कि मोदी जी ने किसी अधिकारी को गेट आउट कह दिया, किसी को फाइल फेंक दी, गुस्सा कर लिया। तो उन्होंने कहा कि मैं आदमी हूँ, मुझे भी गुस्सा आ जाता है, और मैंने आज तक कभी किसी भी अधिकारी को गेट आउट नहीं कहा, मैंने कोई भी अधिकारी के ऊपर कभी गुस्सा नहीं किया, मैंने कोई भी फाइल कभी अधिकारी को फेंकी नहीं। मुझे अगर गुस्सा आया होगा तो मैंने वो फाइल लेकर साइड में रख दी होगी, इससे ज्यादा मैंने कोई रिएक्ट नहीं किया। आपके मन में होगा यहाँ सब अधिकारी के

0: से कर रहे हैं। ये भी आपको दिखेगा कि ये भी अपने आप में बहुत बड़ी योजना ये भी बनी है। किसानों के लिए कभी कोई योजना नहीं बनी, उनके लिए भी 6000 रुपया साल में 3 बार डाल देते हैं, बिल्कुल समय पर देते हैं। और युवाओं के लिए भी उन्होंने कितनी कोशिश की, पहले तो नौकरी लगाना है तो आपको किसी की सिफारिश चाहिए, पैसा चाहिए, जमीन देनी पड़ती थी। आप देख रहे हैं कई लोगों के ऊपर उसके केस भी चल रहे हैं। यहाँ पारदर्शिता से जो वो अभी उन्होंने 51,000 बच्चों को अभी रोजगारी का अपॉइंटमेंट लेटर दिया, एक सेकंड में पूरे देश में 50,000 लोगों के हाथ में अपॉइंटमेंट लेटर आ गया। ना उसको कोई सिफारिश करनी पड़ी, ना किसी को कुछ पैसा देना पड़ा, ना जमीन देनी पड़ी। तो उससे युवाओं को भी विश्वास हो गया कि यह आदमी युवाओं के लिए भी कुछ करना चाहता है, और वो युवा कोई निराश ना हो जाए, उसके पहले उसको कोई चांस मिल जाए, तो उसके लिए भी उनकी कोशिश रहती है।
1: ये जो नैरेटिव बनाने की कोशिश होती है हमेशा कि मतलब देश में आर्थिक सुनामी आ जाएगी, अर्थव्यवस्था डिरेल हो चुकी है, तमाम चीजें ऐसी बातें बताने की कोशिश होती है, उस नैरेटिव को कैसे देखते हो आप?
0: जब पूरे विश्व में सभी जगह युद्ध चल रहा है, एकमात्र हमारा देश है वो भी माननीय मोदी साहब की जो पॉलिटिकल जो सेंस है उनकी जो विदेश नीति है उसके कारण हम बिल्कुल शांति से रह रहे हैं। पूरी दुनिया में युद्ध है, एक जगह नहीं है, दो देश के बीच में नहीं है, मगर हम बिल्कुल शांति से रहे, हमें कोई भी युद्ध का डर नहीं लग रहा है, हम न्यूज तक नहीं देखना चाहते कि युद्ध में क्या हो रहा है। तो ये जो पोजीशन परिस्थिति जो आई है वो तो मोदी साहब की वजह से है। तो ये जो ग्रोथ है ऐसे समय में, कोरोना के समय में, कोरोना के बाद में, युद्ध के समय में, इतना GDP जो आया है वो खुद ही रिकॉर्ड है। मनमोहन जी तो अर्थशास्त्री थे, उस टाइम तो हम 11वें नंबर पे थे, हमारी आर्थिक व्यवस्था 11वें नंबर पे थे,

0: व्यवस्था करना, तो हर क्षेत्र में डेवलपमेंट हो, महिलाओं का हो, युवाओं का हो, देश का हो, चंद्र पे जाना है, अवकाश में जाना है, हमें फाइटर प्लेन लेने हैं, अच्छी सबमरीन लेनी है, वो भी देश में बनाना है, तो सब काम एक ही आदमी इतनी ताकत के साथ कर रहा है। और ये बैठे बैठे बस उनकी एक ही सोच है कि बस हमें प्रधानमंत्री बना दो। क्यों बना दो? उसका कोई वजह नहीं है उनके पास, उनको खानदानी ये सीट उनकी है ऐसा उनको लगता है। ये चाय वाला कैसे आ गया? ये चाय वाला पूरे देश के लोगों की चाहना लेकर आया है और इसको हटाना किसी के लिए भी मुमकिन नहीं है।
1: चलते चलते पाटिल साहब, मैं यही जानना चाहूंगी, जब प्रधानमंत्री को आप सब लोगों ने ग्रीट किया, स्टैंडिंग ओवेशन दी, इतना रिकॉर्ड पीएम ने बनाया, प्रधानमंत्री का क्या रिएक्शन था?
0: नहीं, मोदी साहब ने सबका आभार व्यक्त किया, सबको धन्यवाद दिया।
1: ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सीआर पाटिल जी, क्योंकि ये जो बातें आपने बताई इसीलिए बहुत ज्यादा अहम ये बातचीत थी कि मोदी जी के साथ ये अपनापन और जो पल आपने बिताए हैं, बहुत ही कम लीडर्स ऐसे हैं जो उनके साथ इस तरह से बारीकी और करीबी के साथ में रहे, इसलिए ये बातें शायद कोई और नहीं बता पाता। बहुत बहुत शुक्रिया।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल के साथ विशेष साक्षात्कार। साक्षात्कार कर रही थी रीमा पराशर। अब सुनिए मोबीक्विक के संस्थापक बिपिन प्रीत सिंह के साथ पत्रकार शिशिर सिन्हा की विशेष बातचीत।
3: नमस्कार। 26 मई 2014 यही वो तारीख थी जब नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने करोड़ों भारतीयों के सपने, उम्मीदों और आकांक्षाओं के साथ भारत की सत्ता संभाली थी। तब से लेकर अब तक 12 वर्ष बीत चुके हैं और इन 12 वर्षों में जनता ने दो बार आशीर्वाद मोदी सरकार को दिया है। मोदी सरकार का तीसरा कार्यकाल चल रहा है। इन 12 साल में हमने कई नीतियां देखी। जमीन 2014 यही वो तारीख थी जब नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने करोड़ों भारतीयों के सपने, उम्मीदों और आकांक्षाओं के साथ भारत की सत्ता संभाली थी। तब से लेकर अब तक 12 वर्ष बीत चुके हैं और इन 12 वर्षों में जनता ने दो बार आशीर्वाद मोदी सरकार को दिया है। मोदी सरकार का तीसरा कार्यकाल चल रहा है। इन 12 साल में हमने कई नीतियां देखी, जमीन पर उतरती हुई नीतियां देखी। सभी के फोकस में, सभी के केंद्र में आम आदमी था और एक ऐसी ही नीति थी डिजिटल इंडिया को लेकर। और जब हम बात करते हैं डिजिटल इंडिया की, तो हमें ये समझना जरूरी हो जाता है क्या कुछ हुआ है, क्या कुछ हो सकता है, क्या कुछ होने वाला है, नीतियों में क्या कुछ बदलाव संभव है, क्या कुछ बदलाव की उम्मीद करते हैं। और इन्हीं बातों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मोबीक्विक के फाउंडर और सीईओ विपिन प्रीत सिंह। बहुत बहुत स्वागत है विपिन आपका। मेरा पहला सवाल आपसे यह है कि अभी के समय में अगर हम भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति देखें और 12 वर्षों में अगर भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति देखें, तो आपने जिस तरीके से आपका सफर रहा है उसमें आप अर्थव्यवस्था का आंकलन कैसे करते हैं?
4: पहले तो शिशिर जी धन्यवाद मुझे इस प्रोग्राम में इन्वाइट करने के लिए। और मोबीक्विक जो मैंने कंपनी स्टार्ट की थी करीब 17 साल पहले, उसमें से 12 साल मोदी सरकार के अंदर ये कंपनी खड़ी हुई है। मैं आपको बताना चाहता हूँ सन 2014 में ही मोबीक्विक को सबसे पहली फंडिंग मिली थी और उसके बाद मोबीक्विक ने करीब करीब 2000 करोड़ रुपए पिछले 12 साल में डिफरेंट तरह के इन्वेस्टर्स से उठाए और बिजनेस

0: इंडिया की जो एक मुहिम बनी जिसके अंतर्गत ये सब हुआ कि आधार, पैन, जनधन अकाउंट्स खुले इतने सारे, अभी हर पर्सन के पास, हर इंसान के पास अकाउंट है, तब नहीं थे। तो ये जो नीतियां थी डिजिटल इंडिया के अंडर, जो एक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो बनाया गया इंडिया में, डिजिटल डीपीआई कहते हैं इसे, इसका बहुत बड़ा योगदान है। क्योंकि जब तक एक इंसान अपनी डिजिटल में पहचान नहीं बना सकता, तब तक वो डिजिटल पेमेंट भी नहीं कर सकता, और अब डिजिटल लोन भी नहीं ले सकता, डिजिटल इन्वेस्टमेंट भी नहीं कर सकता। इन सबको जो साथ में जोड़ा गया है जिस इंफ्रास्ट्रक्चर के थ्रू, आई थिंक वो एक बहुत बड़ी कामयाबी है, जो कि इवन बड़े बड़े वेस्टर्न कंट्रीज में भी आज तक अचीव नहीं हुए।
1: एक जो बड़ी पहल जिसको हम कहें जैम ट्रिनिटी की, हम लोग बात करें, आपने अभी जनधन की बात की थी, आपने आधार की बात की, आपने मोबाइल का बात किया, और 2015 से हमने देखा कि जैम ट्रिनिटी किस तरीके से समाज के आखिरी पायदान पे बैठे हुए व्यक्ति तक जो भी सरकार की योजना है उसका फायदा पहुंचाने में मदद की। इस जैम ट्रिनिटी को आप कैसे देखते, क्योंकि एक समय जैसा आपने खुद कहा कि एक मोबाइल फोन को लेकर के हम एक बार सोचते जरूर थे, और हमें वो भी दौर याद है जो आज से अगर मैं 20-25 साल पहले जाऊं, जब 16 रुपए का एक कॉल होता था तो लोग कहते थे मिस कॉल मार देना। वो मिस कॉल मार देना आज भी हमारे मोबाइल कल्चर का एक पार्ट है। ये अलग बात है कि अब हम उस मोबाइल पे 16 रुपए की चिंता नहीं करते, बल्कि मिस कॉल मार देना एक बात कहते हैं। ये मिस कॉल मार देने से जनधन, आधार, मोबाइल, ये ट्रिनिटी को आप किस तरीके से देखते हैं, समाज के आखिरी पायदान पर व्यक्ति जो है उस तक सामाजिक योजनाओं का फायदा पहुंचाने।
0: इसमें सबसे पहले जो मोबाइल की मैंने बात की कि जब इंडिया में 4G आया या 5G आया और नए ऑपरेटर्स आए जैसे जियो आया या एयरटेल ने बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट की, इसके ये एक बहुत बड़ा पॉलिसी का पुश था सरकार की तरफ से कि आपको, इंडिया एक बहुत बड़ा देश है, 100 करोड़ से ऊपर की आबादी है, तो सबसे पहले हर बंदे के पास, हर पर्सन के पास एक मोबाइल फोन होना चाहिए और उसके अंदर डेटा और कॉलिंग ऑलमोस्ट फ्री होनी चाहिए, और वो हुआ, आप हमने पिछले 10 सालों में देखा है। तो इसका एक बहुत बड़ा योगदान था। इंडिया आज की डेट में दुनिया के आई थिंक नंबर 1 या नंबर 2 डेटा कंज्यूमिंग कंट्रीज में है। हम डेटा यूज करने से पहले सोचते भी नहीं, जबकि यही 10 साल पहले कोई भी ऐप डाउनलोड करने से पहले या कोई वीडियो देखने से पहले आप सोचते थे कि इस पे कितना GB डेटा, MB डेटा जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है, बिकॉज इस चीज को हर दर्जे के लोगों तक पहुंचाना, वही एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। दूसरा है आधार। तो आधार के ऊपर तो ऐसा है कि डिजिटल आइडेंटिटी जब तक नहीं होगी तब तक आपका अकाउंट भी नहीं खुल
1: सकता,
0: तो ये उसको पूरा डिजिटाइज करना और उसके प्रोसेसेस को इस तरह से स्ट्रीमलाइन करना कि कोई भी पूरे देश में, उस दिन मुझे अपने आधार में कुछ चेंज कराना था, मुझे 5 मिनट लगे। मैं एक नियर बाय एक बैंक में एनरोलमेंट सेंटर में गया और मैंने वहां पे अपना ऑथेंटिकेशन किया और मुझे कुछ एड्रेस चेंज कराना था, वो इमीडिएटली वहां पे हो गया। इस तरह की सुविधा हमारे देश में नेशनल लेवल आज तक कभी नहीं थी, तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, जिससे आप ये देख सकते हो कि ये आइडेंटिटी है इस पर्सन की और इस आइडेंटिटी के ऊपर आप इसका अकाउंट खोल सकते हो। हमारा देश अभी भी गांव में बसा है, हालांकि शहरों ने काफी तरक्की की है, बट करीब 30-35% आज भी गांव में है और सेमी अर्बन है। हर इंसान बैंक में जाके कंफर्टेबल नहीं रहता था, और बैंक भी जो होते थे, जो इंस्टीट्यूशंस होते थे, वो हर एक का अकाउंट खोलने में इंटरेस्टेड नहीं रहते थे। ये सच्चाई है, क्योंकि अगर किसी की तनख्वाह कम है या उसके अकाउंट में पैसे नहीं रखने हैं तो उसका अकाउंट खोलना मतलब आपको एक लॉस उठाना है। तो उसके ऊपर जो जनधन अकाउंट्स की पॉलिसी बनी, जिसके ऊपर हमारे बैंकों ने काम किया और सबके अकाउंट खोले, वो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो आज की डेट में मेरा ये मानना है कि 90% लोगों के पास बैंक अकाउंट है, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। आज की डेट में आप छोटा बच्चा देखो, आप एक बूढ़ा देखो, कोई रिटायर्ड पर्सन देखो, आप गांव में चले जाओ, आप किसी को भी डिजिटल पेमेंट इसीलिए कर पाते हो क्योंकि उनके पास बैंक अकाउंट।
1: तो एक डिजिटल सिस्टम का एक ये भी फायदा हमें इस स्वरूप में देखें कि जब पहले कहा जाता था कि केंद्र से 1 रुपया चलता था और 15 पैसे लोगों तक पहुंचते थे, आज हम बात करते हैं कि लाभार्थी का जो भी बेनिफिशियरी है उसकी पहचान साबित हो जाती है डिजिटल माध्यम से, और डिजिटल माध्यम से ही लेन देन हो पाता है। ये जो हमारे पास रिसोर्सेस का जो एक बेहतर इस्तेमाल है, ये डिजिटल माध्यम से और भी बेहतर तरीके से हो पाया, इसका फायदा आप किस तरीके से देते हैं?

0: गवर्नमेंट की बजटिंग की अगर हम बात करें, गवर्नमेंट की फाइनेंशियल प्लानिंग की बात करें, फिस्कल प्लानिंग की बात करें, उसमें उसका योगदान किस तरीके से?
1: देखिए, डिजिटल का सबसे बड़ा फायदा यह है कि डिजिटल बिल्कुल साफ होता है और डिजिटल में पेपर का यूज मिनिमम होता है और इसीलिए डिजिटल में लीकेज बहुत कम होता है। वरना हमारे देश में जहाँ पे इतने गरीब लोग हैं, सरकार हमेशा से उन पे पैसा खर्च करना चाहती थी और खर्चती है भी और 12 साल पहले भी खर्चने की कोशिश करती थी, बट वो उन तक पहुंच नहीं पाता क्योंकि वो इतने स्टेप से जाता था, इतनी लेयर से जाता था कि वो जैसा कि आप बता रहे हैं 1 रुपए की जगह 15 पैसे। बट अब जब सरकार ने DBT बनाया, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, जनधन अकाउंट सबके पास है, तो आपको किसी को गैस की सुविधा के लिए पैसे देने हैं, आपको बिजली की सुविधा के लिए पैसे देने हैं, आपको खाने की सब्सिडी देनी है, किसी भी तरह की सब्सिडी देनी है, आपके पास उस इंसान की पूरे डिटेल्स हैं, उनके बैंक अकाउंट हैं, उनकी आइडेंटिटी है, आप डायरेक्टली उनके अकाउंट्स पे एक क्लिक करके पैसा ट्रांसफर कर सकते हो।
0: विपिन, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने डिजिटल इकोसिस्टम, डिजिटल पेमेंट, डिजिटल रिवोल्यूशन की हम लोग बात करें, उसमें बहुत सारे हो रहे बदलाव पे आपने चर्चा की, आपका आभार, नमस्कार।
2: 12 साल विश्वास के विकास के जन कल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे मोबिक्विक के संस्थापक विपिन प्रीत सिंह के साथ पत्रकार शिशिर सिन्हा की विशेष बातचीत। ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज़ ऑन AIR ऑफिशियल पर भी उपलब्ध है।

आप सुन रहे हैं FM 103.2 MHz पर आकाशवाणी झालावाड़ का चंद्रभागा चैनल। शाम के 7:45 हुए हैं और आइए अब सुनते हैं किसान साथियों के लिए कार्यक्रम किसानवाणी।

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं,
2: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाएं।

आप सुन रहे हैं FM 103.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी झालावाड़ का चंद्रभागा चैनल। शाम के 7:45 हुए हैं और आइए अब सुनते हैं किसान साथियों के लिए कार्यक्रम किसानवाणी।

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं,
2: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए।
3: आपने और फिर जो आपने बताई ना बाणे के खाद कोरी को अपनी चने ये ज्यादा से ज्यादा कोशिश यह करनी चाहिए, जैविक जो अपने खेती चल उनकी ओर अपने किसानों के ताई ये करनी चाहिए, तो खाद के ताई मतलब आपने डाल दिया मतलब यूं।
4: हाँ, यो ही टर्म जो देखो।
3: हाँ, हाँ।
4: और एक और बात च जो बीज आपने बोऊंगा तो वहाँ की किस्म भी तैयार कर ला के भाई किसी किस्म का उन्नत किस्म होनी चाहिए।
3: हाँ, हाँ।
4: ताकि जो फसल उत्पादन होगी तभी अपनी मजो आओगो।
3: हाँ, और बीज में तो आप जानो छो, देखो बीज तो बहुत महत्वपूर्ण छे। कई करसान भाई बने के पास छे ना, जे एक तो आपनो पास बीज जो छे ना जे पुरानो बीज रहे छे और उनके ताई काम ले ले छे, या फिर पुरानो बीज न हो के और अगर आपने नयो बीज लाओ तो वो तो उपचारित रही छे। पर अगर बना उपचारित बीज आपने के ताई लानी पड़ जाओ या अपने घर न सु अपनी भूनी पड़े छे। अरे मेरे मीना जी घना तो करसान ऐसा रहे जे छे ना जे बीज का ही ठिकाना न रहे। और जब वो और बागो टर्म जब अट्यूटी से मांगता रहे कर भाई अथार पास थोड़ा उन्होंने बीज है तो असी आपने नौबत ना आनी चाहिए जी बीज के आपने पूर्व तैयारी कर लिया, मतलब आपनों जो विषय है आज को वो चाहिए खरीफ के पूर्व तैयारी कहीं कहीं करा तो बीज के ताई आपने और बीज के ताई अच्छी तरह से देख लिया भाड़ लिया उनके बाद ही आपने बीज बढ़िया उन्नत किस्म को नहीं चाहिए।
4: बिल्कुल। हाँ। और देखो आपको खबर को मतलब जगह किसान के ताई जागरूक रहो जरूरी
3: है। हाँ।
4: यो ही टर्म च कबार जागरूक हो जाओगा तो वही साल भर परेशानी ना होगी।
3: बिल्कुल यह बात है। और बीज के ताई आपने या तो कोई अच्छो आपने किस्म को बीज बो दिया या फिर ना तो घर नहीं जो बीज रहे ना तो उनके ताई अपने एक तो उपचारित कर लिया और उपचारित करवा के बाद भी एक बार आपने देखा होगा ये घना जो किसान भाई बहन है वो अपन बीज के ताई फली एक बार कहीं भी मिट्टी मरी में अंकुरित करके देख लिया होंगे तय गण का दाना डाल दिया का भाई ये 10 दाना 20 दाना 100 दाना जो भी है ना वही डाल दिया और उनके बाद फिर कतरा उग रहा है फिर वो अपना 100 में से मान लो 90 उग गया या 80 उग गया तो उनका अनुसार ही फिर अपनी बीज की जो बुआई की दर है वो अपनी रखानी चाहिए जी।
4: बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात आप बता रहे जो मैं किसान भाई यहाँ बताएं तो वो देखो तैयारी कर ले।
3: हाँ, हाँ।
4: भाई खरीफ पूर्व की तैयारी काय काय कर।
3: और मीना जी एक और आपने खरीफ के पली समस्या वाली रज वो अच्छे करसान भाई बनिया के एक क ये जो अवशेष बच जाओ छे यहाँ के ताई ये काय करे जगह जड़ा दे
4: जड़ा दे
3: तो यह भी एक छोकी बात कोई ना क्योंकि अवशेषा के ताई जड़ानी ने चाहिए जी यहाँ के ताई छे ना जी मिट्टी में मिला दे अपन अबान जिसे अपन गरी जुताई करा तो वो टर्म अपन मिला दे जा। अब करसान रह जगह वहाँ के मन में यार जगह माँ के ताई छा जगह जड़ा सूचो ना जे जमीन साफ हो जाओ छे अपन उस आपने घना सारा असिया जो आपने जो रज केचुआ छे
4: ये छे
3: तो वो मर जाओ छे तो अपनी उसे उत्पादन क्षमता कम हो छे तो इन बात को भी विशेष तौर से
4: फर्क पड़ा छे।
3: हाँ हाँ। और फिर एक आपने जो अपन गर्मी की टर्म पर जो असाढ़ की टर्म पर काम करवाड़ो काम छे वो छे एक मिट्टी की जो आपने जांच छे तो ई को भी जरूर थोड़ा सो ध्यान रखानी चाहिए क्योंकि अबाण का जगह खेत खाली छे और खेत खाली टर्म पर मिट्टी की जरूर अपनी जांच करवा लेनी चाहिए जी।
4: हाँ, उसे पतो लाग जाओ जो कि भाई आपने मिट्टी में खाई की कमी जो
3: जिस हाँ, हाँ,
4: जो भी पोषक तत्व रच उक अनुसार ही फिर किसान भाई उमर डाल
3: और मिट्टी को अपनी एक जो नमूनो ले ना तो नमूना के लेकर अपनी जन ये देखो खेत कोई सी भी आपने नुकीली जो चीज है उसे कम से कम अरे या फिर आपने जो खेत है उमा 5 से 10 जगह अलग अलग स्थान का अपनी नमूना चुननी चाहिए जी उमा अलग अलग जगह का अपने नमूना लिया साथ में चना जे जब आपने नमूना लिया तो उमा भी ध्यान रखना ऊपर ऊपर की मिट्टी ना लेकर और गहरी जो नीचे की 2-4 उंगल जो मिट्टी अपने जिस ग्रामीण में खाँचे तो 2-4 उंगल छोड़ कर और नीचे की मिट्टी अपनी लेनी चाहिए।
4: खबर को मतलब

0: आपको गड्ढा की जो एक तरफ से ऊपर से ला और ऊपर से नीचे ताई की मिट्टी पतली परत निकाला, मतलब
1: हाँ
0: मिट्टी
1: हाँ
0: की
1: हाँ
0: उकी।
1: और फिर वह जो मिट्टी छे वो
0: हाँ
1: मिट्टी के ताई सारी आपने मिला लिया, मिला के एक बारीक कर लिया उनके ताई बढ़िया, और बारीक करके और कोई भी थैली छे कपड़ों छे उम अपनी बांध कर। और फिर एक चीज़ को जरूर अपनी ध्यान रखानू कि जो भी आपने मिट्टी हो चार पांच जगह की वह मिट्टी मिलावा के बाद जी भी अपने थैली में उम पूरा अपनी पतो लिख कर, और आपने जो झालावाड़ छे तो यहाँ मिट्टी जो परीक्षण केंद्र छे उनका ताई छे या फिर कृषि विज्ञान केंद्र छे तो इमें उनका ताई अपने भेज दिया।
0: और एक और विशेष बात जो मिट्टी का देखो सुखा के ले जानी चाहिए जी।
1: हाँ हाँ यह बात बहुत बढ़िया किया आपने, क्योंकि और मिट्टी के ताई मान लो सूखा के और गीली मिट्टी ले जाऊंगा तो उसे भी फिर करसाना ग्रह थे ना का माँ का जो माने परीक्षण तो करवायो पर उनको माँ बराबर लाभ न मिल पायो, या फिर जने जे आप जानो जो के मिट्टी परीक्षण के बाद भी करसान सत्यांग ताई जने जे खर्च के माँ का उम अपनी एक फायदा और हो चे कि भाई आपने खेत में जो भी आपने पोषक तत्व छे तो वहाँ जो भी पोषक तत्व वहाँ की कमी रह चे वह कमी की पूर्ति हो जाओ चे, और उसको अपनी पतो लाग जाओ चे कि भाई ये पोषक तत्व वहाँ की आपने कमी छे। और एक मीना जी अपन आपने जो जो काम करवा की बात जो है ना वह अच्छे खेती बाड़ी मरी में एक जो जल के ताई निकासी करवा, क्योंकि अब थोड़ा दिन बार पाचे वहाँ मानसून ना जाओगे और उनके बाद अपना खेत जो अपनी फसल जो बर्बाद की रही की संभावना रह जाए तो ऊँ टाइम पर फिर जल निकासी के ताई लेकर कहीं कहीं फिर सावधानी रखनी चाहिए।
0: देखो या बहुत बढ़िया बात चक फली से ही अपनी अलर्ट हो जानो चे जागरूक रहनो चक। जब वर्षा ज्यादा भी हो चे कदी कदी तो खेत आम पानी भर चे तो फिर आपनी फसल गल चे, तो ई के लेकर जो अतिरिक्त पानी रह चे ज्यादा पानी रह चे तो उई निकाल बा के लेकर अपनी बार नाले बना लेनी चाहिए जी।
1: हाँ हाँ यह बात तो सही है, नाली
0: क्योंकि
1: बनाऊंगा तो उसे कहे अपनी जल निकासी हो जाओगी और फसल गड़बाई आपने संभावना कम रह चे।
0: कम रह चे।
1: ये अबान ये कहचन छोटी छोटी जो सावधानियां चे यहाँ को अपनी बराबर अबान ध्यान रखना भाई की बहुत ज्यादा आवश्यकता चाहिए इसनी। और यही के अलावा जैसे उरूर रख चे आपने तो वहाँ की भी फली सुई व्यवस्था कर लिया ना
0: हाँ
1: अबानी
0: तो
1: कहचन के
0: भाई
1: टर्म के पहले पार बांध लेनी अबानी आपने जो भी खाद बीज जो भी अपनी लानो चे वो सारी असाडी की जो व्यवस्था चे वो अपनी अबाने जमा लेनी चाहिए।
0: जैसे आपने बताया कि मिट्टी को परीक्षण करांगा अपन, तो परीक्षण कराबा के बाद पता लागी जाओ जी
1: हाँ हाँ
0: कैसा
1: सही चे
0: उर्वरक आपनी डालनी चाहिए जी, तो आपनी जो पैदावार होगी ये सब बातें देखो खबा में तो छोटी छोटी लाग रही छे पर यहाँ को आपने विशेष ध्यान रखनो छे और सब चीजें की तैयारी अपन कर लेंगे बाहर से तो फिर अपनी काई भी परेशानी न होगी और फसला भी देखो बढ़िया होगी।
1: तो या तो आपने वाण आपने करसान भाई बनिया के ताई बताए कि खरीफ का पूरा आपने काई काई तैयारी करा, पर खरीफ का पूरा तैयारी करबा के पहली जो आपने करसान भाई बन छे वो खेती बाड़ी मरी में काई काई ध्यान रखान रहे छे और की प्रकार से वो तैयारी कर रहे छे तो आज आपने करसान से एक बातचीत भी तो करेंगे ना, कैसे करसान ले रहे छो आज आप हो?
0: आज अपना कार्यक्रम में आया छे महेश जी नागर, ये प्रगतिशील किसान छे। देखो ये खाद्य उत्पादन तो करे ही छे, एक साथ ही ये बागवानी करे छे पशुपालन करे छे, तो वहां से मिलाओ जा अपना किसान साथिया ना तो सुनाया भेंट वार्ता।
2: राम राम साहब,
3: राम राम जी, राम राम।
2: काय नाम छे आपको?
3: आपनो नाम महेश नागर है?
2: महेश जी काय करो छो आप?
3: कौन खेती बाड़ी संभाल रखी छे आपन?
2: अच्छा तो मतलब कहाँ तक पढ़ाई लिखा छो आप?
3: आपन सीसी करी जी, मैं तो मैट्रिक्स हूँ, पर
2: अच्छा
3: कोरोना का टाइम फिर जॉब वॉब चल गई जी, फिर आपन किसान फैमिलीज बिलोंग कर जा जी यार खेती बाड़ी संभाल वाला आ गया।
2: या तो बहुत बड़ा बात है, देखो का आप पढ़ा लिखा हो और भी खेती बाड़ी से जुड़ रहे जो, और या आपने खजाना पूछते नहीं चीजा जो भाई जमीन वमीन का तीख
3: हाँ जमीन
2: जाकी।
3: 20 एकड़।
2: अच्छा तो काय काय बाऊ जो आप?
3: मानो खरीफ का टाइम तो सोयाबीन और धान बादे जा,
2: हाँ
3: और रबी का टाइम लहसुन और गेहूं चना सरसों
2: अच्छा
3: ऐसे
2: तो
3: फसला
2: मतलब
3: बादे।
2: बदल बदल फसला बो जो आप, बहुत सारे फसला बो जो।
3: हाँ फसल बदल बदल बाबा से जगह फसल चक्र अपना बस कहे जो थोड़ा उत्पादन में डिफरेंट आओ जर थोड़ा सा जो खरपतवार वगैरह रह जाए वहाँ भी रुकावट हो जाए,
2: अच्छा
3: और थोड़ी देखो आप जानो जो कि दलहनी या अनाज या सब्जी वर्गीय फसल बाबा से थोड़ो आमदनी में भाव हुआ ऊपर नीचे रह जो भी सारो बैलेंस बढ़ जाओ।
2: सही बात है, देखो मौसम की मार तो कदी भी पड़ सक, और भाव की बात करा तो भाव तो आओ भी देखो आ जाओ, जैसे जो कोई जरूरी को ना कि एक की अपन जो फसल बो रहा है वो को भाव बढ़िया ही रहे तो आप।
3: हाँ

0: कतई ज्यादा मुनाफा लेबा लेख या फिर आपने मेहनत को फल भी बढ़िया मिला ई लेख आप बताया कि
1: हाँ
0: भाई माँ सभी तरह की फसला पहुंचा। तो
1: हाँ
0: मैं
1: जी
0: इसी आप या बताओ कि जैसा बार लगभग बरसात को टर्म भी आबा मई च और
1: हाँ
0: तो खरीफ की फसल की काय तैयारी कर रहे जो
1: अब आवण तो देखो, अब सोयाबीन को उराई को टाइम आबड़ो जो जुलाई का फर्स्ट वीक में, तो आप उनको लेकर खेत की तैयारी कर रहा जा, हका जुताई चारी है, और जिसे कि जमीन की उपजाऊ क्षमता मिट्टी की क्षमता बड़ा भाग लेकर उनमें गोबर की बढ़िया सड़ी हुई खाद डाल रहे जा,
0: अच्छा
1: और थोड़ी बहुत केचुआ खाद जो आपन केचुआ से बना हुआ भी डाल रहे जा,
0: तो
1: तो
0: जैसा
1: ऐसा क्या
0: केचुआ
1: होगा आपने बढ़िया
0: खाद
1: उत्पादन बढ़िया
0: बनाओ,
1: होगा।
0: केचुआ खाद आप ही बनाओ जो भी।
1: केचुआ खाद थोड़ा बहुत तो आपने भी बना लिया जा, और बाकी अगर ज्यादा मात्रा में चाहो तो वह आपन खरीद भी लिया जा।
0: अच्छा हाँ तो केचुआ खाद खरिया जो आपको उत्पादन बढ़िया हो जाए।
1: हाँ जी
0: अच्छा तो जैसा यह बहुत ही बढ़िया बात आपने बताई कि आप फल से ही तैयारी कर रहे हैं जो मतलब खाद सड़ी हुई खाद डाल रहे हैं जो देसी खाद आप
1: हाँ
0: डाल रहे
1: जी
0: हैं जो ताकि जो उत्पादन होगा आपने फसला होगी वो बढ़िया होगी।
1: हाँ जी
0: और इसके अलावा जैसा बात करा मैं जी अपन कई अबार मिट्टी की जो उपजाऊ क्षमता बनी रहे इसके लिए तो खाद डाल रहे जो पर मिट्टी की जांच भी कराओ जो ना कराओ आप।
1: मिट्टी की जांच हर साल तो न करावा, पर हर 1 या 2 साल में जरूर करावा जाऊं, उसको अपनी ही पता पड़ा हो जाए भाई मिट्टी में कई चीज की कमी है।
0: अच्छा
1: जैसे मन क्या कभी स्वास्थ्य रहे, जैसे मिट्टी भी एक जीवित चीज है, तो को भी अपने स्वास्थ्य को पता पड़ा जाए तो मैं अपने भाई कैसा तत्व की जरूरत है, मिट्टी में 17 तरह का पोषक तत्व तो पाया जाओ जाए, तो उसको अपने अंदाजे लाइए उस भाई अपनी नाइट्रोजन की जरूरत है, फॉस्फोरस की जरूरत है, पोटास की जरूरत है, तो
0: जी
1: हिसाब से अपने संतुलित मात्रा में वही डाल दे जा।
0: बिल्कुल यह तो बहुत बढ़िया बात है कि देखो जैसे इंसान अपना स्वास्थ्य के लिए कितना ही जतन करे जाए उस तरीका से आप बता रहे हैं
1: हाँ
0: अगर
1: जी
0: मिट्टी को स्वास्थ्य बढ़िया रहे तो उसमें भी पोषक
1: हाँ
0: तत्वों की जरूरत पड़े जाए मिट्टी भी
1: हाँ हाँ
0: तो उसके हिसाब से ही फिर आप वहां चीजें डालो जो भाई पोटास।
1: हाँ उसे आपको तैयारी करा था।
0: अच्छा
1: देखो आप जानो जो आजकल रासायनिक खाद को भी चलन बहुत ज्यादा बढ़े हुए है, अब अगर आप रासायनिक ही रासायनिक करता जाओ तो उसमें क्या हो जाए क्वांटिटी तो बढ़ा जाएगी, आप उत्पादन तो बढ़ा लेगा, लेकिन वो फसलों को कहे जो उसमें क्वांटिटी था जो शुद्धता वह घटती जा रही है रासायनिक खाद की वजह से,
0: यह
1: ये
0: बात
1: लेकर आप नहीं कहे पुराना पारंपरिक जो खेती जी जिम्मे फसल चक्र अपना हो जा अपना बड़ा बूढ़ा, और गोबर वगैरह की खाद डाल जा, हरी खाद उनको भी आप प्रयोग करनी चाहोगे, उस मिट्टी को स्वास्थ्य बढ़िया हो जाए। देखो ये मारो अनुभव थी कि भाई एक साथ पूरी तरीका से रासायनिक तो आदमी छोड़ न सके, धीरे धीरे आप रासायनिक का कम करता हुआ जैविक तरफ बढ़ावा जरूर दे सका जाए, बाकी पूरी तरीका से एक तरीका से आज का जमाना रासायनिक ही आदमी पूरी तरह छोड़ न सके, लेकिन अगर 2 साल 4 साल धीरे धीरे

0: हवा जैसा खेती बाड़ी में आप फसला बो जो, और जब आप खाद को प्रयोग कर रहे हैं जो, पशुपालन भी आप करता होगा।
1: हाँ जी, देखो खेती किसानी और पशुपालन ये सब एक दूसरा से जुड़ी हुई चीज है जी। अगर आप पशुपालन भी करेंगे तो उसको अपनी दूध तो मिलेगा, साथ में पशुओं को गोबर गौमूत्र वगैरह सो आपने जो जैविक खेती में उतना उपयोग करेंगे तो वो भी आपने लाभ हो। आजकल देखो कहे जो हर आदमी आमदनी के पाछे भागे, तो किसान की मेन आमदनी खेती किसानी पशुपालन ये चीज है। तो अगर ये दोनों तीनों चीजों से मिलजुल रहो, साथ में करो पशुपालन अटी से जो पारंपरिक खेती जो साथ में करो बागवानी भी करोगे, तो उम्र है अगर कोई जैसे कि अगर उसको फसल ठीक न बटी तो पशुपालन से हिम्मत मिल जाओगी या फिर फाइनेंशियली सपोर्ट मिल जाओगे, या फिर बागवानी बढ़िया बढ़ जाओगी तो उसको फाइनेंशियली सपोर्ट मिल जाओगे। तो ये दोनों तीनों चीजा अपनानी चाहोगी।
0: बिल्कुल, बहुत अच्छी बात बताई महेश जी आपने, का आप पशुपालन की तरफ भी आपको ध्यान छ। इसके अलावा
1: हाँ जी,
0: जहाँ आपने बात करी बागवानी की, तो बागवानी में आप काय करो जो?
1: बागवानी में देखो हाल तो मैंने नयो नयो शुरू करो जो, बाकी बागवानी में मैंने थोड़ा बहुत जैसे कि आधा एकड़ का हिसाब से आपन बीघो एक बीघो ठाम बना तो वो मैंने नींबू का पेड़ लगा रखे है जी, थोड़ा बहुत नारंगी का लगा रखे है जी और थोड़ा बहुत अमरूद, क्योंकि ये जो आपनों झालावाड़ जिलो जो उमंग है जी ये आसपास या फिर आपन जो भी हाड़ होती अंचल लिया पूरा उमंग है जी ये बड़ा सुटेबल पौधा जो, और यहाँ की डिमांड भी जो मार्केट भाव भी ठीक ठाक रहे जी और यहाँ का लेकर वातावरण भी ठीक है।
0: बिल्कुल सही बात है। अगर देखो फसलां पे अपन आत्मनिर्भर ना रहा, बागवानी भी करा पशुपालन भी करा, तो इस जो अपने मुनाफो जे और अपनी मेहनत जे या अलग ही रंग लाओ जे।
1: हाँ जी, वो तो देखो तीनों चीजें मिलेगी तो कि भाई तीनों में से अगर दो चीजें भी दो को दे देगी तो वो एक चीज फाइनेंशियली सपोर्ट करेगी। अगर वो एक ही एक चीज के ऊपर निर्भर रहोगे, जैसे कि आपने पता हो जो पिछले साल सोयाबीन को बिल्कुल भी उत्पादन न हुए, अब ये किसान ओनली सोयाबीन या फिर उनकी पारंपरिक खेती बेचा तो वो फाइनेंशियली बहुत ज्यादा डाउन गया। अगर वो पशुपालन भी रखता थोड़ी बहुत बागवानी भी रखता तो आपको वो चीज सोचो वो रखना पड़ता। बाकी मारो कबो जो भाई तीनों चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई है, तीनों ही अपना चालने जाओ जी।
0: बिल्कुल सही बात है। कि देखो जब आप खेती करा, आप मतलब आप ही हो या कोई भी किसान माँ का किसान भाई बहन हो, या अगर माँ को खेती की तरफ ही रुख छ, तो वही खेती में जितनी भी माँ के पास जमीन छ, मान लो कोई के
1: हाँ
0: पास कम जमीन छ, तो वो जो खाद्यान्न उत्पादन करे छ, वह अगर उसके बीच
1: हाँ
0: थोड़ा सा पौधा जैसे बागवानी का कर ले, बागवानी में देखो आजकल फल छ फूल आगे खेती भी कर सके,
1: हाँ
0: तो
1: जी,
0: अपनी आमदनी वह बढ़ा सके।
1: हाँ बहुत सा मग आस पास किसान जगह गुड़ एक या दो बीघा जमीन जे, लेकिन वो कह करे जे वन थोड़ा बहुत तो अपनी खेत आगे मेड़े आप बागवानी से रिलेटेड पौधा लगा रखे जे, और वो जैसे कि सब्जी वर्गीय फसल होगी आपने टमाटर होगी या मिर्च होगी या भिंडी होगी, ये कह कम जमीन में भी बढ़िया उत्पादन और बढ़िया आमदनी को स्रोत है। तुम्हारा तो कबो है जब भाई जरूरी को ना बड़ो किसान या बड़ी जमीन आ

0: ठीक है जमीन जी, लेकिन वो क्या करे जे वन थोड़ा बहुत तो अपनी खेत आगे मेड़े आप बागवानी से रिलेटेड पौधा लगा रखे जे, और वो जिसे की सब्जी वर्गीय फसल होगी आपने, टमाटर होगी या मिर्च होगी या भिंडी होगी, ये क्या कम जमीन में भी बढ़िया उत्पादन और बढ़िया आमदनी को स्रोत है। तुम्हारा तो कबो है जे भाई जरूरी को ना बड़ो किसान या बड़ी जमीन आलो।
1: अच्छा महेश जी, तो
0: हाँ
1: अपन
0: जी साहब,
1: सोशल मीडिया के हिसाब से नई नई तकनीक अपना कर ऑनलाइन बिजनेस भी अपन कर सका चा, खेती से जुड़ा कितना ही उत्पाद
0: जरूर
1: जो
0: जरूर
1: अपन तैयार कर सका चा। तो महेश जी, आपने बहुत ही बढ़िया जानकारी माका कार्यक्रम का माध्यम से दी। फिर भी आप जो माका किसान भाई बहन सुन रहे थे, तो व्यक्तिगत तौर पर वहां से काई सलाह दे पूछा होगा।
0: भाई, वो तो घर छोटो किसान जो आलमा तो बड़ा बड़ा तो बहुत अनुभव वाला, बाकी मारो तो थोड़ा बहुत अनुभव सी कबो जे भाई, पारंपरिक खेती के साथ साथ नई नई टेक्नोलॉजी और आप बागवानी भी अपनाओ, पशुपालन ही भी अपनाओ, ताकि कोई एक चीज चाहे दो को दे जाए तो, या फिर भाव न मिले तो दूसरी चीज चाहे सपोर्ट करे। मारो तो आगे अपना जो भी किसान भाई सभी पहुंचे कबो जो, और रासायनिक खेती करता थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे कर छोड़, जैविक खेती की तरफ बढ़ो, आप धीरे धीरे करवा लागा तो ऑटोमेटिक सब चीजें होती जाओगी। बाकी आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
1: आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने आपको कीमती समय निकालियो और बहुत ही बढ़िया जानकारी से जो मका किसान भाई बहन सुन रहे थे वही अच्छी जानकारी आपने अवगत करी, आपका विचार साझा करिया, इसके लिए
0: हाँ
1: आपको बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम।
0: राम राम जी, राम राम।
1: आभार आपने सुनी महेश जी नागर से बातचीत करी वहां से, तो देखो ना बहुत ही बढ़िया बात बताई छे। जो किसान भाई च वह मान लो कम जमीन च, तो कम जमीन में भी वह बढ़िया उत्पादन कर सके च, अच्छो मुनाफो कमा सके
0: हाँ
1: च।
0: हाँ और आपन जाना चाहते, देखो खेती बाड़ी को तो काम ऐसी हो जाएगा जी, आपन मन लगा के करेगा, और काम तो देखो मीना जी कछु भी हो, चाहे खेती बाड़ी को हो या कोई दूसरा काम हो, या तो अगर हूँ कहते हैं अपन मन लगा के करेंगे तभी होगा। क्योंकि जमीन की जैसे अपन बातचीत करें तो जमीन तो अब कहीं जगह देखो रबड़ तो छे कुछ पलेगी रहा भाई, अब
1: पलेगी।
0: दना दिन कहीं जमीन कम होती जा रही है, और कम जमीन में अपन कहीं जगह अधिक उत्पादन कैसे लिया, तो आजकल नई नई तकनीक जो वैज्ञानिक युग है तो उनका तौर तरीका नया नया तौर तरीका जो वहाँ के अनुसार ही अगर अपन खेती करेंगे तो ही मतलब अपना आवान का टर्म पर अपने आगे बढ़ सका जा। और फिर कहीं जगह या तो बहुत अच्छी आपने यहाँ बात बताई कि अपनी जन जगह समय और जो खेती बाड़ी है तो इनमें पूरा योगदान देनी चाहिए और समय के अनुसार ही अपनी खेती बाड़ी करनी
1: करनी
0: चाहिए।
1: चाहिए जी। तो देखो या ना बात आ सदमा किसान भाई समझ ही गया, अगर ज्यादा जमीन भी जरूरी को है ना, कम जमीन में भी वो काफी चीजा लगा सके जे। कार्यक्रम का अंत में थोड़ी जानकारी की बात की ओर चला, तो आज का कार्यक्रम में जानकारी की बात में लेकर आया जहाँ पर मृदा स्वास्थ्य कार्ड।
0: सरकार की जो योजना है वह आपने चाहे किसी भी हुई, अभी आप बात कर रहे आपने या मृदा स्वास्थ्य कार्ड की किसी भी योजना हुई तो वो योजना को आपने पूरा पूरा लाभ उठानी चाहिए जी, चाहे बनाए से जन जी। अब आज जो मृदा स्वास्थ्य कार्ड है या एक अच्छी या चाहे ईक तवाई बनबा सू आपने जो किसान है वहाँ की जो आपने अपन पहले भी चर्चा कर रहे थे, आपने मिट्टी जाँच की तो इस घना सारा फायदा है। देखो
1: सही च के देखो आप कही रहा चे के जैसे हमारे खेती बाड़ी में भी बहुत सारो खर्चो हो च, तो खेती की जो लागत बढ़ रही च और उत्पादक क्षमता भी घट रही च, तो किसान आ के लेकर सबसे महत्वपूर्ण जग अपनी मिट्टी के ताई वह समझ मिट्टी की सेहत ही, और ई उद्देश्य से ही भारत सरकार ने मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना शुरू करी च,
0: बिल्कुल
1: ताकि मिट्टी केवल फसल उगावा को एक माध्यम कोई ना, बल्कि जो अपना पेड़ पौधा च वहाँ वो पोषक तत्व को भंडार भी च वह, तो अपनी मिट्टी में जो पोषक तत्वों की कमी हो जाओ तो फसल की पैदावार और गुणवत्ता दोनों प्रभावित तो हो जाए, आपने देखा ही जा। तो ऐसी स्थिति में मृदा स्वास्थ्य कार्ड किसान आकर लेकर या उपयोगी मार्गदर्शक को कार्य करे जाए।
0: और फिर आप जानो छो देखो कि मृदा जो स्वास्थ्य कार्ड छे इसु मिट्टी को जो स्वास्थ्य को एक कार्ड बन जाओ चाहे अपना कि भाई एक जैसे अपने बच्चे बच्चे करके टीका ना लगाओगे, अब टीका
1: हाँ
0: लगाओ तो टीका का माध्यम से अपनी याद है कि भाई कैसे कैसे टीका एक ला गया बचपन अतरी उम्र से अतरी उम्र तक यो टीको लागो, फिर इनके बाद यो टीको लागो, तो वही हिसाब से आपने जो मृदा स्वास्थ्य कार्ड है उसमें सारी बातें लिखी रहे कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड किसान के लिए भूमि जो एक जांच उपचार करवा को एक यो तरीको चाहिए है ना। और इंसू कह जो कार्ड में अपनी अजय कैसे कैसे पोषक तत्व की कमी है जैसे अवान मान लो कि नाइट्रोजन फास्फोरस या जिंक आई

0: और मिट्टी स्वास्थ्य कार्ड में जो भी दिया हुआ सुझाव रह च तो आपको पालन कर, जैसे जैविक खाद च, हरी खाद च, फसल चक्र च, ये सब अपना कर मिट्टी की गुणवत्ताएं वह बढ़ा सक च।
1: हाँ, यही बात को तो अपनी ध्यान रखनी चाहिए। और फसल के तय अपनी बदल बदल का बोबा से कहें जो अपनी जो उपजाऊ क्षमता जो अभी बढ़िया हो जाए, और साथ में जो अभी आपने चर्चा करी जाए मृदा स्वास्थ्य कार्ड वाली, तो जरूर किसान भाई बहनिया के तय यू बनवा लेनी चाहिए और इनके अनुसार ही अपनी जो फसल है उनके तय बोनी चाहिए।
0: बिल्कुल। और देखो अपन बात करा अपने मिट्टी की, तो स्वस्थ मिट्टी समृद्ध खेती और खुशहाल किसान की आधारशिला है।
1: बिल्कुल, यह बात तो बहुत अच्छी है। और अब आपने जो घड़ी की सुई है वो अभी इशारो कर दीजिएगा, अपना कार्यक्रम को टर्म भी पूरा हो रही है। तो आपका साथी बालमुकुंद सुमन,
0: वो मीना कताई दो, कार्यक्रम समाप्त करवा की अनुमति।
1: राम
0: राम राम।
1: राम।
2: अभी आप सुन रहे थे किसान वाणी कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

0: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: अभी श्रोता सुन रहे थे किसान वाणी, आकाशवाणी झालावाड़ का ये चंद्रभागा चैनल है FM 103.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। आइए अब सुनते हैं फिल्मी गीतों का कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं मुकेश और लता मंगेशकर की आवाज़ में गाए रोटी कपड़ा और मकान फिल्म के इस गीत से, जिसे लिखा संतोष आनंद ने, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

0: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम। और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के, अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

आइए अब आपको सुनवाते हैं अनुरोध फिल्म का गीत। आवाज़ किशोर कुमार की है, रचना आनंद बख्शी की, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

0: ആകാശവാണി എറ്റ് 90.
1: പ്രേം പർവത്. आइए अब आपको सुनवाते हैं लता मंगेशकर की आवाज़ में इस फिल्म का गीत. पद्मा सचदेवा के लिखे इस गीत को संगीत दिया जयदेव ने.

0: आप सुन रहे थे फिल्म संगीत, आकाशवाणी झालावाड़ का ये चंद्रभागा चैनल है। अब से कुछ ही देर में सुनिए समाचार संध्या, जिसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिन की यात्रा के पहले चरण में आज रात फ्रांस के नीस पहुंच रहे हैं। वे कल राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ वार्ता करेंगे और भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से शुभारंभ करेंगे। असम के जोरहाट में AN-32 विमान दुर्घटना में वायुसेना के 5 जवान शहीद। 5 दिन का ब्रिक्स कृषि सम्मेलन संपन्न। सदस्य देशों ने इंदौर घोषणा पत्र में खाद्य सुरक्षा और कृषि में स्मार्ट तकनीक के उपयोग को सर्वसम्मति से स्वीकार किया। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ को अगला थल सेना प्रमुख नियुक्त किया गया और हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में बारिश से बाधित पहले एक दिवसीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान ने भारत को 195 रन का लक्ष्य दिया है। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाक गणराज्य की 6 दिन की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। इस यात्रा को यूरोप और भारत के संबंधों के लिए निर्णायक माना जा रहा है। फ्रांस पश्चिमी यूरोप में भारत का सबसे पुराना और भरोसेमंद रणनीतिक मित्र देश रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: भारत की रणनीतिक सोच में फ्रांस का एक खास स्थान है। इस साल की शुरुआत में राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों ने अपने संबंधों को विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया, जो वैश्विक समाधान के लिए उनकी साझा आकांक्षा को दर्शाता है। कल प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मैक्रों संयुक्त रूप से भारत इनोवेट्स का उद्घाटन करेंगे। भारत फ्रांस इनोवेशन वर्ल्ड्स के दौरान आयोजित इस कार्यक्रम में 120 से ज्यादा भारतीय स्टार्टअप्स के साथ साथ वैश्विक निवेशक, सीईओ और टेक्नोलॉजी लीडर्स हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
1: अमरीकी राष्ट्रपति के कार्यालय ने कहा है कि G7 बैठक के दौरान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दुनिया के अन्य नेताओं से मुलाकात करेंगे। दोनों नेताओं के बीच आर्थिक विकास, आपूर्ति श्रृंखला, निवेश भागीदारी सहित सुरक्षा के अन्य मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। प्रधानमंत्री मोदी की स्लोवाकिया की पहली यात्रा के लिए ब्रातिस्लावा में भारतीय समुदाय में विशेष उत्साह देखा जा रहा है। एक रिपोर्ट।
3: स्लोवाकिया का भारतीय समुदाय प्रधानमंत्री के भव्य स्वागत के लिए विशेष तैयारी कर रहा है। स्लोवाकिया में भारत की राजदूत अपूर्वा श्रीवास्तव के अनुसार भारतीय समुदाय में उत्साह देखा जा सकता है। राजधानी ब्रातिस्लावा में भारत और स्लोवाकिया के झंडे लगाए जा रहे हैं। पिछले 5 वर्ष में दोनों देशों के बीच यात्रा और आपसी आदान प्रदान बढ़ने से उत्साह अधिक है। मध्य यूरोप में ब्रातिस्लावा की रणनीतिक स्थिति से भी भारत के साथ पर्यटन संबंधों को मजबूत करने में मदद मिलेगी। स्मिति की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशेष शुक्ला।
1: असम के जोरहाट में आज सुबह AN-32 विमान दुर्घटना में 5 जवानों की मौत हो गई। इनमें स्क्वाड्रन लीडर प्रशांत सिंह, फ्लाइट लेफ्टिनेंट शुभम कुमार, सार्जेंट जितेंद्र शर्मा, अग्नि

0: क्षेत्र में खाद्य सुरक्षा और कृषि में स्मार्ट तकनीक के उपयोग को सर्वसम्मति से स्वीकार किया। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ को अगला थल सेना प्रमुख नियुक्त किया गया और हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में बारिश से बाधित पहले एक दिवसीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान ने भारत को 195 रन का लक्ष्य दिया है। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाक गणराज्य की 6 दिन की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। इस यात्रा को यूरोप और भारत के संबंधों के लिए निर्णायक माना जा रहा है। फ्रांस पश्चिमी यूरोप में भारत का सबसे पुराना और भरोसेमंद रणनीतिक मित्र देश रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: भारत की रणनीतिक सोच में फ्रांस का एक खास स्थान है। इस साल की शुरुआत में राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों ने अपने संबंधों को विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया, जो वैश्विक समाधान के लिए उनकी साझा आकांक्षा को दर्शाता है। कल प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मैक्रों संयुक्त रूप से भारत इनोवेट्स का उद्घाटन करेंगे। भारत फ्रांस इनोवेशन वर्ल्ड्स के दौरान आयोजित इस कार्यक्रम में 120 से ज्यादा भारतीय स्टार्टअप्स के साथ साथ वैश्विक निवेशक, सीईओ और टेक्नोलॉजी लीडर्स हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। शैलेस मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
0: अमरीकी राष्ट्रपति के कार्यालय ने कहा है कि G7 बैठक के दौरान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दुनिया के अन्य नेताओं से मुलाकात करेंगे। दोनों नेताओं के बीच आर्थिक विकास, आपूर्ति श्रृंखला, निवेश भागीदारी सहित सुरक्षा के अन्य मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। प्रधानमंत्री मोदी की स्लोवाकिया की पहली यात्रा के लिए ब्रातिस्लावा में भारतीय समुदाय में विशेष उत्साह देखा जा रहा है। एक रिपोर्ट।
2: स्लोवाकिया का भारतीय समुदाय प्रधानमंत्री के भव्य स्वागत के लिए विशेष तैयारी कर रहा है। स्लोवाकिया में भारत की राजदूत अपूर्वा श्रीवास्तव के अनुसार भारतीय समुदाय में उत्साह देखा जा सकता है। राजधानी ब्रातिस्लावा में भारत और स्लोवाकिया के झंडे लगाए जा रहे हैं। पिछले 5 वर्ष में दोनों देशों के बीच यात्रा और आपसी आदान प्रदान बढ़ने से उत्साह अधिक है। मध्य यूरोप में ब्रातिस्लावा की रणनीतिक स्थिति से भी भारत के साथ पर्यटन संबंधों को मजबूत करने में मदद मिलेगी। स्मिति की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशेष शुक्ला।
0: असम के जोरहाट में आज सुबह AN-32 विमान दुर्घटना में 5 जवानों की मौत हो गई। इनमें स्क्वाड्रन लीडर प्रशांत सिंह, फ्लाइट लेफ्टिनेंट शुभम कुमार, सार्जेंट जितेंद्र शर्मा। अग्निबंदर में श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष के दौरान देश का केंद्रीय बजट दोगुना हुआ है और लोगों पर कर का बोझ काफी कम हुआ है। डॉक्टर मांडविया ने कहा कि पोरबंदर लोकसभा क्षेत्र के लिए एक विशिष्ट रोजगार डैशबोर्ड विकसित किया गया है। अब तक 12,000 युवा इस पोर्टल पर पंजीकरण करा चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के अंतर्गत पिछले 12 वर्ष में देश में उल्लेखनीय बदलाव हुए हैं। आकाशवाणी समाचार प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर विशेष कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है। आज बात देश की सांस्कृतिक विरासत को मजबूत करने की दिशा में किए गए प्रयासों की।
3: पिछले 12 वर्षों में भारत की सांस्कृतिक यात्रा ने नई ऊंचाइयां हासिल की हैं। देश की संस्कृति अपनी परंपराओं से जुड़ी हुई है और साथ ही पूरी दुनिया के लिए खुली भी है। सरकार ने देश और विदेश में कई ऐसे कदम उठाए हैं जिससे लोगों में सांस्कृतिक विरासत के प्रति गर्व की भावना और अधिक मजबूत हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, महाकाल लोक परियोजना, माँ कामाख्या मंदिर का पुनर्विकास, जूना सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण और अयोध्या में राम मंदिर की स्थापना जैसे ऐतिहासिक कार्य किए गए हैं। आध्यात्मिक पर्यटन सर्किट और आधुनिक तीर्थयात्री सुविधाओं के माध्यम से भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पहचान को फिर से सशक्त बनाया जा रहा है। इस बदलाव में संग्रहालय अनुदान योजना और सांस्कृतिक कार्यक्रम की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इन योजनाओं ने भारत की सांस्कृतिक धरोहर को सुरक्षित रखने के साथ साथ सांस्कृतिक रचनात्मकता और स्थानीय स्तर पर लोगों की भागीदारी को भी बढ़ावा दिया है। संग्रहालय अनुदान योजना के तहत देश भर में 21 नए संग्रहालय स्थापित किए गए हैं और 23 पुराने संग्रहालयों का आधुनिकीकरण किया गया है। यह योजना नागालैंड जैसे राज्यों में भी काफी लाभकारी साबित हुई है। सांस्कृतिक कार्यक्रम और उत्पादन अनुदान योजना भी देश भर में सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देने का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनकर उभरी है। मणिपुर की सबसे पुरानी रंगमंच संस्था मणिपुर ड्रामेटिक यूनियन को

0: हाल ही में वित्तीय सहायता मिली है, जिसके बाद वह नए नाट्य प्रस्तुतियों की तैयारी कर रही है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में संस्था के सचिव सुरोख अभैम शरद चंद ने क्षेत्र कला और संस्कृति को मजबूत समर्थन देने के लिए सरकार का आभार व्यक्त किया है।
1: इस संगठन की स्थापना के बाद से हमें संस्कृति मंत्रालय से विभिन्न प्रकार के अनुदान प्राप्त हुए हैं। सांस्कृतिक अनुदान के अंतर्गत हमें इस वर्ष 1,25,000 रुपए प्राप्त हुए हैं। हमें स्वीकृत राशि का 75% प्राप्त हुआ है। मैं भारत सरकार और संस्कृति मंत्रालय का आभार व्यक्त करता हूँ।
0: भारत ने अपनी संस्कृति को संरक्षित और दुनिया तक पहुँचाने के लिए बड़े कदम उठाए हैं। प्राचीन मंदिरों का जीर्णोद्धार किया है, तीर्थ स्थलों का विकास हुआ है और पुरानी परंपराओं को नया जीवन मिला है। साथ ही बेहतर सड़कें, स्वच्छ सुविधाएं और आधुनिक सेवाएं लोगों के लिए इन स्थानों तक पहुंचना अधिक आसान बना रही है। आज पूरी दुनिया भारत की संस्कृति, परंपराओं और जीवन शैली में रुचि दिखा रही है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि ईरान, अमरीका और इसराइल के संघर्ष के कारण दुनिया भर में ईंधन की कीमतों में इजाफा हुआ है। पंजाब के लुधियाना में उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि देशवासियों पर कीमतों में वृद्धि का अधिक प्रभाव न पड़े। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने कहा है कि देश में एक राष्ट्र एक चुनाव प्रस्ताव लागू करने के प्रयास किए जा रहे हैं। पुदुचेरी में उन्होंने कहा कि एक साथ चुनाव करने से खर्च कम होगा और संसाधनों का अधिक कुशल उपयोग हो सकेगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने परीक्षा अधिकारियों के लिए आईगॉट कर्मयोगी भारत प्लेटफॉर्म पर एक कार्यक्रम शुरू किया है। इसका उद्देश्य एनटीए परीक्षाओं के लिए पर्यवेक्षण और निगरानी प्रक्रियाओं को सुदृढ़ करना और ऑफलाइन पेन और पेपर पर आधारित परीक्षाओं का सुचारू, सुरक्षित और मानकीकृत संचालन सुनिश्चित करना है। कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए पहले जत्थे का

0: समूह केरल, माहे, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल और पूर्वोत्तर में अत्यधिक बारिश का अनुमान है। कल तक पूर्वी राजस्थान में आंधी तूफान की भी संभावना है। धर्मशाला में पहले एक दिवसीय क्रिकेट मुकाबले में अफगानिस्तान ने भारत को 195 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 7वें ओवर में एक विकेट पर 49 रन बना लिए हैं। रहमानुल्लाह गुरबाज ने 102 रन की पारी खेली। हर्ष दुबे और गुरनूर बरार ने 3-3 विकेट लिए। बारिश की वजह से मुकाबले को 25-25 ओवर का कर दिया गया है। मैनचेस्टर में महिला T20 विश्व कप में स्कॉटलैंड ने आयरलैंड को 40 रन से हराया। कल शाम 7 बजे भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा के पहले चरण में आज रात फ्रांस के नीस पहुंचे। वे कल राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ वार्ता करेंगे और भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से शुभारंभ करेंगे। असम के जोरहाट में वायुसेना की AN-32 विमान दुर्घटना में वायुसेना के 5 जवान शहीद। 5 दिन का ब्रिक्स कृषि सम्मेलन हुआ संपन्न। सदस्य देशों ने इंदौर घोषणा पत्र में खाद्य सुरक्षा और कृषि में स्मार्ट तकनीक के उपयोग को सर्वसम्मति से स्वीकार किया। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ को अगला थल सेना प्रमुख नियुक्त किया गया। और हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में बारिश से बाधित पहले एक दिवसीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान ने भारत को दिया 195 रन का लक्ष्य। और इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आप सुन रहे हैं FM 103.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी झालावाड़ का चंद्रभागा चैनल। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम सबरस। कार्यक्रम सबरस में शुरुआत करते हैं बशर नवाज की गाइस गजल से।